उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आसमान से नीचे जमीन के ऊपर, घर में घर से बाहर, दुनिया के जिस भी कोने में जहां कहीं मेरी आवाज पहुंच रही है, सबको कहेंगे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिस इज रेडियो पाकिस्तान FM 101 ट्यून इन वन अबव एंड मी योर आरजे अफजा चौधरी। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:14, मेरी पूरी कोशिश रही कि हम 7:13 पर ही ऑनर जाएंगे, बट फिर भी एक मिनट ऊपर नीचे हो गया। दिन है जनाब आज मंगल का, तारीख है 22 सितंबर 2026। बिना वक्त का ज्या किया प्रोग्राम का स्टार्ट लेंगे। तौहीद का नारा, उम्मीद का परचम, अपनी मेरी धरती, अपना मेरा मौसम, इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी हूँ। जी हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन, मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ। जी हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

वेल जनाब, आज के 15 मिनट हम उनको डेडिकेट करना चाहेंगे जो यूनिफॉर्म में सुबह दोपहर शाम हमारी हिफाजत करते हैं। आया वो पुलिस वाले हों, वो फौजी हों, वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, वो तमाम लोग जो हमारी हिफाजत के लिए तायनात हैं, उन सब के लिए एक छोटी सी डेडिकेशन जरूर पेश करना चाहेंगे और एक छोटा सा पैगाम तमाम आवाम के नाम करना चाहेंगे। वो हमारी धरती जला रहे हैं, चलो आओ रोकें उन्हें। वो हमें हमी से लड़ा रहे हैं, चलो आओ सोचें। ये बम धमाके, ये हरसू लाशें, ये हमसे हमी को पिछाड़ रहे हैं, चलो आओ देखें। ये वतन ना होगा तो हम ना होंगे, वो हमारे घर को हमी से गिरवा रहे हैं, चलो आओ निकले।

खुश आमदीद कहते हैं वापस जनाब आपको 0515111011 इस डायलिंग नंबर 8 बजे के उस पर आप कॉल करेंगे, मैसेज कर सकते हैं आप अभी से 4471 पे। उसका तरीका बहुत ही आसान है, अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे 101 स्पेस देंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपके शहर का नाम लिखेंगे और आपका जो भी पैगाम है लिख भेजेंगे 4471 पे। भी लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उन सबको वेलकम बोलेंगे, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं प्लीज ड्राइव केयरफुली। आज की सुबह का आगाज मेरे ख्याल से एक सवाल से करते हैं जो शायद आप सब लोग अपने बारे में कभी कभी सोचते होंगे और कभी कभी नहीं भी सोचते होंगे, और जो नहीं सोचते होंगे उनको एक दोबारा सोचने का मौका मिल जाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी कभार हम जो फैसले लेते हैं वो हम अचानक ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ सोचते ही नहीं है, फौरन फौरन फैसला हो जाता है। और जब कुछ फैसलों के लिए हमें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर एक वक्त लगाते हैं उस पे। या कभी आपने ऐसा फील किया है कि कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट राइट। उस वक्त शायद आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की होती, कोई भी एनालिसिस नहीं किया होता, बस एक फीलिंग आ रही होती है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक चीज़ की कीमत 800 रुपए है और उस पर 15% डिस्काउंट है तो उसकी नई कीमत क्या हो जाएगी? अब आप रुकोगे, आप सोचोगे, आप कैलकुलेट करोगे। ये फ़र्क हमें इंसानी दिमाग के एक दिलचस्प तसव्वुर तक ले जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। टू सिस्टम थ्योरी ऑफ थिंकिंग कहते हैं इसको। ये नजरिया जनाब एक माहिर नफ्सियात ने पेश किया था, डैनियल नाम था उनका, उनकी किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आप वो किताब जरूर खरीदेंगे और उस किताब को आप पढ़ेंगे, मेरे लिए नहीं अपने लिए पढ़ेंगे। अब यहाँ एक अहम बात समझने की ये है, जो जरूरी भी है, कि दिमाग लिटरली दो अलग दिमागों में तकसीम हो सकता या नहीं हो सकता? DJ. नहीं हो सकता। इसका मॉडल इस तरह बना है, इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है, फिर हम कहेंगे उसी पाकजात की कुदरत कि वो हमारा दिमाग एक दिमाग होने के बावजूद दो अलग अलग सिस्टम्स के तौर पे काम करता है। पहला निजाम क्या है? जो ऑटोमेटिकली काम करता है। अच्छा, तो पहला दिमाग जो है वो बगैर सोचे समझे ऑटोमेटिकली काम करता है, कोई कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हमें नहीं लगानी पड़ती हैं। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक सामने कोई चीज आ जाती है तो आप फौरन ब्रेक लगा देते हो, आपने बैठकर ये भी नहीं सोचना तब कि आप ब्रेक दबाओ ना दबाओ, सीधे पांव से दबानी है उल्टे पांव से दबानी है, नहीं सोचते ना आप, फौरन से ब्रेक लगा देते हो। वो फौरन से जो दिमाग आपका रिस्पॉन्ड करता है, क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, वो एक पहला सिस्टम है। अच्छा, पहले भी मैंने एक एग्जांपल दे दी, इसको कहते हैं फास्ट थिंकिंग। फिर स्लो थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आप क्विकली आंसर नहीं करते हो, उसमें आप बैठते हो, सोचते हो और उसके बाद उसका जवाब देते हो। उसके लिए अब मैं एक नई एग्जांपल आपके लिए सामने नहीं रखने वाली,

ओके जनाब, तो दिमाग के बारे में हम ये तालीम आपको दे क्यों रहे हैं? सिर्फ इस वजह से आपको ये तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है ना, तो आपने उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जब आप बुक पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि कुछ थॉट्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, कुछ फैसले होते हैं उनको टाइम देना ज़रूरी होता है, और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनको इम्पॉर्टेंट लेना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कभी भी खुद को मजबूर नहीं करना है, आपने बस तीन चीज़ों पर अमल करना है, थॉट्स, ऑब्जर्वेशन, टाइम, योर डिसीजन। सांस लेनी है आपने, रुकना है, सांस लेनी है, सोचना है, और अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है, और कल जो हमने बातें बताई हैं उन पर लाजमी अमल करना है। अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तक आपका यकीन मजबूत नहीं होगा ना, आप हमेशा परेशान रहोगे, आप कभी सुकून में नहीं आओगे, आपके अंदर एक ठहराव नहीं आएगा। यकीन करें, आपका जो दिमाग है इनक्रेडिबली पावरफुल है, आपको नहीं अंदाजा, आपको नहीं अंदाजा। जिस दिन आपको ये अंदाजा हो गया ना, उस दिन आप इधर उधर भटकना बंद कर देंगे और आप फोकस्ड हो जाएंगे। समटाइम्स ना हमें किताबी बातें बहुत अजीब लग रही होती हैं, हम कहते हैं ये हवा में तीर छोड़ने वाली बात है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसा है, लेकिन जो किताबी बातें हैं वो भी प्रैक्टिकल लाइफ से ही उठा के किताबों में लिखी जाती हैं। अभी सुनवाते हैं आपको एक गाना, प्यारा सा, छोटा सा, और हम पीते हैं अपनी चाय ताकि हमारा जो गला है वो हमारा साथ दे, और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। लेकिन गाना कौन सा आपको सुनाया जाए, ये मेरी रोज़ की जंग है और मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं करना चाहिए, मुझे इस पे काम करना चाहिए, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ।

ओके जनाब, खुश आमदीद कहते वापस आपके प्रोग्राम में. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई नो ये ऑब्वियसली आपका फेवरेट प्रोग्राम है, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हो. एंड आई एम आरजे अफजा चौधरी हियर, रेडी टू मेक योर मॉर्निंग जस्ट अ लिटिल ब्राइटर, थोड़ी सी लाइटर एंड होपफुली बहुत ज्यादा पॉजिटिव. जो लोग अभी बेड से उठने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हम कहेंगे गेट अप, चाय पियो और मेरी तरह आंखें खोलो. नहीं खुलेंगी, दिमाग नहीं चलेगा. और जो लोग ऑलरेडी ऑफिस के रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, रिलैक्स, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ट्रैफिक है, हो जाएगी ठीक. डीप ब्रेथ. और जो स्टूडेंट्स बुक खोल के उसमें फ़ोन रख के यूज़ कर रहे हैं, वी नो आप क्या कर रहे हो, लेकिन सीरियसली आज की सुबह एक नॉर्मल सुबह नहीं है. बिकॉज टुडे इज़ द डे दैट यू हैव नेवर लिव्ड बिफोर. नया दिन है, नई सुबह है. कल जो हुआ वो हो चुका. यस्टरडे की मिस्टेक, यस्टरडे की डिसअपॉइंटमेंट, यस्टरडे की रिग्रेट्स यस्टरडे पे छोड़ देना चाहिए. यू कैनॉट कंट्रोल, यू कैनॉट चेंज. लेकिन आज का दिन ऑब्वियसली आपके पास है, आप इसको अपनी मर्जी से गुजार सकते हो, कोशिश कर सकते हो अपनी मर्जी से गुजारने की. ये एक नया पेज आपके सामने आया है, इस पर आपको जो भी लिखना है वो आज के दिन लिख दीजिए. अब आप एक लो एनर्जी के साथ जाओगे इस पेज पर कुछ लिखने, तो मुझे बताएं कि आप कैसा ही लिख पाओगे. कभी कभी ना लाइफ में हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि एक्शंस लेना ही भूल जाते हैं. हम कहते हैं पहले सर्कमस्टेंसेस बेटर हो जाएं, पहले पैसे आ जाएं, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, पहले राइट टाइम आ जाए. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सीरियसली द परफेक्ट टाइम रियरली कम्स. आपको वो खुद लाना पड़ता है, आपको खुद हिलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तभी कुछ होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता. अक्सर हमें इम्परफेक्ट सिचुएशन में परफेक्ट चीज़ें मिल जाया करती हैं, और फिर हम खुद सोचते हैं बैठ के इतने इम्परफेक्ट टाइम में इतना परफेक्ट कुछ कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल. तो बस फिर भूल जाओ, फिर क्या ही सोचना है. टेक इट, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग. क्योंकि एक इंसान जो कभी गिव अप नहीं करता ना, वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी मौके पे कामयाब हो जाता है.

DJ Iman. Okay, finally, I think मुझे ये track play करना चाहिए. Messages की जाने भरते हैं. Messages कुछ आए हुए थे वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में. मीना नाम प्यारा है आपका, किसी और लैंग्वेज में इसका कुछ और मतलब बनता है, लेकिन वो मतलब ही बहुत क्यूट है. आजाद कश्मीर से ये हमारा साथ दे रही है, शो हमेशा की तरह तारीफ कर रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा. मीना कह रही है कि लाइट का और आपके प्रोग्राम का कॉन्फ्लिक्ट है. कभी आपका प्रोग्राम होता है और लाइट नहीं होती, और कभी आप नहीं होती और लाइट होती है. मुझे लगता है इस मुल्क में दो ही चीजें खराब है, एक आरजे अफजा और दूसरी बिजली. रावलपिंडी से हमारा साथ दे रही है, लाहौर से इनका ताल्लुक है. आओ क्यूट, इनका बेटा भी मेरा प्रोग्राम सुन रहा है. चुन्नू मुन्नू, आई लव किड्स. वो किसी भी एज के हों, पता है उसकी रीजन क्या है यार? उनकी सोल बहुत बहुत प्योर होती है, उनका दिल बहुत प्योर होता है. मतलब इंसान, आप इंसान जब बड़े हो जाते हो, आप लोगों के दिल मैले हो जाते हैं. मेरा नहीं है. हम लोगों के लिए ना सबसे बड़ा टास्क, मुझे लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम लोग के लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हमने हमारे दिल को, हमारी रूह को कैसे प्योर रखना है. और अगर आप इसमें कामयाब हो तो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक की ज़ात आपसे यकीनन खुश रहेगी. शाकिर कुहार से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोज हम सुबह आधा घंटा प्रोग्राम सुनने के लिए रेडियो ऑन करके रखते थे कि शायद हमारी आरजे वापस आ जाए. और आज जो उनकी उम्मीद है वो खुशी में बदल गई. लेकिन मुझे लगता है आप रोज ट्यून नहीं करते थे, क्योंकि मैं दो हफ्तों से आई हुई हूँ और आपको आज पता चल रहा है. रमीश साहब आज बहुत सीरियस लग रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जिनको नहीं सुनना होता उन पर चीखो पुकार भी नहीं पहुंचती, और जिनको सुनना होता है वहां खामोशियां भी पहुंच जाती हैं. गुड मॉर्निंग. लेकिन मूड इतना खराब नहीं होना चाहिए, दिल का मौसम अच्छा रखना चाहिए. दिल का मौसम अच्छा रहेगा, बाहर का खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा. और ये सोचना ही बंद कर दें कि किसको आपकी बात नहीं सुननी और किसको आपकी बात सुननी है. अच्छा, हिजाब ज़ाहरा रावलपिंडी से हैं और वो लाहौर जा रही हैं. मैं आपको बहुत अच्छी लगी हूँ, क्या बात है. आपको खुश होना चाहिए, आपके मुजाजी खुदा आ रहे हैं. इनके आज हस्बैंड आ रहे हैं, ये उनको लेने जा रही हैं एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से. खैर से वो आपके पास पहुंचे. अहमद अली जट हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं.

आज आप लोगों को समझ आएगा कि मैं छुट्टी क्यों करती होती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम स्क्रिप्टेड नहीं होता और जब मेरा दिमाग आउट होता है फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैंने क्या बोलना है, क्या करना है, और फिर मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो आज आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं छुट्टी क्यों करती हूँ, फिर खुद बोलोगे कि छुट्टी किया करो।

अब आप देखो कि मैं कहानी के सेगमेंट पे पहुंच गई और अभी तक मैंने आप लोगों को हेल्थ सेगमेंट की कुछ चीजें जो थी वो पेंडिंग पड़ी हैं, वो नहीं बताई हैं। खैर, फ्रूट्स की अफादियत आपको मैंने बतानी है। पाइनएप्पल, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए क्योंकि वो जोड़ों के दर्द से आपको महफूज रखता है, आपकी जो स्किन की बीमारियां हैं उनमें आपको फ़ायदा पहुंचाता है और बीमारियां जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करें तो हमें ज़्यादा पोटेशियम फ्लोराइड और आयरन इससे मिलेगा भरपूर मिकदार में। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हम करें, कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफ़त बढ़ाता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है बनाना, और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये अच्छा और मुफीद साबित होता है। नाशपाती की अगर हम बात करें, इसमें फाइबर भरपूर होता है, निज़ाम इन्हज़ाम को ये बेहतर बनाता है, अनार खून की कमी को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, आम आपके दिल को तकवियत बख्शता है, और आम का अगर आप मिल्क शेक जो है वो इस्तेमाल करें तो आप वज़न बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की धड़कनों को एतदाल करता है तरबूज, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मौसम तो नहीं है लेकिन मैं तमाम जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी अफादियत आपको बताना चाह रही हूँ तो वो मैं आपको बता दूंगी। वज़न कम करने के लिए आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर का इस्तेमाल आप करें, इसको मुकम्मल ग़िज़ा भी कहते हैं, फाइबर से भरपूर होता है और आपके जिस्म में कमज़ोरी को दूर कर देती है खजूर। लीची कैंसर से बचाती है, लीची का इस्तेमाल वो लोग करें जिनको कैंसर का ख़तरा है या फिर जिनको ऑलरेडी हो चुका है। पपीता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए मुझे लगता है हर इंसान को, क्योंकि इसके भी सेम पाइनएप्पल वाले फवायद हैं लेकिन इसके थोड़े से ज़्यादा हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में ये ज़्यादा हेल्प आउट होता है करता है, दो मैं खुद नहीं खाती, मेरी अपनी स्किन के ब्रेकआउट्स जो हैं वो मशरक से मगरब तक पहुँच रहे होते हैं। ब्लैकबेरीज का इस्तेमाल अगर हम करें तो खून ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करती है, हाजमा बेहतर बनाती है। अंगूर जो है वो शरियानों को साफ करते हैं, हमारे दिल की बीमारियों से हमें बचाते हैं। संतरा, ऑरेंजेस का मौसम आने वाला है, जितना आप संतरा खा सकते हैं खाएं, वो आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल बॉडी की टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, दूर करता है आपसे, इसलिए जितना संतरा खा सकते हैं आप लोग खाइएगा। सेब को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में शामिल करें, कोशिश करें 2 सेब आप डेली की खा लो, मॉर्निंग में आप अगर खा सकते हो तो खा लो, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मोटापे को कम करता है।

0: इस ट्रैक को हम बीजीएम के तौर पे इस्तेमाल करने ही वाले हैं, क्योंकि आज कहानी का सेगमेंट भी है, कहानी भी आपको सुनानी है। अभी के लिए एक ट्रैक की जाने बढ़ते हैं राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, द लेजेंडरी लेजेंडरी।
1: खूबसूरत है
0: ये जनाब, कामिल की भी एंट्री हो गई है। बहुत शुक्रिया एंट्री करने के लिए, और खासकर तलागंग लिखने के लिए। वो आपका औखा सा जो नाम है आपके विलेज का, वो नहीं लिखा आपने। कह रहे अदाब अर्ज करता हूँ प्यारी बहना, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट एंड एकदम फटाक। रमीज कह रहे हैं आपको कैसे पता लगा कि मैं सीरियस मूड में हूँ? कह रहे अदाब अर्ज करता हूँ प्यारी बहना, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट एंड एकदम फटाक। रमीज कह रहे हैं आपको कैसे पता लगा कि मैं

कहाँ कैसे हमने पहुंचना है, वरना एक टाइम पे इतने लोगों को एक ही जगह पे जोड़ के रखना इट्स एन आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता. और अगर हम कर सकते हैं ना ये हम आरजेस, दैट्स मीन कि हम समझ सकते हैं कि आपका मूड कब कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है. तो आपका मूड आज खराब है तो पता चल रहेगा आपका मूड खराब है.

0: हिजाब ज़ारा कह रही हैं कि मेरे बेटे के लिए एक ट्रैक प्ले करना है आपने, हम आपके बेटे के लिए ज़रूर ट्रैक प्ले करेंगे, और कह रही हैं कि आप ही जान कल मेरी ननद की मेहंदी है जिसे मैंने अपने बच्चों की तरह बड़ा किया। ओह माय गॉड,
1: वो पल मुझे ना दे, इतनी खूबसूरत है फिदा दे।
0: यू नो, ये टफेस्ट मोमेंट होता है लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है, जब मेरी बहन की शादी हुई थी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर। मुझे लग रहा था कि मतलब कोई भी दिन जो है वो गुजर रहा है तो वो क्यों गुजर रहा है, और मुझे लगता था कि बस अब इसकी शादी अगर हो रही है तो हो जाए बस ये, लेकिन ये जाए नहीं, ये मेरे पास ही रह जाए, शादी बेशक हो जाए। इवन मैं अभी भी उसके शौहर के साथ कभी कभी लड़ती हूँ कि तुम चोर इंसान हो, तुम मेरी बहन को मेरे से चुरा के ले गए हो।
1: इश्क की दास्तां जुदा है मेरी, तू ही दोनों
0: ओके, ये पत्थर दिल पे रखना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये उसके लिए अच्छा है, इसलिए आप उसके सामने खुश रहे, उसको बिल्कुल भी ऐसा फील मत कराएं कि आप लो फील कर रहे हो।

जनाब, इट्स 7:55 AM। दिन है आज मंगल का, तारीख है 22 सितंबर 2026, और अभी न्यूज़ का वक्त हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हिजाब जहरा के बेटे को हमने एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है और साथ उनको एक ट्रैक सुनाना है, फिर आप लोगों की कॉल्स भी लेनी है और आप लोगों की बड़ों वाली कहानी भी जो है वो भी शामिल करनी है हमने प्रोग्राम में।

ओके जनाब, खुश आमदीद कहते हैं वापस आपके प्रोग्राम में। 0515100101 इज द डायलिंग नंबर। कॉल्स आपकी ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी हैं, मैसेजेस आप कर रहे हो 4471 पे। तरीका बहुत ही आसान है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे 101 स्पेस आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका मोहब्बत भरा पैगाम लिख भेजेंगे 4471 पे। रमीज कह रहे हैं तो वो इसलिए उदास है कि उनको बाबा की याद आती है। ओ, ओ। वेल जनाब, इतनी सेंसिटिव बात है ये, इस पर मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगी। कामिल ने हमें मैसेजेस किए, बहुत शुक्रिया कामिल, मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए हैं। और एक ये जो मैसेजेस में आपने एक प्यारा सा तोहफा भेजा, इसके लिए भी शुक्रिया। एक पता नहीं हमें किसने मैसेज किया है, उनका मैसेज सिर्फ एक ही रिसीव हुआ है हमें, जिसमें उन्होंने पूछा है आप ही मेरा मैसेज शामिल किया है, इसके अलावा आपका कोई मैसेज नहीं मिला है मुझे।

0: वेल जनाब, अभी आपने मुझे बताना है कि आज हमारा जो टॉपिक हम रख रहे थे शुरू में, जिस पे हम बात कर रहे थे दिमाग के हवाले से, हम उस टॉपिक को कंटिन्यू कर दें या फिर आपको आज स्टोरी सुनाएं या स्टोरी स्किप कर दें। आई एम कंफ्यूज। कॉलर्स की जाने पड़ते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम 101। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपकी कॉल ड्रॉप कर दी क्योंकि आपने रेडियो नहीं बंद किया था। जो भी मुझे कॉल करे प्लीज अपना रेडियो पहले बंद करें। अस्सलाम वालेकुम 101।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखीर।
1: क्या हाल है?
0: जी जी जी, करम अल्लाह पाक का।
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मलाखीर। क्या पैगाम लाए?
1: बिल्कुल, अभी हम लोग दिमाग के हवाले से बात कर रहा था। बस अपने तरह इंसान के दिमाग है, जब जितना ज्यादा कमजोर है उससे इंसान का दिमाग फ्रेश रहेगा।
0: ये तो मैंने नहीं कहा।
1: नहीं, मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि हमेशा जो दिमाग को एक्टिव करने के लिए इंसान के पहले बोलना कम कीजिए और दूसरा नेगेटिव सोच वगैरह छोड़ देना चाहिए।
0: मतलब मैं नहीं बोलूंगी तो मेरा दिमाग ज्यादा चलेगा?
1: नहीं, आप तो बोल देना चाहिए। बाकी लोगों के माशरे के हालत में ये है, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव गलत सोच होता है हर जगह में, उसके नेगेटिव सोच।
0: नहीं तो आप मेरी बात सुनो,
1: बड़ा ताकत कर दे।
0: आप क्या चाहते हो कि मतलब मेरा दिमाग चले ही ना?
1: हाँ,
0: आप क्या चाहते हो कि मेरा दिमाग ना चले?
1: नहीं नहीं, आप तो जाहिर सी बात, आपको तो प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप तो हम लोगों का अवेयरनेस कहते हैं, हम लोगों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं।
0: अच्छा सही है, चलिए मैं और तंग नहीं
1: करती। आप तो मन की बातें तो नहीं करते हो, आप तो पॉजिटिव बातें वगैरह कर देते हैं। मैं मन की लोगों की सोच करता हूँ, जो माशरे में बैठा हुआ है, जो गलत सोचते है, उसके लिए मैं ये सिर्फ जो इंसान गलत सोच है उसका बॉडी भी पतला होगा, फिर वो इंसान का जिसको दिमाग भी छोटा होगा।
0: है क्या हुआ?
1: दिमाग भी छोटा होगा, नेगेटिव पहले की तरफ जाता है।
0: चलो सही है, ओके, जो कह दिया हमने मान लिया।
1: हाँ, मानना चाहिए।
0: चलो सही है, ओके,
1: ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज़। मैं सोच रही थी कि आज शायद मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है आज किसी का दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम 101। अस्सलाम वालेकुम 101। ओके, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम 101।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। कॉलर कहाँ से?
2: राजीव चौधरी जी, फारूख बात कर रहा हूँ, पिंडी रोचक वेलीखान रात इस्लामाबाद। क्या हाल है? ठीक है, गुड मॉर्निंग
0: जी। करम अल्लाह पाक का। क्या पैगाम लाए?
2: जी पैगाम लाए हैं कि आज आपकी आवाज बहुत ब्यूटी लग रही है।
0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम। कॉलर कहाँ से?
3: तो बेटा पहचाने कौन हो सकता है?
0: आप खुद बता दें।
3: ओ बेटा जी, आप देखे, मैं आपका शो बड़े अच्छे तकरीबन जो है मेरा 6-7।
0: आप आज गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी नहीं चला रहे?
3: नहीं, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मैं जवाब आपका शो सुन रहा हूँ, घर बैठा हुआ। और अभी मैं सोता हूँ तकरीबन 12 बजे या 11 बजे में जो है, और लेकिन मैं अभी आपके शो की वजह से मुझे 7 बजे जो है ना उठना पड़ा।
0: ओह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3: तो बेटा ये खूबसूरत आवाज़ों अंदाज की मालिक अपना नाम क्यों नहीं बताती?
0: हाँ, क्या करेंगे लोग मेरा नाम जान के।
3: आप बार बार अपना नाम बताएं, मैंने पहले भी कहा था कि आप पहचान नहीं के कौन हूँ, कि मैंने कहा था अपना नाम मेरी बेटी क्यों नहीं बताती, बार बार बताया था।
0: चले मैं बताऊंगी अब।
3: क्यों, जितनी आजें लाती है मेरी बेटियां, मैं सुबह से लेकर रात 2 बजे तक शो सुनता हूँ। मेरा नाम ऐसा है कि सारी दुनिया मुझे जानती है, मेरी कमांडर बेटी और मेरी उस्तानी मतलब रानी भी मुझे जानती है। मैं कौन हूँ?
0: माशाल्लाह
3: बेटा, इश्तियाक मलिक रेडियो एंड टीवी फनकार एंड राइटर गुजर खान से, इश्तियाक मलिक।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में।
3: आप पहचान लिया है?
0: जी जी, मैंने पहले भी पहचान लिया था।
3: मेरा नाम बेटा सारी दुनिया जानती है, मैं सुबह से लेकर रात 2 बजे तक शो जो होते 3 बजे तक मैं हर शो में आता हूँ, और आप मुझे इंशाल्लाह बेटी का भी नाम, मैं तमाम शो में आपका नाम लिया करूंगा, और मेरी बेटियां जितनी बेटियां हैं स्कूल का नाम मैं लेता हूँ, लेकिन आपका नाम सरे फहरिस्त तो हो गया, लेकिन अपना पूरा मुकम्मल नाम बताए चौधरी साहब है बेटा जी।
0: जी जी जी अफजा चौधरी, अफजा चौधरी
3: जी,
0: अफजा चौधरी,
3: अफजा चौधरी, अफजा चौधरी, बिस्मिल्लाह कर माड़ी थी रानी आ गई अफजा चौधरी। ओ पुत्र इतने सवाल करी छोड़े, किस किस किस गल ना सवाल ना जवाब दिया, लेकिन फैसला जेड़ा होता है वो भी वैसे जो भी फैसला हो सोच समझ कर करना चाहिए। ये आपने जो सवाल रखा है तो जो भी फैसला हो सोच समझ कर करना चाहिए। तो मैं बड़ी देर से सोच रहा, मैंने चाय भी नहीं पी अभी तक, मैं शो का इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरी बेटी जो है कॉल मेरी नहीं ले रही, मैं सोच रहा था।
0: चलें अभी मैंने आपकी कॉल ले ली, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
4: वालेकुम सलाम
0: जी, कॉलर कहाँ से?
4: आपकी मैं उस्मा हूँ, इस्लामपुरा छप्पर से।
0: उस्मा कैसी हैं आप?
4: मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या पैगाम लाई है?
4: आपका शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है।
0: जजाक अल्लाह, आप पैगाम क्या लाई है? खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज। ऐसी कॉल होनी चाहिए। प्रोग्राम की तारीफ बेशक मत करें, मेरी तारीफ बेशक मत करें, बस आएं अपना पैगाम दें और कॉल का इख्तिताम करें। इतनी लंबी लंबी कॉल्स अगर आप चलाएंगे ना तो बाकी सारे, अभी ये जितनी कॉल आ रही हैं इन सब का क्या कसूर है कि वो बार बार ट्राई कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवान। अस्सलाम वालेकुम अनवान
5: जी। वालेकुम सलाम।
0: कौन और कहाँ से? खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जजाकल्ला जजाकल्ला, क्या पैगाम लाए?
5: लाया हूँ कि हमारे इदारे हम लोग प्रेजेंट करें, हमारे इदारे बहुत ग्रेट है, खासकर हमारी फौज।
0: जी जी सुन रही हूँ मैं, बोलिए।
5: हेलो।
0: जी जी सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, आप बोलिए।
5: मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे इदारे बहुत ही अच्छे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारे इदारे जो है ना जी।
0: बेचारे बात अभी पूरी भी नहीं कर पाए थे, मैं चाह रही थी कि वो खुद ही बोलें बट वो बोल भी नहीं पा रहे थे।

0: अस्सलाम वालेकुम अनवर। ओ, ओ, ओ इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम अनवर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉलर कहाँ से?
1: आपकी आवाज आ रही है मेरी?
0: जी जी आपकी आवाज आ रही है।
1: अच्छा, जो और कराची से बात कर रहा हूँ, मुजीब रहमान मारपानी, और आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है?
0: जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पैगाम लाए?
1: पैगाम तो वैसे नहीं है, लेकिन मैं सलाम कहूंगा रेडियो पाकिस्तान आल दोनों स्टेशन को, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान को, और स्पेशली जो है ना रेडियो पाकिस्तान दारकाना खैरपुर कराची शिकार अपना सॉरी हैदराबाद मिट्टी वालों को सलाम कहूंगा स्पेशली। और इनसे अगर वहां तक मेरी आवाज जा रही है तो इनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि रात को जो है ना 10 बजे प्रोग्राम चलता है तारण भरी रात, तो उसमें मेरा नाम शामिल किया जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है और छोटी सी रिक्वेस्ट है, सीरीज ऑफ प्ले होगा शाजिया खुश का और वो जमालों के नाम से।
0: जी जी ठीक हो गया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।
0: अल्लाह हाफिज। कॉलर्स को मेरी समझ नहीं आ रही या मुझे कॉलर्स की समझ नहीं आ रही या हम सबको प्रोग्राम की समझ नहीं आ रही। वेल अस्सलाम वालेकुम मनोवन, इनकी भी कॉल ड्रॉप। अस्सलाम वालेकुम मनोवन जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। कॉलर कहाँ से? जी बिल्कुल ठीक। खुश आमदीद। क्या पैगाम लाए?
2: बहुत अच्छा
0: है। जजाकल्ला जजाकल्ला।
2: और आज के हवाले से पूछना चाहती हूँ, आज खबर नहीं आ रही। और
0: ओके मैं उसका आपको पूछ के बता सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता।
2: आज खबर मैम से पूछिएगा और वो बताइएगा।
0: श्योर श्योर श्योर, मैं पूछ के बताती
2: हूँ। आज पानी का भी, आज पानी भी नहीं आ
0: रहा। चले मैं पूछ के बताती हूँ।
3: देयर्स म्यूजिक And then there's magic. One above FM 103.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क में हैं। नायब वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और मिस्र के आला हुक्काम से मुलाकातें की हैं। ईरानी सदर ने तिजारत, तवानाई, सियाहत और मुश्तरका सरमायाकारी के शोबों में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। जापान ने 20वें एशियाई खेलों के हॉकी टूर्नामेंट के ग्रुप मरहले में आज पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को 5-1 से शिकस्त दे दी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: This is FM 101.
1: It's Kaz on the beat.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क में हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में एक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बिरादराना रवाबित का इआदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने COP31 एक्शन एजेंडे के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार करते हुए मौसमियाती मंसूबों पर मौसर अमल दरामद पर जोर दिया है। आज जापान के शहर निशिन में एशियन गेम्स के ख्वातीन के क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 31 रन से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

थैंक यू जी. नाइस. ओके ओके. अच्छा जी, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? बात हम कुछ इस तरह से मिली जुली करने वाले हैं. एक्चुअली ना, कुछ लोगों से आपको बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. आज मैं वैसे सोच रही थी, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस का एंड क्या होता है? हमारे साथ वैसे स्टूडियो में आज हमारी एक इंटर्नी भी मौजूद हैं. कोशिश करेंगे उनको भी थोड़ा सा साथ में बुलवाएं. और हम, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से रखते हैं, और मजे की बात यह है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और सामने वाला बंदा कह रहा है फेर आप जो है ना वो बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हो, या आप मायूस हो किसी से, आप किसी से, आपको किसी की कोई चीज़ पिंच कर गई है, और आप कहते हो कि यार मैंने इस बंदे से या मैंने इस बंदी से जो है ना वो इस बात का इजहार करना है, और मैंने उसको कहना है कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ जो है ना वो ये बात बहुत बुरी लगी है, और सामने वाला बॉदर ही नहीं कर रहा. और वो इंसान जिसको आप कहती हो कि यार नहीं, मेरी हर बात से इसको फ़र्क पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेशंस जब एक लेवल पे आती हैं, हैं लड़की, एक्सपेक्टेशंस जब एक लेवल पे आती हैं, यार मैं ये गाना लगाती हूँ ना, फिर आपको साथ में थोड़ा सा ऐड करती हूँ, थोड़ा सा हाँ हूँ तो करोगी ना साथ. एक्सपेक्टेशंस जब एक लेवल पे आती हैं तो फिर क्या होता है, ये मुझे आपने बताना है. और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं या एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, ये भी एक बात है ना. हम कहते हैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. अब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना एक अदर मसला है, एक्सपेक्टेशंस बन जाना. जब आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होते हो, कोई भी रिश्ता होता है, इवन तो दोस्ती का रिश्ता है, आपके कोलीग हैं, आपके साथ ऑफिस में वर्क करते हैं, अच्छा दोस्ती और जो फैमिली एक रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, ये तो एक बहुत ही बड़ा सर्कल होता है ना. आप तो कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर लो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, यार उस वक्त पे मैंने इसके साथ अच्छा किया था, या उस वक्त पे कोई इस तरह की चीज़ हुई थी, जब मुझ पे कोई इस तरह की तलखी आएगी या मुझ पे कोई बुरा वक्त आएगा तो ये इंसान पीछे नहीं हटेगा, या ये इंसान मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, या ये इंसान जो है ऐसा है जिससे मैं जो भी बात कहूँगी वो, या कहूँगा वो उस बात को पूरा करने की कोशिश करेगा या करेगी. तो ये तमाम चीज़ें जब आप सोचते हो, ये आप सोचते हो, ये आपको करनी पड़ती हैं या ये हो जाती हैं, ये आपने मुझे बताना है. सज्जाद अली लाडला आगे आगे लड़के, तुम आज तो शुरू में ही आ गए, छा गए, बहुत सारे मैसेजेस आपके सामने मेरे मौजूद, उनको मैं शामिल ज़रूर करूँगी. एम नईम टेलर हमारे साथ हैं जी, और गुड मॉर्निंग कहते हैं. अब्दुल्ला मलखेल हैं, बहुत शुक्रिया जी. कमलनाज, ओके, हाउ एम आई गर्ल, हेलो. तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये अक्सर आप सोचते हो, और सोचने के साथ आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है यार, कि बाज़ दफ़ा हम किसी से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि ये इंसान जो है ये इन चीज़ों को बॉदर करे. और अगर नहीं होता, अगर नहीं होता, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर नहीं ऐसा होता, अगर वो इंसान बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा, या उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है?

ये आपने मुझे बताना है, बताना बताने का तरीका बहुत आसान है बताने का तरीका बहुत ही आसान है. FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर जाके कमेंट कीजिएगा. इसके साथ साथ आप मुझे लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन मी, ज़ुबिया शफीक के नाम से पेज है, ZUBIA SHAFIQ. वहाँ पे जाएं, उसे ज्वाइन करें और शामिल हो जाएं हमारे साथ. कमेंट ज़रूर करना है आपने और मुझे बताना है, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी की साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक सवाल तो ये है ना कि एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं या एक्सपेक्टेशंस खुद ही रिलेशनशिप में आ जाती हैं, ये आपने मुझे बताना है. और सेकेंड ये, अब रख लें या आ गई, टूट गई, क्या करें आप? खामोश हो जाएं, रिश्ता छोड़ दें.

0: नेक्स्ट टाइम पे एक्सपेक्ट ना करें,
1: बिल्कुल खामोशी। इब्रारुल हक को शामिल कर रही हूँ। किसने मुझे कहा था इब्रारुल हक, उनको मैंने शामिल कर लिया। साइकिल तो नहीं लाया लेकिन कुछ और लगा दिया। आई होप आप इंजॉय करेंगे।

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद। आज मैं बात कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस अगर किसी से बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे सामने वाला पूरा नहीं उतरता तो फिर आप क्या करें। मेरी अभी इधर जो लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि जी चुप कर जाएं, अपने काम से काम रखें और फिर बस अगले बंदे को कहें बस ठीक है ओके जो मर्जी करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें भी। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वो क्या है कि तेनू चाहनी सानू परवाह नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर सामने वाला ही हाँ, चलो मैं आपको ना लाइव साथ में लेती हूँ, वो माइक को इधर करो अपनी तरफ। हमारे साथ एक इंटर्नी मौजूद हैं, वो कह रही थी कि मैं अभी जो है ना वो इतना नहीं, मैंने कहा चलो हाँ हूँ तो करो ना मेरे साथ, हेलो हाय हाँ हूँ। अगर आप उधर सामने बैठती ना तो फिर आपने ज़्यादा इजीली आ जाना था, आप सामने आ जाए। अच्छा जी, तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि एक्सपेक्ट कर रहे हो ना बहुत सारी चीज़ें, आप एक्सपेक्ट करते हो किसी से और जब वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता था, मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। यार मैं तो बड़ी थोड़ी सी ना, लड़ाइयाँ झगड़े मुझसे होते नहीं हैं, मैं शरीफ बच्ची, लड़ाइयाँ नहीं होती मुझसे, मैं फिर वो क्या कहते हैं एक चुप सो सुख, फिर मैं खामोश कहती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मसला वहाँ पे आता है, देखें वो मेरे ना नाना अबू एक मिसाल दिया करते थे, एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि जिसको खड़ा हुआ नज़र नहीं ना कोई बंदा आता, जिसको बैठा हुआ नज़र नहीं ना, आपको अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई नज़र नहीं आ रही ना तो मुझे आपको खड़े होकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने अगर मुझे देखना है, आपने मुझे रिस्पेक्ट करना है तो आपने यहाँ मेरी मौजूदगी से ही रिस्पेक्ट करना है। अगर मैं अभी ऑन करती हूँ ना इसे, अगर मैं खड़े होकर साथ में कहूँ कि हाँ कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एवं आवाज़ आ रही है, अब आप बोल सकते हैं, बोले ना ज़रा बोले बोले।
1: मेरा मानना यह है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने से बेहतर यह है कि सामने वाले को आपका जो एहसास है वो खुद हो।
0: हाँ।
1: आपकी एफर्ट्स के बावजूद अगर सामने वाले को कोई एहसास नहीं है, आप उसको वैल्यू कर रहे हैं लेकिन
0: हाँ।
1: उसको आपकी वैल्यू का कोई एहसास
0: हाँ,
1: नहीं
0: हाँ,
1: है
0: हाँ, हाँ,
1: आपकी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है,
0: हाँ।
1: तो फिर बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को चुप करके ना शिकवा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे शिकवे के भी हकदार नहीं होते, तो आपको शिकवा भी नहीं करना चाहिए, खामोशी से जो है डिसअपीयर हो जाना चाहिए,
0: डिसअपीयर हो जाना चाहिए। लेकिन ना बाज़ दफ़ा तुबा हम लोग ना बहुत ज़्यादा इस मामले में बेबस होते हैं, बाज़ जगहों पे, बाज़ रिश्तों में। बाज़ दफ़ा ना हम बेबस होते हैं रिश्तों के मामले में, हम कहते हैं यार इस स्पेसिफिक पर्सन को या इस स्पेसिफिक रिश्ते को हम छोड़ नहीं सकते ना, वहाँ पे जाके चीज़ें ना बड़ी मायूस सी हो जाती हैं, वहाँ जाके ना आप बेबसी फील करते हो कि यार कैसे। लेकिन शायद ये जो बात आपने की है ये भी हकीकत है कि जब कोई दिल से उतरता है ना फिर वो कब कैसे उतरा कोई पता नहीं चलता, फिर वो सामने खड़ा हुआ भी नज़र नहीं आता, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा। एनीवेज ये हम टॉपिक को थोड़ा सा लाइटर नोट पे ही रखेंगे और आपके बहुत सारे पैगामात मेरे सामने मौजूद है, लाइव पे मैं मौजूद हूँ, जिन्होंने मुझे लाइव पे ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं एफएम 101 के ऑफिशियल, लाइव पे आप मुझे एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ और वहाँ पे आके आप मैसेज करें, और इसके साथ साथ आप मुझे ज़ुबैर शफीक के नाम से मेरा पेज है आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फर अफजाल कहती हैं खुद पे पैनिक अटैक ना लें, सुने और खुश रहें। हाँ वो कहती हैं खुद पे पैनिक अटैक ना लें, मतलब ऐसा हो जाए तो ऐसा ना करें कि पैनिक ही हो जाएं आप। लेकिन फरा यहाँ पे ये भी तो बात है ना कि मैंने एक और सवाल का एक और रुख भी किया कि क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं या खुद ही बन जाती हैं। इसी तरह जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो पैनिक अटैक लिए जाते हैं या पैनिक अटैक खुद ही हो जाते हैं।
1: मैं कुछ कहना चाहूंगी कि आपकी जिन लोगों के साथ तवक्कुआत होती हैं वो तवक्कु जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो खुद से बनती हैं,
0: ठीक है।
1: और दूसरी बात ये कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना तो फिर जो सामने वाले की जगह है वो जगह
0: नहीं रहती, यहाँ से यहाँ पे आती है, वो
1: जगह भी यहाँ से यहाँ आती है। और फिर ये कि कुछ रिश्ते आपने बोला कि बहुत अजीज हैं आप उनको छोड़ नहीं सकते, वो ये है कि आप उनके लिए सेम वैसी एफर्ट करना जो है वो दोबारा छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जबकि लिमिटेड रिश्ता जरूर रखते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए लेकिन वैसी एफर्ट जो है वो नहीं डालते।
0: एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की आपने। ये सारी बातें जो है ना, ये तो हमने साथ साथ चलानी है और ये साथ साथ में होनी है। कुछ पैगामात हैं लाइव पे जो लोग मुझे देख रहे हैं। जुबिया, वैसे मैं किसी से उम्मीद नहीं लगाती, तो अगर किसी से लगाती हूँ तो क्या कहती हैं, क्या कंवल नाज हमें ज्वाइन करती हैं, कहती हैं मैं किसी से उम्मीद नहीं लगाती, अगर लगाती हूँ किसी को अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालती। फरफजाल कहती है और जो दिल से उतारे उसे तो बहुत सुना। अच्छा सुनाए, सुने नहीं सुनाए यार, नहीं ना ऐसे नहीं होता होता, ऐसे नहीं होता होता। बाज जी को भी आप सुना भी नहीं सकते ना, आप कहते हो यार। मुझे फरा ये चीज लगती है कि सुनाने से भी ना आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू वो नहीं रहती, जो खामोशी से डिसअपेयर होने में वैल्यू एक रहती है ना, एक मान रह जाता है, शायद उस रिश्ते का एक मान रह जाता है। लेकिन अगर आप सुना देंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो फायदा नहीं है, फिर तो फायदा खत्म हो गया।
1: सुनाने का एक ये भी अमल है कि अगर आप सुना रहे हैं तो मतलब ये कि आपकी उस चीज की जो वैल्यू है या जो अदब जो रिस्पेक्ट है वो नहीं थी।
0: हाँ।
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ आपकी तवक्कात होती है उनके सामने आप नहीं बोल सकते,
0: नहीं बोल सकते,
1: उसमें आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी मैटर नहीं करती है।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छी बात की। तो आपने भी मुझे ये बताना है कि अगर आपको किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और वो रिश्ता उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर आप क्या करेंगे, ये मुझे बताइएगा। ज्वाइन कर सकते हैं मुझे लाइव पे। और फरफजाल कहती हैं आज के दौर में एक्सपेक्ट करना खुद को भी बेवकूफ बनाना है। और राजकुमार शर्मा हमारे साथ है, जिंदगी में संजीदा होना चाहिए, लेकिन मेरी प्यारी बहन आप तो बहुत ही खुश मिजाज हैं, कहती हैं आप तो बहुत ही खुश। हाँ तो होना चाहिए ना, खुश मिजाज होना चाहिए। मैं वैसे जब यहाँ पे आती हूँ ना बहुत खुश मिजाज होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वैसे भी हूँ, पता नहीं लोग मुझे क्यों कहते हैं कि ये बड़ी रूड सी है। लोग कहते हैं आपको मुझे देख के लग रहा है मैं रूड हूँ, लगी हूँ मैं 1% भी लगी हूँ, तो ये जो लोग मुझे कहते हैं ना सोच लो।
1: आप
0: टीचर टीचर लगती डिफरेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी जुबिया हमें, अच्छा ओके जी, आपने भी हमें लाइव पे ज्वाइन करना है और आपने एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन करना है। 04211100101 हमारा डायलिंग नंबर है, आप वहाँ आके भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आके कॉल कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं कि मौसम चेंज हो गया है। वैसे
1: गर्मी है,
0: रात के टाइम थोड़ा सा लास्ट 2-3 दिन जो है ना वो चीज़ें थोड़ी तब्दील फील हो रही थी, मुझे भी फील हुआ कि
1: सुबह फजर के टाइम 5 बजे के करीब सुबह फॉग थी, पता नहीं वो फॉग थी या स्मोक थी। लाहौर में तो ऐसे
0: लाहौर में तो अब स्मोक आने, लेकिन फिर भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत वर्क किया है इस पर। आपको पता है आने वाले सब पिछले गुज़िश्ता जो 2-3 साल हैं उसमें आपने लास्ट ईयर तो स्मोक का बिल्कुल बहुत कम था, बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू बिफोर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत चीज़ें कम थी। तो जनाब आलिया यहाँ भी हम लगाते हैं एक सॉन्ग, इस सॉन्ग को आप सुनें, इंजॉय करें और फिर मुझे बताइएगा ये सॉन्ग आपको कैसा लगा। और हम वापस आएंगे अभी थोड़ी देर तक। यहाँ पे ये गुलदस्ता आया है, ये किसके लिए आया है ये तो नहीं हमें पता, लेकिन खैर सामने एक आया है, बुके आया है, बुके। अच्छा जी ये सॉन्ग आपके लिए कंवल, दिस इज़ फॉर यू। हमें फरा सुन रही हैं, फरा आपके लिए होपफुली आप इंजॉय करेंगे। और वो तमाम लिसनर्स जो सुन रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं, आप तमाम के लिए बहुत अच्छा ट्रैक, मज़ा आएगा आपको सुन के, एंजॉय करें।

0: FM 101. आप सुन रहे हैं FM 101.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: क्या दिल कर रहा है कमल सुनने को, दिल कर रहा है सुनने को, कहती है दिल कर रहा है सुनने को लड़की, क्या दिल कर रहा है आपका सुनने को बताएं, खरी खरी सुना दूं फिर मैं आपको। सैयद मोहम्मद अली ज़िया हमारे साथ, अस्सलामु अलैकुम ज़ुबैर शफीक, वेरी नाइस शो, बीजेएम इज ऑसम, थैंक यू सो मच जी। सजाद अली लाले कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया किस बात का कर रहे हो लड़के, आज एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप कॉल लें तो लाइव शो जो लोग सुन रहे हैं तो आपको आपके अच्छा वहाँ पे आवाज़ नहीं आती, लाइव शो जो सुन रहे हैं उनको आवाज़ नहीं आती, उसके लिए क्या करते हैं, करते हैं उसके लिए भी कुछ, बताती हूँ मैं, एक है ट्रिक मेरे माइंड में। चाय की क्रेविंग होती है आपको सुबह, चाय की क्रेविंग होती है या कॉफ़ी की होती है?
1: दोनों की।
0: अच्छा आजकल ना कॉफ़ी लवर कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो ना ट्रेंड ट्रेंड में कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पीते हैं, होते हैं ना ऐसे, मतलब कॉफी पीनी है तो दिन में कोई 10-10 कप कॉफी के ही पी लेने हैं, थोड़े थोड़े टाइम
1: में भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, चाय बिल्कुल ऑफ हो गई।
0: आपको पता है इतनी कॉफी नहीं यूज करनी चाहिए,
1: इतनी हाँ, कैफीन
0: ड्राइनेस इंतहा से ज्यादा की स्टमक के

0: सजाद अली लाला कहते हैं आपकी आपकी इस लाइव पे बात की, ओके ठीक हो गया। सजाद कंवल कहती हैं कि तेरी एक झलक को तरस जाता है दिल मेरा। मैं रोजाना लाइव आई होती हूँ, रोजाना की मैं पोस्ट डालती हूँ अपने पेज पे, क्यों तरसती हो आप। एनीवेज जी, आज हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से बहुत ज़्यादा, और वो लोग ही होते हैं ना जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते। तुबा, क्या ख्याल है? उनको तो लोग ही कहा जाएगा ना, लोग ही कहा,
1: अपना नहीं कह सकते,
0: अपने नहीं ऐसे करते। अपना वो कभी नहीं होता जो आपको तकलीफ पहुंचाए, जिसको आपकी तकलीफ का अंदाजा ना हो, जिसको ये पता ना हो। यार आप किसी की इंसान के साथ हो, आपको उसकी नेचर का नहीं पता कि वो किस नेचर का इंसान है। अगर तो आपको उसकी नेचर का नहीं पता तो ये तो एक अलहदा मसला है, फिर तो आप रिलेशन में हो ही नहीं ना, फिर तो वो रिश्ता है ही नहीं, वो कोई भी रिश्ता है फिर तो नहीं है। और अगर आपको पता है ये बंदा बहुत सेंसिटिव है, बंदा पता है कि ये मेरी छोटी छोटी चीज़ को फील करता है, और फिर भी आप वो चीज़ करो, तो फिर तो आप लोग ही हो ना, फिर तो आप अपने नहीं हो। तो इस तरह जब लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते तो फिर आप क्या करते हो। हमारे साथ FM 101 के पेज पे अजी मैं मैसेजेस शामिल करती हूँ 101 के। पहले लोगों को मैं समझती, अब वहाँ लोग मुझे, अच्छा वो कहती हैं कि पहले हीरा फातिमा है हमारे साथ, कहती है पहले लोगों को मैं समझाती थी, अब वही लोग मुझे समझाते हैं। उम्मीद उनसे रखनी चाहिए हमें जो अल्लाह पाक के बाद ज़मीन पे हमारे साथ हों, और अपनी माँ बाप उनकी बाद कोई सच्चा नहीं है, एक वो शख्स जो मुखलिस हम सफ़र हो। पॉइंट तो ये
1: अच्छी बात की है कि आजकल के दौर में ना, और स्पेसिफिकली 2026 में अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना भी है कि आपके माँ बाप से ज्यादा कोई इंसान भी जो है वो आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। और ये कि एक अच्छा हम सफर में मिल जाना, ये भी अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि आपकी जो दुनिया है ना वो
0: संवर जाती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी।
1: अगर इसके अल्टरनेट बहुत सारे हमारे पास केसेस मौजूद होते हैं कि एक बुरा शख्स जो है वो इंसान की पूरी जिंदगी जो है उसको खराब करने के लिए काफी
0: होता है। बिल्कुल।
1: तो ये कि माँ बाप के बाद एक अच्छा हमसफर होना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और बाज़ दफ़ा ना यहाँ पे ये भी बात को मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, कुछ रिश्तों को ना आप बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से परवान चढ़ाते हो, एक पॉइंट भी आके आपको लगता है कि यार ये जो इतना सफर गुजरा ना, ये रायगा चला गया।
1: ऐसा ही है,
0: एक लम्हे में खत्म होती हैं वो सारी चीजें। खून के रिश्ते कभी तब्दील नहीं हो सकते, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं हो सकते। इसके अलावा जिंदगी में हर रिश्ता एक पॉइंट पे आके डिसअपॉइंट कर जाता है।
1: आजकल हमारे यहाँ जो खून के रिश्ते हैं ना वो भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। खून के रिश्ते भी, मतलब कि हमारे यहाँ खून के रिश्तों में भी इतने लड़ाई झगड़े हैं कि मतलब अपने करीबी लोग भी जो है ना वो गैरों से भी बदतर हो चुके हैं मौजूदा दौर की सूरत हाल है। कि बस ये है कि आपका उनके साथ खूनी रिश्ता जरूर,
0: माइक के थोड़ा पास,
1: खूनी रिश्ता जरूर है आपका उनके साथ, बट ये कि वो दिल से, और मतलब कि मुनाफ़कत इतनी है लोगों में कि
0: मुनाफ़कत
1: बहुत,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस जो है ना सिर्फ एक मजबूरी की वजह से आपसे ताल्लुक रखे हुए कि बस इसका हमारे से रिश्ता है खूनी। बस
0: वो क्या कहती हैं कि वो पता नहीं कुछ इस तरह का करके है, अभी मेरी लाइफ पे मुझे ये शेयर सेंड कर देता है कोई, तीर पहला किसने मारा फिर कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही है ना एक पोइट्री। सामने दुश्मन भी था और साथ में अहबाब भी, सामने दुश्मन भी था और साथ में अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। तो पता नहीं चलता ना बाज़ दफ़ा। और वो कहते हैं कि बदला लेने का, जो दोस्त आपसे बदला लेता है ना सबसे तकलीफ दे, क्योंकि जो तीर सबसे पास से लगता है ना आपको, वो सबसे निशाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा निशाने पे वही लगता है।
1: और हाँ एक रिवायत है कि गैरों को क्या पता कि किस जगह चोट पे जानी है, हमारे अपने ही होते हैं जो हमें जानते हैं, तकलीफ देते हैं
0: और उसी पॉइंट पे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम आज जो है ना बस क्या करें, मैं इतनी ऐसी बातें नहीं हमने करनी, हमें तो लग रहा है रात के 11 बजे वाला मोड़ा। एनीवेज जी यहाँ पे न्यूज ब्रेक है और न्यूज ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं। 101 FM

0: जी बहते हैं ना, बहते हैं ना आंसू मेरे, बहते हैं ना जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। तो कुछ लोग बस कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक एक रिश्ता उनके साथ रहता है। ऐसे लोगों को ना आजकल के दौर में एक चीज़ कही जाती है, वो क्या कहते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर है ना, कुछ इस तरह का कि ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये बस अपने आप में रहते हैं, अपनी तारीफें सुनना पसंद करते हैं, अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं, खुद क्या चाहते हैं बस वो बताते हैं कि मैं किसी भी रिश्ते में। अच्छा, उन लोगों में आपकी बहन, आपका भाई, आपकी फैमिली मेम्बर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, अच्छा कुछ वाइफ, ऐसे लोगों में मर्द हजरात को ज़्यादा थोड़ा सा किया जाता है कि मर्दों में ये चीज़ डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ख़वातीन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जो कहती हैं मुझे सुनो, मेरी बात मानो, या मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करो। अक्सर बच्चियों की, ख़वातीन का चूँकि प्रोग्राम है तो हम थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे। बच्चियों की शादी होती है, आपके अपने घर में ना थोड़ा माहौल और तरह का होता है, उस माहौल को आप एक अगले घर में लेकर जाते हो, वहाँ पे जाके आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। अब 10 लोग एक घर में मौजूद हैं तो वो 10 लोग नहीं बदलेंगे, वो 10 लोग नहीं बदलेंगे ना। उस टाइम पे क्या करना है आपने, आपको खुद को चेंज करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। अब आप कहो कि जी अपने घर में तो मैं ऐसे नहीं थी, अपने घर में तो अम्मी मुझे 12 बजे भी नहीं उठाती थी। तो भाई ये ससुराल है, अम्मी का घर नहीं है, नानी का घर नहीं है ये। पॉइंट ये है, अगेन वही बात, बदलना दोनों को चाहिए। देखें, आप दो लोग अलहदा जगह पे पले हुए, उनकी परवरिश अलहदा हुई हुई, उनको चीज़ें सिखाई अलहदा जाती हैं, उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं, उनकी बात करने का अंदाज़, लहजा सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। एक चीज़ हमारे सामने, ये एक रिमोट पड़ा हुआ है, लाजमी नहीं है कि जो मैं सोचूं वही आप सोचो इसके बारे में। लाजमी नहीं है कि इस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल करूं वही आप इस्तेमाल करो। हर इंसान का अपना एक डिफरेंट सोचने का अंदाज़ होता है, इसलिए जब तक दो लोग ये नहीं ना समझ जाएंगे कि यार हम दो अलग अलग लोग हैं, एक नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लोग एक तब बन सकते हैं जब वो एक पॉइंट पे आकर खड़े हो जाएं। और एक पॉइंट पे वो उस टाइम पे खड़े होते हैं जिस टाइम पे उनकी सोच आपस में मिलने लगती है, दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की ओपिनियन की इज्जत करते हैं। आप मेरी ओपिनियन की इज्जत ना करो, आपको क्या लगता है मैं आपकी इज्जत करूंगी? शायद दिखावे की कुछ टाइम के लिए करूं, शायद डर से करूं, दिल से उतर जाएंगे आप। पॉइंट इज दिस, तो यही बस बात है। अच्छा जी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, 04211100101 हमारा डायलिंग नंबर है, आपने वहाँ भी आना है। तो वह हमें कॉल्स आती होती हैं तो फिर हम कॉल्स भी लाइव लेते हैं। और यहाँ पे कुछ पैगामात हैं मेरी लाइव स्ट्रीम पे, बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो कॉमेंट किए हुए हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर चलूँगी। सजाद कहती हैं टॉपिक पे मैं ये कहूँगा कि क्या कहूँगा, गायब हो गया वो, कहूँगा से सजाद गायब हो गया, सारा काम ही बिगड़ गया। करती हूँ मैं इसको भी, अच्छा लाइव स्ट्रीम में ऑन कर लेती हूँ, बाद में मुझे ना मैसेजेस पढ़ने में इश्यूज आ जाते हैं तो वो भी मैं करती हूँ। सजाद जरा यहाँ भी एक लाइव कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, आप रबिया शेख।
0: वालेकुम सलाम, कौन है जी हमारे साथ? कहाँ
1: जी? अब्दुल हमीद फरुखाबाद, जानते
0: हैं क्या कहिएगा?
1: बहुत सारी आपका जो प्रोग्राम हसमुखा खुश गुजार है, बहुत अच्छा है। छोटी भैन भी नाल आई है, मेहमान मेहमान है क्या? आरजे है?
0: मेहमान नहीं है, ये आरजे है जी।
1: अच्छा जी, इसको भी सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: माशाल्लाह खैर अभी। अभी रुबिया शफीक, मैं ना आज तो 40 साल पीछे जाऊंगा, जो रिश्तेदार होंगे सी ना बरादरी कट्ठी होंगी सी, शादी विवाह करना, एक दूसरे नु बुलाना, हर एक नु उम्मीद होंगी कि साडे रिश्तेदार आउंगे ते अच्छा होएगा, मतलब कोई बच्ची की शादी हुई या बच्चे की एक दो एक एक दो दो जोड़े लैके आ जाना,
0: ठीक है।
1: ते वो ना आमदार भी मिल जाती ही, ते जिवे वो कहंदे शादी भी खुश मिजाज होंदी ही,
0: ठीक है।
1: हुण सब तो ज्यादा रिश्तेदार बीच करदे सारिआं नूं हां, ते उदों होनी है रिश्तेदारां दी भैणां भरावां च आउणगे ते असीं खुश रहांगे। हुण सब तो ज्यादा रिश्तेदार बीच करके जांदे आ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ।
1: ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ।
1: ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਫਿਰ ਅਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਫਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਆਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਆਪਨੇ।
1: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਰਜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਦਾਮ ਦੇ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਿਲਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਲੇਗੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ
1: ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਬਾਸ਼ਨ ਖਾਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।
0: ਸੁਬਾ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਆਜ ਸੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਕਈ ਹੋਣਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਨਾ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਦੋ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਥਾ ਕਿ ਘਰ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਓਂ ਕਾ ਜੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵੋ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਹਸਨਾ ਖੇਲਨਾ, ਢੋਲਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
2: ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਕੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾ ਪਾਂਚ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਆ ਜਾਤੇ ਥੇ ਕਿ ਸਭ ਆਪਸ ਮੇਂ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂਗੇ, ਬੈਠੇਂਗੇ, ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਵਾਕਿਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਆਤੇ, ਸਭ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਹੋਤੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ
2: ਅਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਿ
0: ਅੱਛਾ ਵੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਮ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਏ, ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਕੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਤਾ ਥਾ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਜ਼ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਆ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਖਾਲਾਂ ਆ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਘਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਉਸਕਾ ਜਹੇਜ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੋ ਮਾਮਲਾਤ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਬਰੀ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੋਪਿੰਗ, ਵੋ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਇਕੱਠੀ ਚੀਜ਼ੇ ਬਣਾਈ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਕੋਂਬੋ ਬਣਾਏ ਜਾਤੇ ਥੇ ਕਿ
2: ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ
0: ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਹਾਂ ਇੱਕ ਅਦਦ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਵੋ ਸੌਂਗ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹਮ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਸੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਯੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਖਮੂਰ ਆਖੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮੈਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਾਇਆ ਥਾ, ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਇਸਕੋ ਕਰੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏਂ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਵਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜੋ ਪੂਛ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕੋਈ ਆਪਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਪੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰੇਂ।

0: है ना, ऐसे है ना, होता है कभी कभी ऐसे भी। 04-221-1-0-0-1-0-1। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अनुमान मोहम्मद मनु, क्या बात कर रहा हो? तानेवाल से।
0: कौन बात कर रहे
1: हैं? मोहम्मद मलूक, क्या बात कर रहा हूँ? मनोवन की नखिया।
0: मोहम्मद मलूक साहब क्या कहिएगा?
1: जी जी, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा होता है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: हाँ जी, तो आपने नंबर ही नहीं पाया, जब कॉल करता रहा हूँ, कॉल जाती है लेकिन नंबर ही नहीं
0: सर,
1: पाते
0: हैं। उठा लिया, अब आप बात करें, क्या बात करना चाहेंगे?
1: हाँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। प्रोग्राम तो वैसे भी आपका बहुत अच्छा होता है, तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम हो, तमाम लिसनर्स को सलाम हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे।
0: बहुत शुक्रिया जी। ये जब कॉल उठाती हूँ तब बात किया करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है शिकवों में टाइम गुजर जाता है, वो फिर जो टाइम की बात होती है वो फिर वहाँ कॉल कट हो जाती है। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन जब हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा रखते हैं और वो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर आप क्या करें? ये एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये मुझे आपने बताना है। बताने का तरीका बहुत ही सारा है। 04-221-1-0-1-0-1 हमारा डायलिंग नंबर है। इसके अलावा आप हमें कमेंट कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे, आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है।
2: एक्सपेक्टेशंस तो इंसान रखता ही है, क्योंकि अगर वो ना रखे तो वो फिर ह्यूमन तो कंसीडर ना हो, फिर उसकी जो नेचर है वो जरा रोबोटिक में चले जाएगी
0: और
2: इंसान नहीं रहेगा, वो
0: इंसान नहीं रहेगा। और रिश्ते चलते भी एक्सपेक्टेशंस ही हैं, एक दूसरे पे एक्सपेक्ट करते हो तो आप रिश्ते में आगे बढ़ते हो ना।
2: उम्मीद और जज्बात,
0: हाँ एग्जैक्टली,
2: ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर इंसान नामुकम्मल है।
0: नामुकम्मल है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 04-221-1-0-1-0-1। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ?
3: एहसन खान बात कर रहा हूँ।
0: एहसन खान क्या कहिएगा?
3: सबसे पहले ना साजिदा की आज शादी की सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद आपका टॉपिक तो मेरे ख्याल से कुछ हद से ज्यादा ना नहीं लगानी चाहिए तवक्कोआत।
0: अच्छा,
3: हेलो
0: जी जी,
3: क्योंकि इसमें खामखा अपना रिश्ता खराब करने वाली बात ही होती है।
0: मतलब तवक्के पे कोई पूरा नहीं उतरेगा?
3: जब पूरा नहीं उतरता तो फिर हमारे दिल टूट जाते हैं, फिर हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो रिश्ता खराब होने शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा नहीं लगा लेनी चाहिए,
0: थोड़ी बहुत लगानी चाहिए।
3: हाँ, कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, बिल्कुल ही बंदा।
0: और जो कुछ ना कुछ पे भी पूरे ना उतरे वो
3: नहीं, इतना तो नहीं होता कि बंदा बिल्कुल ही
0: होता है, लोग बड़े बड़ा कुछ करते हैं भाई।
3: अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान तवक्कोआत लेता है उनसे और वहाँ से अगर वो भी पूरी ना हो तो फिर इंसान पीछे हटना शुरू हो जाता है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलता। तो हमारी जो नई आरजे आई है उनको हमारी तरफ से बहुत वेलकम, अस्सलाम वालेकुम।
0: और मुझे बोले तो
2: बहुत बहुत
3: शुक्रिया। उनकी आवाज नहीं आ रही,
0: कह रही है बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: नहीं, शुक्रिया वाली बात नहीं, ये नई आई हैं तो हमारी तरफ से वेलकम तो बनता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा, इनकी आवाज़ वगैरह पहले तो आ रही थी, तो इनके जो है वो शो करने का अंदाज भी अच्छा है, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया
3: तो
2: आपका।
3: रजा भाई के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे उनकी भी कॉल मिल जाए और वो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं।
0: चलिए रजा भाई, एहसन भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। FM 101 के जो लिसनर हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो उस टाइम पे हमें याद रह जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चेहरे जो याद रह जाते हैं, एक जो आपको मोटिवेट करने वाला होता है, आपको इनकरेज करने वाला होता है, आप एक होता है वो डिस्करेज करने वाला होता है, ये दोनों लोग याद रह जाते हैं। एक कहते हैं आप कभी कुछ कर नहीं सकते, कहते हैं आप कर सकते हो, और उन लोगों की वजह से आप जिस मुकाम पे पहुँचते हो वो उन लोगों की वजह से ही पहुँचते हो जो कुछ कहते हैं कुछ कर सकते हो, और उन लोगों की वजह से भी पहुँचते हैं जो कहते हैं नहीं कर सकते। क्यों भला?
2: क्योंकि आपको उनके करके दिखाना होता है,
0: करके दिखाना होता है। ये अच्छी समझदार हो गई लड़की मेरे साथ बैठ के। एम रजा चौधरी साहब हमारे साथ हैं जी, मैसेज किया उन्होंने, वेलकम टू द शो कहते हैं, बहुत शुक्रिया एम रजा चौधरी साहब, आपके बड़े वो आ रहे हैं कि आप कॉल मिला रहे हैं, चलें आप मिलाएं फिर हम आपकी कॉल अटेंड करेंगे। मलिक इकरा हमारे साथ हैं, इकरा रहे हैं अब या इकरा है मुझे ना, मैं कंफ्यूज हूँ शुरू में।
2: कुछ लोगों के इस तरह के हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है।
0: शुरू में मलिक आ गया, आगे इकरा आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही मलिक कहना है या इकरा कहना है।
2: हैं? क्यों नहीं अक्सर बनाए होते ना फेसबुक अकाउंट
0: मलिक इकरा, या इकरा मलिक कहती है ना, तो वो एक अलहदा था, वो मलिक पहले आ गया, इकरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मलिक है या इकरा है। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
4: जी हम लाहौर से, DHA से बात कर रहे हैं।
0: जी करें बात।
4: और आपका ये भी सुन रहे हैं FM।
0: तो क्या कहिएगा, हमारे टॉपिक के हवाले से क्या बात करेंगे?
4: जी टॉपिक के हवाले में यही बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है आजकल, पेट्रोल जो चढ़ा हुआ है।
0: अच्छा जी, एक्चुअली सर टॉपिक हमारा ये, अगर तो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको पता है कि टॉपिक हमारा ये है कि दो लोग जब रिश्ते में होते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अब हर मुल्क पे तुबा मुश्किल हालात आते हैं, घर में जैसे मुश्किल वक्त आता है, उस मुश्किल वक्त में घर वालों का भी पता चलता है और घर में रहने वालों का भी पता चलता है, पता चलता है सरबरा किस तरह से उसको वो करता है, मैनेज करता है। मुल्क तो बहुत बड़ा है ना, उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। ये वो टाइम है जिस टाइम पे हमें यकजहती का मुजाहरा करना है और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज अपनी जगह पे हुकूमत कर रही है, अपनी जगह पे हमने करना है। आप देखें ना, जिस बात के बारे में बात हो रही है उसके बावजूद आपने सड़कों पे रश देखा?
2: ऐसे ही
0: आप अगर एक चीज़ नोट करो ना, अगर 10 गाड़ियाँ जा रही हैं तो 7 गाड़ियाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए खाने पीने और इधर उधर घूमने जा रही हैं। 3% जो लोग हैं ना वो जा रहे हैं किसी काम पे, किसी काम से
2: किसी एक को भी ब्लेम
0: नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है कि हमने जो है ना थोड़ा सा 04221111। अस्सलाम वालेकुम जी।
5: वालेकुम बहु की हाल ठीक ठाक खैरियत है
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
5: आज शिवपाल कर रहे हैं, सियालपुर से।
0: क्या कहिएगा जी,
5: कहाँ का प्रोग्राम माशाल्लाह चलो सुनने पे हैं, तो बहुत प्यारा प्रोग्राम, बहुत प्यारी गल है, चाहत होंगी है कि थोड़ा प्रोग्राम सुनिए, हर प्रोग्राम तेरा कोशिश करता अपना कॉल मिलाइए, नहीं मिलती कॉल इस तरह बड़ी औखी कॉल मिली अज,
0: मिल गई आज तो चलें। क्या कहिएगा कि जब तवक्कात रखते हैं हम बहुत सारे लोगों से और वो तवक्को पे पूरा नहीं उतरते फिर क्या करें?
5: जी
0: हम लोगों पे तवक्कात रखते हैं ना, तवक्का रखते
5: जी
0: हाँ, तो वो उन तवक्कात पे पूरा नहीं उतरते फिर क्या करें?
5: तो वो एक चीज मामला मैं अनपढ़ बंदा मैं तो नहीं है गल कर सकता ठीक है।
0: ओके ओके
5: हाँ, ते बाकी यार नाम दो देने बाद काम करनी कर चली सारा दोस्तों सलाम दे रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए जी हम कुछ लाइव के मैसेजेस को शामिल करेंगे। हमारे साथ शरारती बच्चा है, वो कहता है सूट के साथ कवर मैच करके लाती हैं या आज गलती से मैच हो गया, बस ऐसे समझो आज गलती से मैच हो गया ये देखे ना। अच्छा वैसे कुछ लोगों ने रखे होते हैं अलहदा अलहदा कवर रखे होते हैं जो उन्होंने सूट्स के साथ मैच करने होते हैं, कमेंट किया हुआ था तो फिर सेटिंग में किया एक्टिविटी में हो गया, वहाँ से कमेंट मिली और कमेंट से फिर आपकी पोस्ट मिली, बड़ी मुश्किल करनी मुशक्कत करनी पड़ी, सांस फूल गई थी। ओके आपको चलें इसके ना जो है ना कोई ना कोई गिफ्ट भेजते हैं, अभी गिफ्ट के तौर पे एक गाना लगाऊंगी मैं आपके लिए। बेहतरीन अंदाजे बयान कहती हैं कंवल नाज, शरारती बच्चे कहती हैं तुबा आपको तुबा आपको सर्दी लग रही है तो एसी बंद करवा दो, कहती हैं तुबा आपको सर्दी लग रही है तो एसी बंद कर। ओके हो गया ए वही तू कौन में खामा सजाद अली लाडला कहते हैं जबरदस्त शो है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम का। अच्छा आपने कभी लाइव ज्वाइन किया है, किसी का कॉल कट किया है? अच्छा ये भी एक ना, आप किसी की कॉल कट करते हो, कट करने का मतलब क्या होता है?
2: पर्सनली है मतलब कि कोई तल्ख बात होगी?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आपने कॉल कट की उसके पीछे दो रीजंस हो सकती हैं, एक तो आप बात नहीं करना चाह रहे, दूसरा आप मसरूफ हो, तो दोनों सूरतों में जब कॉल कट की जाए तो उसका मतलब ये होता है कि अभी थोड़ा वेट किया जाए। कुछ लोगों की कॉल कट करो, मुझे कॉल आ रही है बार बार, मैं कट कर रही हूँ लेकिन वो जो है ना कॉल आई जा रही है। अच्छा इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप हमें लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पे कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, मुझे बताएंगे।
2: कमेंट्स पढ़ें
0: जी पढ़ें आप, हाँ कमेंट पढ़ें। 101 की. हमें 101 के पेज पे कुछ कमेंट्स आए हैं और तुबा को मैंने कहा है कि वो कमेंट्स पढ़ें, वो कमेंट्स पढ़ती हैं आपकी. अगर आप हमें कॉल करें तो टू दी पॉइंट बात करें, टॉपिक सुने और फिर बात करें हमारे साथ. क्या दूं फोन, दूं एक मिनट. ये कमेंट हैं, ये कमेंट आपने ये कमेंट पढ़ने हैं. कुछ कमेंट्स मैं पढ़ चुकी है, कुछ को आपने पढ़ना है. तो आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने मुझे ये बताना है कि एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं या एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं. अगर हो जाती हैं तो फिर क्या करें. जी तो बा, चलें जब तक तुबा ना कमेंट को सीधा पदरा करती है हम. क्या हो रहा है आप लोगों को, क्या हो रहा है. अच्छा, हमारे साथ मेरे बस में हो तो लहरों को इतना हक भी ना दूं, लिखूं किनारों से नाम तेरा और उसे छूने तक ना दूं. ओए होए होए होए, कवल नाज कमाल करती हैं आप जी.
2: हमारे साथ हेरा फातिमा है, उन्होंने कमेंट किया है कि पहले खुद को हम देखें कि हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं या नहीं. दूसरों से तो उम्मीद बाद में रखनी चाहिए.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. ये बात भी है. अच्छा, ये भी एक है कि बाज़ दफ़ा हम दूसरों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे होते, लेकिन हम कहते हैं कि सामने वाला बंदा हमारी उम्मीद पे पूरा उतरे. ये पॉइंट भी होता है जी.
2: साजिदा जहूर है हमारी अपनी आरजे. अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद से आपके साथ हूँ. ठीक है, इसके बाद हमारे साथ हैं रमजान गुज्जर, जिनका कमेंट आया, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद आपको भी सुनने के लिए मिला. ठीक है, और उस्मान चिश्ती हैं, जिनका कमेंट है, टॉपिक से रिलेटेड सॉन्ग दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, लगाइएगा.
0: लगाएंगे जाते हुए, अभी रोना नहीं है हमने.
2: और जाहिद खान है, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो. मोहम्मद रजा चौधरी है, सुपर डुपर शो. रमजान गुज्जर है, टॉपिक रिपीट करें मिस दो इस आरजे. और मोहम्मद हफीजुर रहमान बखर से हैं के वेलकम टू द शो.
0: ओके ओके, ठीक हो गया. चलें जी, एक कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. क्या कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ. कॉल्स करते हैं जब मैं अटेंड करती हूं तो कॉल कट कर देते हैं. 04221100101. आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर आप किसी से बड़ी उम्मीद रखते हैं, ठीक है, और सामने वाला बंदा आपकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरता, फिर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, उसको कहते हैं कि भाई पूरा उतरो मेरी उम्मीदों पे. अस्सलाम वालेकुम
6: जी. वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक है जी आप?
0: बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब, आप बताइएगा.
6: बस आपकी दुआएं माशाल्लाह. देखें जी, उम्मीदें जो हम रखते हैं, जो पूरा नहीं करते, फिर उससे गिला नहीं करना चाहिए.
0: ठीक है,
6: तो जो हमें इनकार कर रहा है, पता नहीं कुछ उसकी अपनी भी मजबूरी हो सकती है. जो हमें
0: ना वो पूरा हो, अगर आदत हो तो.
6: आदत जो जिस दिन को आदत पड़ गई, वो आदत नहीं जा सकती.
0: फिर क्या करें?
6: जो आदत, तो फिर उसको फारग करें. उसको कहें नहीं जी, मेरे से ये काम नहीं होगा जी, आपकी मेहरबानी. यही तो मैं भी कह रहा जी. माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जी. देखो ये जरूरत जो अपनी होती है ना, वो खुद पूरी करनी चाहिए, किसी पे नहीं आस रखनी चाहिए. तो हम किसी पे आस रख लेते अपने काम से भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो अपना काम है ना, वो आप ही करना चाहिए, किसी पे नहीं रखना. मेरा तो यही पैगाम है.
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू. यही तो मैं कह रही हूँ कि उम्मीद अगर अगला बंदा नहीं उतरता ना आपकी उम्मीद पे पूरा, फिर क्या करें. हम कहते हैं छोड़ दें तोड़ दें, यार कुछ जगहों पे नहीं छोड़ा तोड़ा जाता, कुछ जगहों पे आपको वहीं पे रहना पड़ता है. और बहुत सारी जगहों पे आपको वहीं पे रहना पड़ता है. छोड़ तोड़ नहीं सकते ना आप वहाँ पे, आपको वहाँ पे स्टे करना है. और फिर स्टे करके फिर आप क्या करें, ये मैं बात पूछ रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम जी.
7: वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
7: क्या ले सस्तर, खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी.
7: ये बाबरेली बोल रहा हूँ, फ्राम मलकंद स्वात.
0: क्या कहिएगा
7: जी, बस आपकी टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी टॉपिक है और जबरदस्त.
0: क्या कहेंगी इस टॉपिक पे?
7: मैं तो बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उम्मीद बंदा अच्छा रखता है कि उनसे भी अच्छी उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन जब इस बात बनाने के लिए जब बंदे चले जाते हैं ना, تو کوئی اس میں ایسے بندے چلے جاتے وہ ان کے پیچھے جاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو رشتے مت دو ان کے ساتھ یہ کیوں کیا ایسا ہو تو یہ ان باتوں کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی ہے لوگوں کو ملتے ہیں.
0: بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. جی طبا کوئی کامنٹ ملے آپ کو؟
2: محمد رضا چودھری کا کامنٹ ہے, شمسی ریڈیو لسنر کلب لاہور کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں, ہم آپ کو خوبصورت شو کرنے پر ایف ایم ریڈیو 101 لاہور کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
0: شکریہ, تھینک یو جی رضا صاحب, آپ کا آپ بھی کال کر رہے ہیں مجھے سننے میں آیا ہے تو کوشش تو ہے آپ کی کال مل جائے.
2: صادق الیاس نے کومنٹ کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پروگرام بہت اچھا ہے, تمام دوستوں اور سبھی سننے والوں کو السلام علیکم. فرینڈز ریڈیو لسنر کلب لاہور فیصل آباد پاکستان کے جو دوست پروگرام سن رہے ہیں ان میں انہوں نے اپنے دوستوں کے نام لکھے ہیں وہ سب شامل ہیں.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا طبا اتنا پوز نہیں لینا ہم نے کامنٹ پڑھنے میں, جلدی جلدی پڑھنا ہے ایسے ایسے. اچھا جی آپ کے بہت سارے کامنٹس میرے سامنے بھی موجود ہیں. ہاں ہاں مینوں اپنی تعریف سننا منہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا, اگر میرا کردار کی وجہ سے بعد میں بعد کی موجودگی میں, ایک تو یہ سجاد جو ہے نا یہ اتنی ماشاءاللہ اچھی اردو لکھتا ہے نا, اور یہ انگریزی اردو وہ مکس کر دیتا ہے.
2: کا ایک کامنٹ پڑی تھی, لکھا ہے دو چار باتیں وہ لوگ بھی سنا کر گئے ہم کو جن کو کمیزوں پر اپنا گریبان تھا ہی نہیں, اپنے پارساؤں میں پھر دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا, جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا انسان تھا نہیں.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کمال کر دیتا, کمال ہے کمال ہے, اچھا ہے اچھا ہے. اور سجاد کامنٹ کر رہی ہیں کہتے ہیں یا اللہ خیر, کڑائی مائک نو نظر لگ گئی ہے. اچھا مائک کو کہتے ہیں کہ وہ نظر لگ گئی ہے, نہیں نظر تو نہیں خیر لگی لیکن نظر لگ بھی جاتی ہے. وہ کون سا گانا ہے وہ نظری نظر نظر کوئی اس طرح کر کے ایک سانگ ہے لگاتے ہیں ابھی ہم. 04221100101 السلام علیکم جی.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیا حال ہیں فری جی؟
8: لاہور سے بات کر رہی ہوں, آپ کیسی ہیں؟
0: میں پیاری ہوں,
8: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور پیاری کرے گا. توبہ کو بھی سلام میری طرف سے.
2: وعلیکم السلام.
8: آس امیدیں اور تعلقات جو ہوتے ہیں نا وہ کسی انسان پہ نہیں رکھنے چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سب کی آس مرادی پوری کرنے والا ہے. انسان کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا تو اے دکھ اور غم کے سوا, تو اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کے سب کے نصیب اچھے کرے. آپ کا بھی زینب برشد ہے, فاطمہ اسلم ہے, دن بچیوں کے گھر میں گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جیون ساتھی جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ملاب کرا دے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, سب سننے والے کے لیے بہت ساری دعائیں. شمسی دور والے سین میں رضا چودھری کے لیے, سنیما اپنی ہیں, رضا بھائی ہیں, وزیرا بھائی ہیں, نیل ڈرائیور ہیں, ہمارا بیگ ہے, سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ کے لیے آج کے ڈاکٹر وسیم احمد کے لیے اور پوری مینجمنٹ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ حافظ, ایمان اللہ.
0: فی امان اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی.
9: ہائے, السلام.
0: پانی پی لو,
9: السلام علیکم,
0: پانی پی لو, پانی پانی پی لو,
9: پانی تو میں بعد میں پیوں گی. تو بیا میں نے کال بنا بنا کے سمجھو میں پنجاب یونیورسٹی سے نا تمہارے اسٹوڈیو میں دوڑ کے آئی ہوں.
0: کیا کہیں گی کمل, کیسی ہیں؟
9: میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ جو آپ اب کمنگ نیکسٹ آنے والی آج ہیں تو ان کو بھی میں بہت عزت سے احترام سے ویلکم کہتی ہوں.
2: بہت شکریہ. آپ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟
9: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور مجھے میں ٹاپک پہ یہ بات کہوں گی کہ ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے اس رشتے سے ہمیں لگ جاتی ہیں جن کے اوپر ہمیں مان ہوتا ہے. غیروں پہ تو نہیں نا ہم لگاتے, جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ہی ہمیں ان سے امیدیں بھی ہو جاتی ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں کہ جتنا وہ سہ سکے یا جتنی ہماری امیدیں پوری کر سکیں. اگر ہم نے 5 لگائیں گے تو 2 بھی پوری ہو گئی ہیں نا, تو اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقت اس دور میں کسی نے ہماری اتنی ایکسپیکٹیشن تو پوری کر دی ہیں.
0: صحیح کہہ رہی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں.
9: اور بڑا زبردست پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور تمام لسنرز کو اور شمسی گروپ والوں کو سلام. اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہماری بڑی پیاری سی کالر ہیں یہ, ان کا نام ہے کنول ناز. तो कमल नाज हमें पंजाब यूनिवर्सिटी से सुना करती हैं। अच्छा जी शुक्रिया तुहानू मेरी शायरी यानी शेर चंगा लगा, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने मैसेज किया। शरारती बच्चा कहते हैं तुबा कमेंट्स ऐसे पढ़ती है जैसे स्कूल में सर कहते थे कि चलो बेटा उठो रीडिंग करो और स्पीड से करो। नहीं नहीं ऐसे होता है ना, शुरू शुरू में तो ऐसे ही होता है ना।
2: मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं जो है वो न्यूज एंकर हूँ, इस वजह से मेरा अंदाज़े बयां जो है वो इस तरह,
0: हाँ थोड़ा सा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा कहते हैं कि मुझे आपकी हंसी से एक बात याद आई, अक्सर हम मैसेज पर हंसी का वॉइस भेजने लगते हैं तो वो रिकॉर्ड होने के बाद कैंसिल हो जाता है, तो फिर मजबूरन दोबारा से हंसना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि दोबारा से फिर हंसना पड़ता है ना, तो वो इतनी जोर से कहके वाली हंसी होती है। अच्छा जी अगर हो जाती हैं तो फिर इंसान को समझना चाहिए एक दूसरे को। वो कहते हैं कि अगर दो लोग आपस में इकट्ठे चलते हैं रहते हैं और उम्मीदें बन जाती हैं तो फिर एक दूसरे को समझना चाहिए, हौसला अफजाई करना सीखें, तनकीद तो सभी करते हैं। अच्छी बात की सजाद ने। अच्छा जी सजाद कहते हैं लोग तुम्हारी उम्मीदों पर पानी डालेंगे, तुम इसमें चीनी पत्ती और दूध डाल के चाय बना लेना और साथ केक रस खाना। वाह क्या बात की लड़के तुमने। 04221111 ये जो प्रैंक करते हैं ना आप कॉल में, ये प्रैंक ना किया कर। जबरदस्त शो कहते हैं जी, शरारती बच्चे कहते हैं जबरदस्ती तुबा से बात मनवाए ना आंखों का दबाव डालकर। हाँ
2: कुछ भी नहीं है,
0: ऐसा नहीं, कुछ नहीं ऐसी नहीं होती, स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं है तुबा, अच्छा लग रहा है मेरे साथ प्रोग्राम करके
2: है,
0: है ना रिलैक्स है ना, फील तो नहीं हो रहा, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम किया है, कोई मसला नहीं है। हाँ बस यही सुनना था मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
10: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
10: मैं भी ठीक हूँ, मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: बिस्मा क्या कहोगी?
10: मैंने भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी कि मेरी कॉल मिल गई या फौरन से दीदी आप उठा लेंगी, तो इतनी दफा मिली नहीं उठाई, मैंने कहा नहीं यार आज नहीं हो सकता, लगता है इनका ना दिल नहीं कर रहा मुझसे बात करने को। तो देखो मतलब वो जो अभी आई थी कॉलर वो कह रही थी ना जो अपने होते हैं उनके साथ हम खुद ब खुद एक्सपेक्टेशंस लगाई लेते हैं ना, तो जैसे मैंने लगा रखी थी फिर एकदम से मेरा ऐसे मूड खराब हो रहा था और मैं सैड हो रही थी, मैंने कहा लगता है नहीं होगा, एकदम से आपने उठाई है तो मैं खुश हो गई हूँ। तो ये ऐसे होता है, हम एक्सपेक्टेशंस खुद ब खुद लग जाती हैं, ठीक है, कभी कभी हम खुद नहीं लगाते, अपने आप ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो बस हम उम्मीदें लगा लेते हैं दूसरे से। और बाकी ये है कि इतनी ज़्यादा भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, और अगर आपसे कोई आप अपने आप को रखें ना उस जगह पे, अगर आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस लगाता है इतनी, तो क्या आप उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर जाते हैं? तो अगर आप पूरा उतर जाते हैं तो ठीक है, सामने वाले पे भी आप ये उससे भी ये उम्मीद रखें कि वो भी उतरेगा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप थोड़ा सा खुद भी ख्याल करना चाहिए इंसान को, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि आप किससे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, अपने मम्मा से पापा से या भाई से। तो भाइयों से तो मेरे ख्याल में इतनी नहीं लगानी चाहिए, अगर मम्मा पापा से हम लगा ले तो वो एक अलग बात है कि पापा हैं वो आपके मम्मा हैं, पर बहन भाइयों में शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा इनसे।
0: डन हो गया बिस्मा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, आपका मैसेज पहुंच गया।
10: ओके थैंक यू।
0: बिस्मा अपने भाइयों से नाराज है, कंक्लूजन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी फरफजाल कहती है जुबिया आंखों से डांटती है, हाय ना करो यार, अम्मियाँ होती है ना। अच्छा बचपन में हम जब याद हाँ तुबा बचपन में जब घर में मेहमान आता था तो वो खाना या कोई जूस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जा रही होती थी, तो बच्चे अब इधर उधर फेर रहे हैं, हम जब फेरते थे मरी इशारों से, या फिर जब मेहमान जाने लगता था ना तब अम्मी ने कहना होता था इशारों से अंदर चले, हम इतने ढीठ, हम फिर बार बार, और अभी मेहमान गेट तक गया नहीं और हम उस प्लेट के ऊपर कूदे होते थे जो प्लेट उसके सामने रखी होती थी,
2: अभी घर के गेट पे मौजूद होते,
0: हमने वो सारी बिस्किट्स और वो जो भी चीज़ें होती थी हम कहते थे कि बस ये खा लो फौरी तौर पे। तो ये चीज़ें जो है ना वो ये तो फिर साथ चलती हैं। एक कॉल लेती हैं फिर सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
11: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम।
11: वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? बहुत सी दुआओं के साथ रमजान अनवर गुजर, नाम तो सुना होगा। زوبیہ شفیق صاحبہ کیسے مزاج؟
2: الحمدللہ جی
11: خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو خوبصورت بدن میں, اور سن رہا ہوں ٹائم کا مقابلہ پر ٹاپک پر آتا ہوں. امیدیں لگائی نہیں جاتی, امیدیں لگ جاتی ہیں.
2: یہ چیز
11: کیونکہ سب سے پہلے نا بندہ جب مشکل میں یا ضرورت میں کس کو یاد کرتا ہے نا تو وہ پھر اپنوں کو یاد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر تو وہ اس کی ضرورت کوئی جائز کوئی پوری کر دے تو پھر محبت اور بڑھ جاتی ہے, اگر نہیں کوئی پوری کرتا تو پھر ظاہر ہے پھر نفرت اور بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ یہی کرے, ضرورت اس وقت کسی کو کہیں جب آپ بے بس ہو گئے, آپ کی کوئی سنے نہ, تو اس وقت کسی کو یاد کریں اور فریاد کریں. اور میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار ایک مسئلہ, تو میں نے اپنے سیکٹر کو کہا تھا 40,000 دے دے جن میں تیرے گھر لیا, تو میرے سے پہلے کہنے نہیں ہے, پہلے کہنے نہیں ہے گے پیسے بھائی, پھر کہنے اچھا تو گھر نہیں آنا, چل چل میں تن دے دیے دار, انہوں نے مجھے دارے دے دیتے, پھر میں نے اپنی ضرورت پوری کر دی.
2: پھر تو دار واپس کیتا,
11: میری امی کو لے آنے واپس, میں کسی کا دار امی کو آگے رو بھائی نے لے سی پیسے کا دے دے اگلے مہینے, پھر امی نے
2: چلیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. دیکھیں نا بہنوں کو پتا ہوتا ہے, میرا بھی بھائی ہے تو وہ کہے گا 500 روپیہ دے دے, میں اچھا میں کلینک میں بیٹھی ہوگی مجھے میسج آئے گا بہن بن کے 500 روپیہ سینڈ کر دے, بہن بن کے 1,000 روپیہ سینڈ کر دے. ابھی صبح صبح میری اس کے ساتھ بحث ہو رہی تھی, تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مجھے شرٹ لے دے, میں نے کہا چپ کر کے نا ابھی جس طرح سے بات کر رہے تھے اس طرح ہی بات کروں, کہتا دیکھ وہ تو علیحدہ بات ہے نا شرٹ تو لے دے. تو اس طرح کی بھی کچھ امیدیں ہوتی ہیں. ایک گانے کی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس آئیں گے 04-2111-0101 اور کنکلوڈ کریں گے پھر ٹاپک کو. آپ کے سارے پیغامات کو میں اب شامل کروں گی, ایک آدھی کال دیکھیں گے اگر لی گئی تو, ادر ویز پھر آپ سے اجازت چاہیں گے.

0: हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है और हमने चाहा कि आपके सारे पैगाम को साथ में शामिल करें, एक आधी कॉल भी साथ में ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: लाहौर शाहबाद से मोहम्मद नवीद बात कर रहा
0: हूँ। मोहम्मद नवीद साहब, जल्दी जल्दी बताएं कि जब किसी से तो आपने उम्मीद रखी है और वो उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, फिर
1: आपकी पहली बात तो है, मैं किसी के ऊपर बहुत ज्यादा रखता ही नहीं हूँ,
0: उम्मीद नहीं रखते। ठीक है,
1: ना ना ना ना, मांगना और जो भी जरूरत हो उस रब से मांगो, वो जो पूरी।
0: मांगने की बात नहीं कर रही, उम्मीद की बात कर रही हूँ।
1: हाँ, मैं उसी से लगाता हूँ उम्मीदें।
0: बहुत शुक्रिया आपका नवीद, थैंक यू। कहते हैं बोलो तुबा। आबिद हुसैन हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम टॉप शो की। ओके आबिद हुसैन फ्रॉम ओके, बहुत शुक्रिया आबिद, थैंक यू सो मच। उस्मान चिश्ती, थैंक यू सो मच। इजाज़ अरमान, थैंक यू सो मच। उस्मान चिश्ती, थैंक यू सो मच। रमजान गुजर, बहुत शुक्रिया आपका। और जी कौन है हमारे साथ, अमरजा चौधरी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। मैंने कुछ कॉल्स ली, अभी भी एक आधी कॉल्स आपकी कॉल की वजह से ही लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: खान बाबा बोल रहा हूँ।
0: खान बाबा, मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा, उम्मीदें पूरी, उम्मीदों पे लोग पूरा नहीं उतरते, फिर क्या करें?
2: उम्मीदों में लोग पूरा जब नहीं उतरते हैं ना, तो वो रुस्वा होते हैं।
0: जो उम्मीद लगाता है वो, या जिनसे उम्मीद लगाई जाती है वो?
2: वही मैं कह रहा हूँ ना, कि जो उम्मीदों पे नहीं उतरता है वो रुस्वा होता है, जो उम्मीदों पे उतर जाता है वो कामयाब हो जाता है।
0: वो कामयाब हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
2: ओके, थैंक यू, थैंक यू।
0: आपका बहुत शुक्रिया जी।

0: अच्छा जी यहाँ पे क्या हमने करना है, हमारा माउस ही नहीं चल रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अब ऐसे भी हो जाते हैं, ये देखा है ना क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वाह ये वाले सारे मसले मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम।
0: अच्छा जी यहाँ पे क्या हमने करना है, हमारा माउस ही नहीं चल रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अब ऐसे भी हो जाते हैं, ये देखा है ना क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वाह

0: उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो फिर आपको तब पता है कि दिल पे क्या गुजरती है इंसान के, इसलिए उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए।
1: जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: हाँ जी।

0: जी जनाब, तो बात हम कर रहे हैं उम्मीदों पे पूरा उतरने वाले लोगों के लिए, तो वो आप क्या कहती हैं?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उम्मीदें जो हैं, उम्मीदों के बगैर जो है ना कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद जरूर लगाएं, और अगर उम्मीद पूरी नहीं होती तो अपनी उम्मीदों को जो है वो थोड़ा कम कर दें, लेकिन उम्मीदें लगाना अगर आप छोड़ देंगे तो फिर इंसान जो है
0: रिश्ता नहीं चलेगा ना,
1: नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।

कितना रोया था मैं तेरी खातिर। कितना रोया था मैं तेरी खातिर। अब जो सोचूं तो हंसी आती।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: और आज जापान के शहर निशेन में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर एशियाई खेलों में खवातीन के क्रिकेट मुकाबलों का फाइनल जीत लिया है। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 11वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क में हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने फलस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया है। वज़ीरे इत्तलात ने अमन, रवादारी और कौमी इत्तेहाद के पैगाम की तरवीज पर जोर दिया है। भारत में मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बाइस नौजवान बेरोजगारी और तालीमी जवाल का शिकार हैं।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर,

0: सरगोदा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, अबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: हाँ, गौस पाक की दस्तगीरियों के सदके अहले इखलास की सफ़ों में अपना मकाम पा लिया लोगों ने। हाँ, दीन हक की तालीम और तरबियत में हुजूर गौस पाक किसी शख्स की दुनियावी हैसियत की खातिर नहीं लाते थे, चाहे वो कितना बड़ा ओहदा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे हाकिम हो, आप सबसे एक सा ही सलूक करते थे। हाँ, उन्हें मखलूक से नेक सलूक की तलकीन फरमाते थे। वाखर दावाना अनिलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलैका खातमुन्नबिय्यीन सदकल्लाहुल।
1: और मुसलमानों, नमाज सही वक़्त पर अदा करो, इसमें अल्लाह ताला ने रूहानी और जिस्मानी शफा रखी है। और देखो, आप उसमें फिरके ना बना लेना जैसे दूसरी कौमों ने बनाए और वो तबाह हो गईं। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम कुरान मजीद में मुसलमान रखा है।
2: अभी आप समात फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से आयात मुबारका का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: Smile and dial 111-111-FM.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में हैं, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और जापान ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इरादा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने आज रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तज़ीन आराइश की गई इमारत का इफ्तिताह किया। जापान में 20वीं एशियाई खेलों में पाकिस्तान के आसिम खान ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में मुल्क के लिए पहला कांस्य का तमगा जीत लिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: काम करने के लिए निकलते जो हैं वो घी और मक्खन से बनी चीज़ें भी खाते थे, सारा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। लोग चलते थे अपना ऐसा जो भी काम करना होता था वो उन्होंने जाना था, लेकिन अब जितनी आसाइशें हो चुकी हैं, ज़रूरियातें जिनकी बढ़ चुकी हैं, तो हमारी जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है।
1: आप देखें ना, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अगर हमने बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने भी जानी है या बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना है तो हम भी पैदल जाया करते थे, हमारे बड़े हमें पैदल छोड़ कर आया करते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो चेंज हो रहा है, तो ये वजूहत हो सकती है।
0: बिल्कुल, ये वजह है, ये आपकी जो जितनी आसाइशें हैं, आप गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आपने गली में भी जाना हो, बाजार में भी जाना हो, तो आप इन आसाइशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टोटल जो हम रिकमेंड बहुत करते हैं कि आपका जो 30 मिनट ब्रिस्क वॉक है वो डेली आपको मॉर्निंग या इवनिंग में बहुत जरूरी है, दैट इज टोटली मिसिंग इन आवर लाइफ। इतनी हम बिजी हो चुके हुए हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जिसमें हमारा अभी टाइम नहीं निकाल पाते, और ओवरऑल जो थोड़ा बहुत हम बीच में काम करने के लिए निकलते थे वो भी खत्म हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से वो जो बर्न है, वो आपका जो फैट बर्न है वो बिल्कुल खत्म हो गई होती है, और जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर कोलेस्ट्रोल है वो आपकी नालियों में तंगी करता है और फिर दिल की बीमारियों के बाइस बनता है।
1: अच्छा चलिए, अब आपने कोलेस्ट्रॉल का जो कि जिक्र कर दिया है, तो उसमें एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब ये हाई होता है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, ये क्या होता है, जरा मुझे गाइड कीजिए।
0: देखिए, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक चिकनाई का जो किस्म का मादा है जो कि हर किसी की बॉडी में मौजूद होता है। मसला कोलेस्ट्रॉल से नहीं है, मसला कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से है। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सेल्स की फॉर्मेशन है, डिफरेंट हार्मोन्स की फॉर्मेशन है, जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है। मसला तब आता है जब आपका इम्बैलेंस होता है, जब आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है कि एक फॉर्मेशन बन रही है, जब आपकी डाइट एक्सेस हो जाती है या आप उसको बर्न आउट नहीं करते, वो तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो ज्यादती है ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स लाइक लिवर वगैरह में, जिस आप सुनते हैं फैटी लिवर है, या आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाके आपके जमना शुरू हो जाता है, तह बनना शुरू हो जाती है। तो यही जब आगे तय बनती बनती आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लड वेसल्स की नालियां हैं उनका ल्यूमन जो होता है, उनकी जहां से ब्लड गुजरने का रास्ता होता है वो तंग करना शुरू कर जाता है, तो किसी वजह से भी शियर स्ट्रेस आ जाता है।
1: दिल के अमराज का जो रिस्क है, क्योंकि कनेक्टेड बात हो रही है, ये किस तरह बढ़ाता, किस तरह है, रिस्क कैसे बढ़ता है?
0: बेसिकली देखिए, नॉर्मली बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक उसमें ये है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल करते हैं, दैट शुड बी अबव जो लिमिट होती है उससे ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल एलडीएल को कम होना चाहिए, इसी तरह एक और वीएलडीएल है, एक और किस्म ट्राइग्लिसराइड्स की होती है, जो बेसिकली आपकी वो बेकरी आइटम्स या मीठा खाने से वो बढ़ जाती है, जो है जो बेसिकली ज्यादा फोकस जो हमारा आजकल रहता है वो है एलडीएल पे, जिस पे आपकी यूरोपियन है, अमेरिकन गाइडलाइंस है, वो इसी पे फोकस करते हैं। दिस इज द पार्टिकल्स जो आपके जो ब्लड वेसल में जाते हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन करते हैं, सोजिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो फिर फर्दर आगे ल्यूमन को आपका कम कर देते हैं, यानी कि वेसल को टाइट करते हैं, जिसकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता पहले एंजाइना होता है, फिर वो जब टोटली ब्लॉकेज हो जाती है, फिर हार्ट अटैक की तरफ ये बीमारी चली जाती
1: तो
0: है।
1: ये जो कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं जी बढ़ गया है
0: जी,
1: कोलेस्ट्रॉल, इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की कुछ बुनियादी वजूहत पर आप कुछ रोशनी डाल सकें
0: जी। अगर हम इनकी बुनियादी वजूहत देखें तो 3 से 4 बुनियादी वजूहत हैं जो कि हर एक को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो आपकी डाइट है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, जो है उसमें जो जरूरी है, जो स्पेशली मैं अपने पेशेंट्स को भी अटेंडेंट्स को भी गाइड करता हूँ, कोलेस्ट्रॉल जब आपके होते हैं दो तरह के, फैट्स जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी अनसेचुरेटेड और एक होती है सैचुरेटेड फैट होती है। जो आपके लिए बैड है वो आपकी सैचुरेटेड और ट्रांससैचुरेटेड फैट्स है। जब भी आप जा रहे हैं बेकरी पे कोई चीज लें या इस तरह की चीज लें तो उसमें जरूर चेक करें कि इसमें ट्रांससैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स कितने, अगर वो क्वांटिटी ज्यादा है दैट इज बैड फॉर यू। जो आपके लिए गुड है प्लांट ओरिजिन फैट्स, वो उसमें यूजली पोली अनसेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड फैट्स होती है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक है, वो आप इस्तेमाल। दूसरा आपकी डाइट के लिहाज से फिर आपकी डायबिटीज है, फिर आपका कहते हैं वजन का बढ़ जाना है, मोटापा है, गुर्दों की तकलीफ है, या आपकी जो आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये तमाम है जो डाइटरी मॉडिफिकेशन में आ जाता है। फिर दूसरी वजूहत है जिसे हम कहते हैं फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया, कि जिसमें देखिए कोई तकलीफ नहीं है, आपकी 9 से 11 साल में यूजली हम स्क्रीनिंग करते हैं जो एक रिकमेंडेड है गाइडलाइंस के मुताबिक, जिनमें फैमिली हिस्ट्री में टेंडेंसी होती है तो उनमें होता है रिकमेंडेड है 9 to 11 years में, फिर उसके बाद 19 में करते हैं, एवरी 5 years के बनते हैं, वो है जिनमें फैमिली की वजह से आपका, जिनमें फैमिली में काफ़ी लोग जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं तो उनका जो है चेक करना ज़रूरी होता है, तो उनमें ये वजूहत हो सकती हैं। तीसरी वजह होती है कुछ बीमारियाँ हैं, लाइक थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइड जो है, थायराइड को कम हो जाना, डायबिटीज है, गुर्दों का मसला है, मोटापा है, स्मोकिंग है, ये तमाम जो रिस्क फैक्टर हैं ये भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारी आपकी दवाइयाँ होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन वो जो दवाइयां हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं, जिसमें डिफरेंट आपकी कैंसर की दवाइयां हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, स्टीरॉइड्स हैं, इसके अलावा हम कुछ कार्डिक मेडिकेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं वो भी। लेकिन देखें, ये बताने का मकसद ये कि ये इसलिए गाहे बगैर डॉक्टर को चेक करना जरूरी है, वो असेस करता रहता है क्या जरूरत है। तो इस तरह की कुछ अदवियात भी होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं।
1: अच्छा, आप भी चूंकि हमने जिक्र किया है ट्रांसफैट का, सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का, ये एक बड़ी टेक्निकल बात है। हम में से बहुत सारे शहरी ऐसे हैं कि जो शायद ही किसी फूड रैपर का बैग पढ़ते हो कि इसमें ट्रांसफैट कितना है। अमूमी तौर पर जो देखा जाता है, जिसको हम अनहाइजीनिक फूड कहते हैं और बाज़ारों में आम फास्ट फूड है, आप उस पर तो ट्रांसफैट का जिक्र नहीं होगा ना, उसके बारे में बताइएगा कि हम उसको एहतियात कैसे उसमें कर सकते हैं।
0: आम लोगों के लिए बताते चले तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए अच्छा क्या है, घी और मक्खन से बनी चीज़ एनिमल फैट जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है एक आम लैंग्वेज में।
1: अच्छा,
0: जो प्लांट ओरिजिन फैट्स है वो आपके लिए अच्छी है जो
1: नहीं, हम तो बड़ा देसी घी और मक्खन बड़े शौक से खाते हैं।
0: देखिए उसमें जरूरी है, फिर आपके लिए मैं इसी बात पे करूंगा, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है ठीक है, तो फिर आप जो कर रहे हैं वो बर्न भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो एक्स्ट्रा है वो डिपॉजिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी है उसको बर्न नहीं कर रहे, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो यही चीजें आपके लिए वो सेफ नहीं है।
1: ठीक है, तो ये जो अब प्लांट फैट्स का दो तीन बार गुफ्तगू में जिक्र हो चुका है, थोड़ी सी इसकी अगर आप निशानदेही कर सकें ताकि आवाम सुनने वालों को भी।
0: आप देखें जो आपके हम डाइट वही करते हैं जो रिकमेंड करते हैं, जो आपके लिए हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल है, दालों का इस्तेमाल है, लेग्यूम्स का इस्तेमाल है, बीन्स का इस्तेमाल है,
1: ठीक है,
0: और इसके अलावा आप चिकन है, और जो दूसरी बात जो है लाइक रेड मीट है, रेड मीट बीफ इटसेल्फ आपका कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, आप दूसरा मटन है उसमें भी आपका ये होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो चीज़ें चर्बी जो है उसके बगैर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वही है बाकी जो चीज़ें हैं जो घी और मक्खन से जो आपकी केक चीज़ चॉकलेट पेस्ट्री बोतल वगैरह जो ये जो है इनमें इस्तेमाल जो है ये आपके लिए सेफ नहीं है जो है ना। ये कुछ चीज़ें आपकी ट्राइग्लिसर बढ़ा देती हैं और कुछ चीज़ें आपकी जो है ना वो जो LDL है उसको बढ़ा देती हैं आपकी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया अपने गुफ्तगू में जो एक जेनेटिकल इशू होता है, जो आपके मोरूसी इसमें कुछ चीज़ें आती हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल का सबब बन सकती हैं। आपने स्क्रीनिंग का बताया कि 9 से 11 फिर 19 आफ्टर एक सर्टन एज के बाद,
0: जो घी और मक्खन से जो आपकी केक चीज़ चॉकलेट पेस्ट्री बोतल वगैरह जो ये जो है इनमें इस्तेमाल जो है ये आपके लिए सेफ नहीं है जो है ना। ये कुछ चीज़ें आपकी ट्राइग्लिसर बढ़ा देती हैं और कुछ चीज़ें आपकी जो है ना वो जो LDL है उसको बढ़ा देती हैं आपकी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया अपने गुफ्तगू में जो एक जेनेटिकल इशू होता है, जो आपके मोरूसी इसमें कुछ चीज़ें आती हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल का सबब बन सकती हैं। आपने स्क्रीनिंग का बताया कि 9 से 11 फिर 19 आफ्टर एक सर्टन एज के बाद आप उस पर चेक करते रहते हैं टेंडेंसी को उसमें चेक करने के लिए। ये तो हो गई एक बात, सवाल इससे जुड़ा ये है कि मोटापा, ये तो अंडरस्टूड बात होती है कि जी मोटापा उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, दुबला पतला इंसान क्या वो भी कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, ये आप ये कहें कि डिफरेंट मिथ्स के साथ, मिसकंसेप्शन के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनमें से एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि आई एम अ थिन स्लिम गाय, हाउ कैन आई बी हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी बताने की बात है कि देखें इसमें फैक्टर आ जाता है जिसमें हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया या ट्राइग्लिसरीड जो
1: लुक नहीं है कोलेस्ट्रॉल के साथ, ये तो बात
0: जी बिल्कुल, ये मोटापा तो डेफिनेटली वो कहते हैं रिस्क बढ़ा ही रहा है। लेकिन जो थिन लीन है वो भी, ये जो तीन चार चीजें मैंने बताई हैं, अगर उनमें ये चीजें हैं उनकी फैमिली में हैं तो उनको भी मोहतात रहना चाहिए, उनको अपने डॉक्टर से जो है रब्ता करके अपना जो है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो है वो जरूर करवाना चाहिए जब वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिकमेंडेशन।
1: चलिए ये भी एक मिथ है जो हमने आज इस गुफ्तगू में इसको हमने क्लियर किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटिक होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल बनती जा रही है, तो जरा मुझे कोरिलेशन बताइएगा डायबिटीज का और कोलेस्ट्रॉल का।
0: जी बिल्कुल, बेसिकली जो डायबिटीज़ के साथ है, आपने अक्सर पेशेंट्स देखे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनका आपका डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल होता है, उनमें ट्राइग्लिसराइड भी जो एक खास किस्म होती है कोलेस्ट्रॉल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है जो है ना। तो ऑटोमेटिकली अक्सर उन पेशेंट्स में जितना अच्छा डायबिटीज का कंट्रोल होता है तो उनका ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली आपका अच्छा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपका, या आपका ट्राइग्लिसराइड के साथ, फिर आपका दूसरा जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL है उससे भी रिलेटेड होता है कि आपका LDL भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, LDL भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जो है ना। फिर इससे रिलेटेड कुछ पार्टिकल्स होते हैं लाइक LPA हमने करवाना होता है, या ApoB पार्टिकल्स होते हैं जो रेमनेंट्स होते हैं जो इनको कोलेस्ट्रॉल कैरी करते हैं जिनकी वजह से हम जज करते हैं। तो ये इन पार्टिकल्स का बढ़ जाना और फिर आप ट्राइग्लिसराइड LDL का बढ़ जाना, ये ऑटोमेटिकली वही आपकी जो है ब्लड वेसल्स में और जो फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस करते हैं जिसकी वजह से दिल की तकलीफ जो है ना उनमें इजाफा होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, अब लेट्स सपोज कुछ बीमारियां या कुछ अलामत बड़ी वाजे होती हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया या और दीगर जो अमराज होते हैं, लेकिन अगर कोई अलामत वाजे नहीं है कोलेस्ट्रॉल की, तो उसकी फिर आप जो तशखीस करेंगे उसका क्या प्रोसीजर है, मैकेनिज्म क्या होता है उसका, उसकी तशखीस करने का?
0: ये हम अपने पेशेंट्स को अक्सर गाइड करते हैं, लाइक जिसमें ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं साइलेंट किलर कहते हैं।
1: ओके
0: इसी तरह आपकी अक्सर डायबिटीज भी इनिशियल स्टेजेस में उसी कोई अलामत नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल की भी इनिशियल स्टेजेस में कोई अलामत नहीं होती
1: है।
0: तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट को बीमारी है कोई और रिस्क फैक्टर
1: चेक करवाएं।
0: अगर कोई ऐसी फैमिलियल वाली जो कैटेगरी है मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, तो उसमें तो अर्ली एज में स्क्रीनिंग हम करते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल का तनासब चेक कर सकें, या फिर जब लाजमी हो जाता है कि जब कुछ लोगों को दिल की तकलीफ हो जाती है उसमें तो मस्ट है, फिर हमने कोलेस्ट्रॉल से बचाव की अद्वियात तो लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। तो इसलिए ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है हार्ट डिजीज़ है, फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल है, अर्ली प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है, तो फिर आप लाजमी एक दफ़ा डॉक्टर के पास अपने विजिट करें ताकि आपको फर्दर गाइड करेंगे कितने अर्से बाद कब आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए ताकि आपको बीमारी से बचाया जा सके। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एनुअली बेसिस पे अपना जो है ना कोलेस्ट्रॉल करवा के,
1: ठीक है,
0: यू नो योर नंबर्स, आपके पास नेट अवेलेबल है वहां आप देख सकते हैं कितना लेवल मेरा होना चाहिए, आपकी वेस्ट है, वेस्ट है। बढ़ रही है, यू हैव टू चेक कि आप नहीं, आप अपना रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर आप नेट पे देखिए हर एक पे अवेलेबल है, बताने की भी जरूरत नहीं कि टारगेट क्या होना चाहिए, उससे बढ़ रहा है आपने चेक करना है, अपने 3-1 साल के बाद अगर आपको नहीं है तो अपने HbA1c अपने 3 मंथ्स का जो शुगर लेवल है आप चेक कर सकते हैं, अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर ताकि वो देख सके कि फर्दर क्या प्रिवेंशन जरूरी है, क्या अद्वियात जरूरी है अभी, क्या और क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है जो आपके लिए बेहतर है।
1: अच्छा एक तो मेडिकेशन हो गया, मेडिकेशन से चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपनी आवाम के लिए भी कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं?
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपनी आवाम के सामने भी रखना चाहूँगा। मैं अपने पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को जो आते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ, देखिए हमारे सामने जो बेसिक एस्पेक्ट नज़र आ रहा होता है, अच्छी डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी हैं, लेकिन जब भी हम डील करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को या हार्ट डिजीज़ को, तो बेसिकली मैं उनको बताता हूँ वी आर ट्रीटिंग दैट डिजीज़ ऑन 3 पिलर्स,
1: ठीक है,
0: उसमें एक सबसे पहले डाइट है, सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और उसके बाद आपकी मेडिकेशन है,
1: ठीक है।
0: फर्स्ट दो एस्पेक्ट जितने आपके वीक होंगे उतनी स्ट्रांग मेडिकेशन या उतनी ज्यादा आपको मेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी ताकि हम जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं हार्ट डिजीज से बचाव के लिए वो हमें करना पड़ेगा। डाइट के लिहाज से वही आपको बताया था कि आप पोली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो फैट है वो आपके लिए बेहतर है, ट्रांस और सैचुरेटेड फैट से अवॉइडेंस है। दूसरी बात फिजिकल और दूसरी डाइट में आपकी लेग्यूम्स, बीन्स, आपकी पल्सेस हैं, आपकी नट्स हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल है, जो सीरियल्स हैं ये आपके लिए अच्छे हैं जो है ना, और उसके अलावा जो आपका वाइट मीट में आ जाता है, आपका चिकन है, फिश है, ये आपके लिए, ये जो रूटीन डाइट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइडेंस में मैंने आपको भी बता दिया है सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें आपके 30 मिनट ब्रिस्क वॉक है जो कि डेली आपके होने चाहिए, अपना वजन कम करें
1: जी,
0: स्मोकिंग से अवॉइड करें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करें, और देन लास्ट इज द मेडिकेशन जो आपके डॉक्टर आपकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू आपके लेवल्स आपके एडवाइस करेंगे।
1: डॉक्टर साहब अब चूंकि वक्त ना बड़ा तब्दील हो रहा है और अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं, जो मौसमियाती तब्दीलियां होती हैं जिसमें एक स्मोक का बहुत बड़ा फैक्टर है, हम अक्सर सुनते हैं कि जो स्मोक है वो इंटरवेंशनल जो कार्डियोलॉजी है उसके मसाइल को वो पैदा करती है, उसके रिस्क फैक्टर उसका बढ़ जाता है, जरा इस पर रोशनी थोड़ी सी डालिएगा प्लीज़।
0: بیسیکلی جو آپ کی آٹومیٹکلی یہ تمام جو اسموک ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو کہتی ہے ریلیٹڈ جو پولوشن ہے بیسیکلی جو آپ اسموک سے ریلیٹڈ آ رہی ہے بیسیکلی جو آپ کی ٹریفک ہے اس کی وجہ سے یا ڈفرینٹ آپ کی جو فیولز ہیں برنز ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی پھر آپ کی یہ سارے جو ہے نا آپ کی جو ایک تو انہیل کر رہے ہیں آپ کے لیے لنگس کے لیے سیف نہیں ہے وہ لنگس سے ریلیٹڈ آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں پھر ڈیفینیٹلی آپ کی ان کی وجہ سے جو آپ کا جو مدافعاتی سسٹم بھی ہے وہ بھی آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے چیزوں کی وجہ سے تو انڈائریکٹلی پھر آپ کی یہ باقی رسک فیکٹرز سے مل کے آپ کو جو بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول ہے یا آپ کی ڈائبٹیز ہے اس کا رسک بڑھاتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کی ہارٹ ڈیزیز کو جو ہے نا وہ بڑھا رہا ہوتا ہے
1: اور ایک اور بڑی کامن چیز ہے آج کل ہم ہر دوسرا چوتھا بندہ ایسا ہے کہ جو انگزائٹی کی بات کرتا ہے جو ڈپریشن کی بات کرتا ہے کہ جی مجھے انگزائٹی ہے ہیلتھ انگزائٹی ہے اور دیگر معاملات ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے کیا یہ انٹر کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں دل کی بیماری کے ساتھ
0: جی بالکل ڈیفینیٹلی آپ کا جو رول ہے اس میں ہم پرسنالٹی کا جو ہے جو سوشل لائف کا ہے ایون ہم پیشنٹس جو کہ ہارٹ ڈیزیز کا جو جن کو شکار ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم یہ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے جو اس اسپیکٹ پہ ہے کہ سوشلی ایکٹیو ہونا چاہیے جو ہے نا جو سوشلی آپ کی جو ہے نا الون ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ ان میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے وہ پھر آٹومیٹکلی ان میں ویٹ گین یا موٹاپا کی بھی جو ہے نا وہ ٹینڈنسی بڑھتی ہے جو آٹومیٹکلی آپ کا باقی رسک فیکٹر کے ساتھ یہ ہے آپ سوشل جو رسک فیکٹر ہے جو کسی قسم کا اسٹریس جو ہے ایک رول پلے کر سکتا ہے ایونٹ کو ٹریگر کرنے میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے انڈر لائن ڈیزیز چل رہی تھی یہ کوئی اسٹریس ملا جس کی وجہ سے اس کو ایونٹ ہو گیا کارڈیک ایونٹ ہو گیا تو یہ مین رول پلے کر سکتا ہے باقی رسک فیکٹر کے ساتھ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹائپ اے پرسنالٹی ہوتی ہے یا جو اس طرح سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں ڈپریشن یا انگزائٹی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایٹ رسک ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے لحاظ سے
1: یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹلی اس سے اس کا تعلق ہے
0: جی بالکل بالکل ایسے انڈائریکٹلی
1: ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب گفتگو کو اب اپنی اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت ہمارے اس پروگرام کو سائلہ فارما کے تعاون سے احتیاطی تدابیر آن دا ہول جو ہمارے ہارٹ کے پیشنٹس ہیں یا وہ کہ جن کو رسک ہو سکتا ہے ہارٹ کے حوالے سے ہارٹ کی بیماریوں کے حوالے سے اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک فل فلیج سے لوگوں کو ایک گائڈ لائن دے دیں
0: جی بالکل اور اس کے لحاظ سے میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا تین چار چیزوں میں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ایک تو سب سے پہلے نو یور نمبرز اس میں کیا ہے بلڈ پریشر ڈائبٹیز کولیسٹرول اور یہ اپنی ویسٹ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان چیک کر سکتا ہے ان کا اپنے ٹارگٹ جو آپ کو آپ نیٹ پہ بھی بی ایم آئی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں آپ کا کتنا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کو آپ اپنی لمٹس میں رکھیں جو ہے نا اگر نہیں ہے تو آپ نے پریکاشن میئر کرنی ہے اگر ہے تو آپ نے اس کو ٹارگٹ میں مینٹین کرنا ہے
1: ٹھیک
0: ہے فزیکل ایکٹیویٹی ہیز اے میجر رول
1: اوکے
0: 30 منٹ بسک واک آپ سے کہتے ہیں 150 منٹس ہے 5 ڈیز یا 30 منٹس 7 ڈیز یا 40 منٹس 5 ڈیز اے ویک جو کہ مسٹ ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بسک واک منیمم ریکمینڈیڈ ہے اس کے بعد آپ اپنی ایروبک انیروبک علیحدہ کر سکتے ہیں لیکن یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ریڈیوس یور ویٹ ریڈیوس یور ویسٹ اسموکنگ سے اوائڈنس ہے آپ کا ہیلدی فوڈ سے مراد وہی ہے آپ کا فروٹس ویجیٹیبلس اور آپ کے نٹس ہیں لیگیومز ہیں پلسز ہیں ان کا استعمال اپنی ڈائٹ میں زیادہ کریں ریڈ میٹ کا استعمال کم کریں جو نا ہیلدی میٹ جو استعمال پروٹین کا استعمال ضرور کریں اور ٹرانس سیچوریٹڈ اور جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس سے اوائڈنس آپ نے کرنی ہے اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی جو ہے جو میں نے بتائی ہیں کہ کب کس پیشنٹ کو کب سکریننگ کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور وزٹ کریں اور جو 2026 کا جو بیسیکلی میسج ہے ڈونٹ مس ا بیٹ
1: یس
0: اٹ مینس دیٹ اس کے ہم دو میننگ کر سکتے ہیں ایک ایوری بیٹ از امپورٹنٹ فار اس اور دوسری ڈونٹ مس ا بیٹ کہ آپ پہ کوئی بھی ایسا وارننگ سائن ہے کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز ملتی ہے ڈونٹ اگنور دیٹ
1: اوکے
0: آلویز آلویز گو ٹو یور ڈاکٹر اینڈ ہی ول ڈیسائڈ کہ آپ کو فردر دوسری ڈونٹ مس ا بیٹ کہ آپ پہ کوئی بھی ایسا وارننگ سائن ہے کوئی بھی آپ کو اس طرح کی چیز ملتی ہے ڈونٹ اگنور دیٹ
1: اوکے
0: آلویز آلویز گو ٹو یور ڈاکٹر اینڈ ہی ول ڈیسائڈ کہ آپ کو فردر کیا کرنا ہے
1: ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کی اس ایجوکیشنل اس گفتگو کا سو سامعین اکرام, آپ یہ خصوصی پروگرام ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے سن رہے تھے. سالہ فارما کے تعاون سے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد وقاص جاوید صاحب, جو کہ کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں. آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ہماری یہ امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اس سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی. مجھے اپنے میزبان یحییٰ خلیق الزمان کو ریڈیو پاکستان لاہور سے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum, FM 101. FM 101 Radio Pakistan Lahore se janab, mujhe kehte hain aapki RJ, aapki host, aapki dost Shiba Malik aapke saath. Aur badi der kar di mere meherba, maine hi aate aate. कहते अच्छे लोग वही होते हैं जो अपनी गलती खुद ही मान जाएं, ठीक है. लेकिन जब स्पॉन्सर प्रोग्राम होते हैं तो फिर हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हम मान जाते हैं कि आप लोगों ने वेट किया है. आई जस्ट होप एंड बिलीव आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है, मज़े में हैं, आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छी गुजर रही है और यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद ऑल द सर्कमस्टेंसेज ऑफ योर लाइफ. और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं. अच्छे की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और शो को स्टार्ट करेंगे. आधे घंटे का शो पहले ही निकल चुका है. आज है 22 सितंबर 2026 और दिन है ट्यूसडे का. 7 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है. लाहौर ऑन है, लाहौर ऑन ही है, पर आधा घंटा ऑफ हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट हियर. आज के शो में बड़ा ही मजा आने वाला है बिकॉज वी गॉट, आप सब लोगों को पता है कि टर्नशिप प्रोग्राम जो है वो चल रहा था FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से. और हमारे साथ टर्नीज हैं, हमारे साथ वो हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं और अब वो कम्प्लीटली RJ बन चुके हैं. कंबाइंड शोज करेंगे और वेरी सून यू आर गोइंग टू लिसन दैम. आप उनको सोलो शोज में सुनेंगे और टाइम टू टाइम आई गेस सो आप कभी मेरे साथ कुछ और RJs के साथ आप उनको सुनते रहेंगे. तो आज एक वो भी ट्विस्ट है, वो भी सरप्राइज है. तो मेरे साथ, मैं अकेली आज नहीं आई हूं, मैं लेट आई हूं, पर मैं ज्यादा लोगों के साथ आई हूं. यू नो आई गॉट सरप्राइज व्हेन आई एम लेट. 5:40 पे कमर्शियल है, सो आप लोगों ने याद करवा देना है कमर्शियल है. और फिर उसके बाद 45 पे भी कमर्शियल है, 50 पे भी कमर्शियल है. लाइक सीरियसली, ओके. तो इफ यू कैन आस्क मी, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ. तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं दुश्मनों की नज़र लग गई है या मेरी अपनी ही मुझे नज़र लग गई है. आई डोंट नो, समथिंग इज़ गोइंग ऑन. और ये वाली चीज़ बोल के ना मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ अच्छा यार शायद मुझे नज़र लग गई है, या मैं अपनी केयरलेसनेस जो है उसको छुपा रही हूँ. बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हम लोग बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन एक्सक्यूज़ के साथ छुपा रहे होते हैं. कभी अपनी गलतियाँ, कभी किसी दूसरे की गलतियाँ, कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो बस उनके साथ ज़िंदगी की हम अपनी जो है उन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और इसी का नाम ज़िंदगी है, यू नो. So it's like salt and pepper. So I was talking about आज के शो में मेरे साथ अटर्नीज भी हैं. So माइक हमारा ऑन है. So hello, assalam alaikum girls. मेरे साथ हैं लाइबा, लाइबा स्क्वेयर, टू लाइबास हैं और एक है ईमान. Assalam alaikum girls.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: क्या हाल चाल है? थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे. हाय रब्बा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ऐसे तो आवाज नहीं आएगी. हाँ,
1: लाइबा की आवाज सुन के ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना? लाइबा हमारी बहुत
0: नहीं, तो वे ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आई एम जस्ट ट्राइंग के ना तुम लोग जो है ना तुम्हारी आवाज निकले, ठीक है.
2: RJ शिबा की एनर्जी को मैच करें लाइबा.
0: सो लाइबा टॉकिंग टू लाइबा. Iman, so how are you? कैसा रहा एक्सपीरियंस?
1: पूरा इंटर्नशिप का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो बहुत ही अमेजिंग था. स्पेशली इंटर्नशिप की जो सेरेमनी और जो हमारे से हमें जो सर्टिफिकेट्स मिले और उसके अलावा जो हमें एक स्पेशल किस्म का विजिट मिला वो बहुत अमेजिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा. बहुत
0: Exactly. उसी की वजह से तो यहाँ बैठे हो.
1: बिल्कुल.
0: Alright, okay, so तीनों का same experience है, same pinch यानी?
1: Yes, same level का amazing किस्म का हमारे का.
3: नहीं नहीं, मेरा भी बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस है. और मेरी मामा अक्सर मुझे कहा करती थी कि जब तुम यहाँ से जाती हो तो इतनी चार्ज नहीं होती, जब तुम वहाँ से वापस आती हो इंटर्नशिप मतलब अटेंड करके लेक्चर, तब तो तुम बहुत एक्टिव हुई होती हो. तो मैं कहती हूँ कि वहाँ एनर्जी ऐसी है कि जब हम वापस आते हैं ना एनर्जाइज हो जाते हैं.
0: या दैट्स ट्रू, ये है एक, अगर आप यू रियली वांट टू डू ना तो वो एक अलग ही वाइब है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप यू आर ब्लैंक एंड यू आर सिटिंग फ्रंट ऑफ द माइक, से एकदम आपको लगता है कि यस यू आर इन, तो ये वो वाला फील होता है.
1: बिल्कुल.
0: ओके, सो ग्रेट. आज का शो 7 बजे तक लाहौर ऑन है, सो हम लोग करेंगे, ठीक है. और मैं मेरी तबीयत जैसे मैंने आते ही इसीलिए बता दिया है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, वो होते हैं सिंगर्स आए वो कहेंगे मेरा गला खराब है, सो मैंने पहले बता दिया मेरी तबीयत खराब है। सी यू गोना डू दैट गर्ल्स, आज आप लोग जो है आप अपना जलवा दिखाइए और अपना करिश्मा बखेरिए, ठीक है। सो माइक ऑल योर्स, तो अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस, आई होप सो दैट यू वी बोथ गोना लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑफ कोर्स, हम एक दूसरे से सीखेंगे भी और मज़ा भी आएगा शो में। ड्राइव टाइम शो जो है वो कैसा होने वाला है, अगर तो ड्राइव में आना है तो
1: लेट्स स्टार्ट योर ड्राइव।
0: मैं इस लाइबा को देख रही हूँ ना कि ये लाइबा जो है थोड़ी सी ना
1: नाजुक है।
0: हाँ जी, लाइबा बोलेगी अब।
3: Yes, आप बोलेंगे।
4: मैं यही कहूँगी कि इंटर्नशिप के हवाले से तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जो हमारा टूर हुआ था सरप्राइजिंग, वो बहुत ही मेमोरेबल था और बहुत ही ज़्यादा उसको हमने एंजॉय किया और उसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह के अगर एक्सपीरियंस हमें और मिले तो वो ज्यादा बहुत अच्छी
0: बात। ये लाइव शो है और प्लीज माइक वो वाले पे आ जाओ, ये माइक नहीं है हमारा, वो माइक है हमारा। सो आप अपनी चेयर उधर कर लें, वो माइक अपने सामने कर लें प्लीज।

0: पहले ये है लाइव शो के स्पाइसेस, ठीक है. सो माइक कभी एक जिस पे हम लाइव होते हैं वो नहीं चल रहा होता, ठीक है, और पता चलता दूसरा चल रहा है. और
1: इसीलिए मेरी
0: तैयारी, शुक्र है.
2: जैसे आपने वो तबीयत पे डाल दिया, उसने माइक पे डाल दिया.
0: नाउ यू आर लर्निंग. ओके, सो लाइवा बता रही थी जी
1: इंटर्नशिप के हवाले से.
0: हाँ.
1: तो वो बहुत अच्छी रही थी, और जो उसके अंदर एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था, और जो हमें उन्होंने लाइव सेशंस दिए थे, जो हमें चीज़ें सिखाई थी, वो बहुत ही अमेजिंग थी, और बहुत ही उनको आगे जाके हम बहुत ही यूज़फुल वो होंगी हमारे लिए. तो अगर हम उनको अप्लाई करें, और हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि हम आगे सेलेक्ट हो गए, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर आर्टिस्ट हैं और बनेंगे इंशाल्लाह.
0: इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट. यू गर्ल्स गुड लक, और यू गुड हैव अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह.
3: इंशाल्लाह.
0: ओके.
2: Yes,
0: यही देखना था मुझे, तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना था, बोलना था.
2: हम लाइव हैं.
0: ऑफ कोर्स हम लाइव हैं, व्हाई नॉट. चले शुरू करते हैं इसी तरह की चिट चैट. ये मजा जो है अब 7 बजे तक जारी रहेगा. आरजे शिबा मलिक एंड हम दो ईमान एंड
1: दो ईमान,
0: दो लाइबा और एक ईमान के साथ
1: लाइबा स्क्वायर.
0: लाइबा स्क्वायर एक छोटी एक, दोनों की हाइट तो सेम है, कुछ ज्यादा ही दुबली है सामने वाली. तो सो गोना हैव फन, हियर वी आर गोइंग टू बिगिन अ शो. और अब जो है शो बकायदा हम स्टार्ट करेंगे, फिर मैसेजेस एंड ऑल दैट. So here we go, stick around, stay tuned and keep listening.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू एफएम 101 लाहौर ऑन है। मैं हूं आपकी आज की होस्ट आरजे ईमान और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे शिवा मलिक
1: और मैं हूं लाइबा
2: आसिफ। ऑलराइट,
3: और मैं हूं लाइबा शाहजहान।
2: ऑलराइट, ओके, तो थैंक यू सो वेरी मच गर्ल्स मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आई एम फ्लाइंग।
3: ईमान से मेरा सवाल है कि अभी हम थे आरजे शिवा के साथ, अब आरजे शिवा हमारे साथ हो गई हैं।
2: ऑफ कोर्स
0: हमने
1: हमारे साथ,
2: इन्होंने कब्जा कर लिया और मैं इनको पूरी पूरी इजाजत दे रही हूँ, कर लो कब्जा। ओके, सो मैंने अभी बोला ना, इसीलिए लड़कियों के साथ जो है इट्स ऑलवेज फन कि हम लोग जो है एक दूसरे से सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, और मुझे इसलिए भी मज़ा आएगा कि चलो ठीक है, आज मेरा शो जो है ना वो थोड़ा सा हाईजैक मैं चाहती हूँ हो जाए। मैं खुद चाहती हूँ।
0: आपके लिसनर्स का क्या हाल होगा? वो
2: चाहते हैं,
1: अगर आपके लिसनर्स चाह रहे हैं कि वो आपको ही सुने फिर
2: वो तो आप लिसनर्स पे डिपेंड करता है, फिर तुम लोगों ने कहना है हमें भी सुनो,
0: मजबूरी है अब आपकी।
2: हाँ ना, फिर कहना है सुनो हमें। अच्छा,
0: हम भी एक टाइम पे शिवा मलिक बनेंगे।
2: ओके, सो आज 22nd of September 22 तो 22 है, तो आज के दिन के हवाले से देख लेते हैं कि कुछ स्पेशल है भी है या बस ऐवें ही आज का दिन है। कभी कभी होता ना कुछ दिन
1: कुछ भी नहीं होता उन दिनों में।
2: तो देखते हैं, इज देयर एनीथिंग स्पेशल? आज कुछ स्पेशल है,
0: मेरी दोस्त ज़ारा की बर्थडे है।
2: ये तो इंटरनेशनल डे है, मैं तो नॉर्मल नेशनल डे की बात कर रही
0: थी। ज़ारा अगर तुम सुन रही हो हमारा शो, हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे।
2: अच्छा, तो सुन,
1: मुझे यकीन है वो नहीं सुन रही,
2: सुन नहीं रही, ये तो ज्यादती है यार, ये गलत है।
0: नहीं, वो कहीं बर्थडे मनाने ना चले गई हो ना, मैंने कहा चलो
2: एक उसको जबरदस्ती बिठाना था कि मैं शो कर रही हूँ सुनो।
0: ज़ारा तुम्हारे लिए मैं शो में बोल रही हूँ, अब तुमने हमारा शो सुनना है।
2: और अगर नहीं वो सुन रही है तुम्हारी विशेस, उसने नहीं है सुनी, तो लड़ाई करो उसके साथ, बस बात खत्म।
1: बस आज की बर्थडे की विश खत्म।
2: एनीवेज ज़ारा, इफ यू आर रियली लिसनिंग, सो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, खुश रहो, सलामत रहो और जीती रहो, और इसी तरह इसके शोज मिस करती रहना, ठीक है? वो तुम्हें विश करेगी, तुम ना सुनना, अगले साल भी ऐसे ही करना। एनीवेज, सो लाइबा, व्हाई यू आर सो क्वाइट? आपने भी शाहजहान, लाइबा शाहजहान, आपने भी बोलना है।
3: जी बिल्कुल, वैसे मुझे बार बार लोगों को रिमाइंडर देना पड़ता है कि तुमने भी बोलना है, यही मौजूद हो।
2: हाँ, पर ये नहीं करना हमने।
3: जी अब नहीं होगा।
2: एक आरजे को लोगों को कहना पड़े कि प्लीज आई वांट टू स्पीक।
3: बिल्कुल,
2: यू नो, सो व्हेन माइक इज फ्रंट ऑफ यू, बस फिर तो
1: बोलते रहो।
0: इंटर्नशिप पे थे तो हमारे सर हमें कहते थे कि जब वो बोलने आते थे सारे इस तरह इशारे करते थे कि बस टाइम बहुत है बच्चों को, बाकी कुछ सीखा, कहते हम क्या करें, हम रेडियो के बंदे हैं, हमें चुप कराना बहुत मुश्किल है।
2: सो ये तुम यहाँ पे आरजे हो और एफएम की आरजे हो, सो यू शुड बी लाइक वेरी फ्रीक्वेंट, ऐसा कि मजा आए तुम्हें कहना ना पड़े। अब दोबारा मैंने नहीं कहना 7 बजे तक, ठीक है?
3: ओके मैम,
2: दैट कि तुमने बोलना है, अब मुझे तुम्हें ये कहना पड़ेगा लाइबा प्लीज बोल दो,
3: अब
2: मौका दो।
3: अब ऐसा ही होगा। हाँ, अब कोई मुझसे माइक छीन के दिखाए।
2: ये हुई ना बात, इसको कहते हैं
0: माइक शेयर करना था लाइबा।
3: नहीं नहीं, अब तो मैंने कब्जा कर लिया,
2: कब्जा हो गया। अच्छा जी, 5:53 हो गए हैं, कमर्शियल 2 हमने कर लिए, 45 वाला 50 वाला जो है वो अब मैं कमर्शियल प्ले करूं। कमर्शियल जिंदगी में, ब्रेक जिंदगी में बहुत जरूरी है, व्हाट यू थिंक?
0: और जब उस ब्रेक के पैसे मिलते
2: हो मैं प्ले कर लूं, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे।
4: वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस।

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: So Lahoran here with Arjun Shiba Malik and Square Iman and Square Laiba and One Iman we have in Lahore on hai aur 5:55 ho chuke hain, sirf 5 minute baki hain 6 bajne mein, time is running and flying. So hum baat kar rahe the ki zindagi mein break zaruri
1: hai, bahut zaruri hai,
0: hai na?
1: Bilkul.
0: Kyun
2: Iman, aap kya keh rahi thi pehle break se?
1: क्या मैंने कहा था,
2: कौन सा ब्रेक ज्यादा जरूरी होता है?
1: ब्रेक बहुत जरूरी है जिंदगी में, जिस ब्रेक के पैसे मिले वो तो बहुत ही जरूरी है
3: भाई, उससे आपको कोई रिटर्न भी तो आए ना
1: लेकिन ब्रेक वाकई लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं भी अपने आप को भूल नहीं जाना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर. सेल्फ केयर, चले नार्सिस्ट ना हो लेकिन सेल्फ ऑब्सेस थोड़ा सा इंसान को होना चाहिए
3: और बंदा ऐसा ना अपनी केयर भी करता है इससे अपनी केयर होती है, अपनी देखभाल बंदा कर लेता है और ब्रेक्स बहुत जरूरी होती हैं.
2: हाँ, आप कह रही थी ना जिस ब्रेक से कुछ मिले, मुझे लगता है हर तरह के ब्रेक से हमें कुछ ना कुछ मिलता है.
0: जैसे
2: कि जब हम अपने आप के लिए ब्रेक लेते हैं तो हमें सुकून मिलता है, पीसफुल माइंड मिलता है हमें, टाइम मिलता है अपने लिए. और क्या मिलता है?
3: क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे लिए अपने खुद के लिए टाइम ही नहीं होता, तो अपने खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है.
1: स्पेशली हम समझते हैं जो हाउस होल्ड वुमेन्स है ना, वो बहुत ही घर में ही रह रही है ना, उनके लिए अपने लिए टाइम निकालना सबसे
3: बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको ज्यादा मिलता भी नहीं है टाइम खुद के लिए.
0: जो खवातीन ना उसके बाद अपना छोड़ ही दें, क्या है शादी हो गई बस सब,
1: हमारी माए बिल्कुल कि अब तो शादी हो गई अब ये करके क्या फायदा, अभी ये करने से क्या
0: फायदा, मतलब क्या ये क्या
3: जिंदगी बड़ी है पूरी एंजॉय करो उसे.
0: बात तो वही है ना कि हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी केयर करेंगे तो किसी दूसरे को प्यार कर सकेंगे ना यार.
1: बिल्कुल,
0: ये लॉजिक, ये टर्म किसी को समझ नहीं आती और मुझे सख्त इख्तलाफ है इस बात से
1: और आज हम खुला एहतजाज करेंगे इस बात पे.
0: बिल्कुल.
2: अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि नहीं टाइम नहीं निकलता, तो आप लोगों को क्या लगता है कि टाइम खुद ही से निकल आता है या निकालना पड़ता है, यानी एफर्ट करके हमें ब्रेक लेना पड़ता है?
3: जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे टाइम नहीं निकलेगा.
0: यस,
3: तो टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है.
0: बहुत जरूरी हो जाता है और टाइम होता है यार,
3: होता है लेकिन हम
1: जान के अपने लिए जरूरी किया होता है.
3: आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मुझे ना बचपन से मैंने एक टीचर है कि टाइम नहीं निकलेगा.
0: Yes.
3: तो टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है.
0: जरूरी हो जाता है और टाइम होता है यार,
3: होता है लेकिन हम
1: जान के अपने लिए जरूरी किया होता है.
3: आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मुझे ना

0: काम है दूसरों की खिदमत करना. अगर हम वही टाइम अपने पे लगाएंगे तो वो तो हम बड़ी सेल्फिश हो गई हैं, खुद गर्ज हो गई हैं.
1: और एज लिसनर्स, आप लोगों ने ये नहीं समझना इस वुमेन्स डे, ओके, खवातीन गाल के दिन नहीं मना रहे हम, सिर्फ ऐसे बात कर रहे हैं,
0: सांस पे गाल रहे हैं,
2: खवातीन इकट्ठी हुई हैं, खवातीन इकट्ठी हो गई,
1: खवातीन का आलमी दिन मना रहे हम.
0: मर्दों को भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए,
2: उनके लिए भी बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर इंसान को अपने
0: लेट डाउन में फील कर लेना मर्द कहीं.
1: अच्छा एक चीज और भी है ना, जब हम लोगों की जिंदगी में बड़े कोई ब्रेकडाउन्स होते हैं, बड़ा हमारा दिल टूटता है, हमारी लाइफ बड़ी शैटर्ड हो जाती है ना, फिर हम अपने लिए बड़ा वक्त निकालते हैं, फिर हम दोस्तों के पास भी जाते हैं, फिर हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपने लिए, फिर तो अपने लिए ही टाइम होता है. तो टाइम एक्चुअली हमारा अपना होता है, ये हमारा एहसान है कि हम किसी दूसरे को दे रहे होते हैं.
2: ऐसा ही है,
0: अमेजिंग वर्ड्स.
1: और ये वाली चीज होनी चाहिए कि इतना ग्रेटिट्यूड अपने ऊपर होना चाहिए, शुक्र मनाओ तुम्हें मैं अपना वक्त दे रही हूं,
2: और इतना फखर होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं ये कर रही हूं.
1: तो और अगर वो नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि You know, खलास, जिंदगी का कोई मजा नहीं है ब्रेक, इसी बात पे ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक.

0: वेलकम वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आपको क्या लगा कि आज का टॉपिक जो है वो ब्रेक रिलेटेड है, तो अब हम ब्रेक पे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
1: और ये टॉपिक नहीं है,
2: ये तो बस बात से बात निकली थी।
1: So, लाहौर ऑन है विद राजेश शिवम मलिक एंड ईमान ऑन लाइव स्क्वायर्स। और 6:04 हो चुके हैं। सो अगर टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक अब जो है तुम लोगों ने बताना है कि टॉपिक क्या है।
3: टॉपिक
1: अच्छा, एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर देती है।
3: हमें एक और ब्रेक चाहिए।
1: अच्छा ओके ठीक है, इनको ब्रेक देते हैं और आप लोगों के मैसेजेस मीनवाइल जो है वो शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ है रियाज भट्टी फ्रॉम चादरा, वालेकुम अस्सलाम जी। और अस्सलाम वालेकुम मुअज्ज़ज़ मेज़बान मेज़बाना। ओके मिजाजी ग्रामी कैसी हैं? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगी। खुश आमदीद बज़्म सुखन में ताशा ताशा, वल्लाह अल्लाह खरबत है यानी। अदाब तस्लीमात, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत जो है वो नेक मतलूब चाहती हूँ ताशा, ठीक है। एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू इन माई शो, ठीक है। और आई जस्ट फील इट दैट वो कहते हैं ना, ऐसे लगता है आपको मैं पहले से जानती हूँ। कुछ लोगों के साथ मिल के ऐसे लगता है ना कि पहले से जानते हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से जानती हूँ। रियाज थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द इमोजीज। हमारे साथ हैं तारिक ऑल द वे फ्रॉम कुवैत। तमाम खूबसूरत समातों को वालेकुम अस्सलाम। आपको भी पाकिस्तान से हमारी तरफ से वेलकम खुश आमदीद। इजाज है शिवा जी कैसी हैं आप? और अल्लाह एक ही शो है हमारे साथ, हमारे नसीब में वो भी पूरा नहीं। ओके क्योंकि अभी वो जो आधे घंटे का आया था ना ब्रेक,
3: जी जी, हमने अपने बारे में फील भी नहीं किया, डोंट वरी।
1: नहीं नहीं, ये तुम लोगों के बारे में था भी नहीं। ये प्रोग्राम के स्टार्ट में जब मैंने पोस्ट लगाई थी तब से कमेंट है, यू डोंट हैव टू फील दैट। ओके सो नादर ब्रो विनिश तारिक इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई डोंट नो कहाँ हैं ये सारे लोग, और तुम लोग ऐसे जा रहे हो, एक दिन मैंने भी चले ही जाना है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ है बरकत बलूचिस्तान से, भली करी आया जी, बहुत शुक्रिया। गुल यासीन है, आपको भी खुश आमदी, थैंक यू सो वेरी मच। फरहान वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। और मिजाज बिल्कुल ठीक है, मुल्तान से हमारे साथ हैं। हाउ यू फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग ग्रेट, हाउ यू मैम? ये दो नंबरी हो रही है कि एक शो और वो भी अधूरा, क्या करें। कमर्शियल ब्रेक जिंदगी में जरूरी है फरहान, इट्स ओके टेक इट इजी। माय सैल्यूट टू ऑल लिसनर्स। मैंने सुना है कि आज आप 7:30 तक शो कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपने गलत सुना है। कौन दुश्मन नफा उड़ा रहे हैं मेरे बारे में? देर लगी आने में तुमको, शुक्र है आए तो सही। ये बेचारे ऐसे ही खप रहे हैं, किसी ने अमल को करना नहीं। और बताओ फिर, आई डोंट नो क्या बात कर रहे हो। स्पॉन्सर प्रोग्राम की आवाज़ सुनकर लगा कि आज फिर छुट्टी है, बिल्कुल भी नहीं। पोस्ट लग जाए तो छुट्टी नहीं होती। 4471 वाला जो हमारा पेज है ना, आज काम नहीं कर रहा है। सो जो लोग उनके दुश्मन है ना, वो दिल भर के जश्न मनाए। अच्छा जी, हमारे साथ हैं रेहाना भक्कड़ से, आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। शिबा आपके साथ वालों को भी वेलकम करते हैं, आप लोगों को वेलकम किया जा रहा है।
4: थैंक यू सो मच
1: जो हैं। इमरान अकबर है हमारे साथ कराची से, बहुत शुक्रिया। नए लोगों को फरहान ने भी कहा है न्यू आर्जेस को वेलकम।
3: थैंक यू
1: के लिए भी इनकी आवाज नहीं निकल रही।
3: Thank you so much.
1: Yes, that's the way actually. अच्छा जी, फिर उसके बाद फरहान कह रहे हैं अच्छा जी हो गया था, वेलकम भी हमारा हो गया है। ऑलराइट, सो टॉपिक तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया?
4: हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये टॉपिक वो डिसाइड किया है। जेन जी
1: ठीक है,
3: क्योंकि जेन जी में तो औरतें मर्द सब ही है ना।
4: जेन जी तो एक वाइब है।
1: व्हाट इज द टॉपिक?
3: 1980s का जो ट्रेंड चला है,
1: आप देखा है, तरस गए अब ये जेन जी आके तस्वीरें बना रहे हैं।
3: मैं कहती हूँ जितना इन्होंने वो किया था ना, एस्थेटिक और ये कूल कलर, सब रंग बिरंगे कपड़ों में आ गए,
4: रंग बिरंगे।
1: हाँ तो फिर कैसा लग रहा है जेन जी?
3: नहीं, वी आर एंजॉयिंग,
4: हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आपको थोड़ा सा गिफ्ट ऑफ फीग होगा आई थिंक। आपने वो जेन जी का ट्राई किया 80s का?
1: हाँ बहुत, मैं तब भी प्यारी थी, मैं अब भी प्यारी।
4: ओहो, इसमें तो कोई शक नहीं।
3: True that.
1: So, मैं ये सोचती हूँ कि जो चीजें जिस इरा में या जिस जगह पे हम नहीं होते, अल्टीमेटली हम वहाँ ही जाना चाहते हैं।
4: ऐसा ही
1: है, उसी में होती है।
3: ऐसा ही है। वो एक मैंने किसी की वो पोस्ट भी देखी थी, वो कहता मैं नहीं 1980s का बनाऊंगा ट्रेंड, क्योंकि कुछ 1980s के के लोगों ने मुझे बड़ा तंग करके रखा है
4: ऐसा ही है
1: और वो शायद अपने घर की बात ही
3: बस उसने हाईलाइट नहीं किया कि जूते ना पड़ जाए
1: Okay, जी, so we are talking about Gen Z's. We are talking about the new generation trend. Or Gen Z stands for
4: Generation Z.
1: मैं ये सोच
4: आप आई थिंक होंगी मिलेनियल
1: तो अल्फा वालों का क्या होगा
4: अल्फा तो ज्यादा वो एनर्जेटिक लोग है ना
1: उनकी तो एनर्जी है
4: बहुत ज्यादा है लेकिन अभी वो निकलेगी ना ऐसा ऐसा निकलेगी
1: मैं वही सोच रही थी कि जेंसिस की एनर्जी है ओके मुझे लगा मुझे मैच करनी पड़ेगी तुम लोग के साथ एनीवेज लाहौर ऑन विद आरजे शिवा मलिक सो मेरा ख्याल है कि हम लोग गाना नहीं प्ले किया यार है ना
3: जी
4: गाना करेंगे कोई अच्छा सा
3: एड्स चल रही हैं हमारी न्यूज ब्रेक्स हो गई
1: और हम बात भी तो करेंगे लोग आपको सुनेंगे नहीं तो फिर लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन और आपकी वो जो मोहब्बतें हैं वो कैसे बहाल होंगी इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम गाने थोड़े रख के और बात जरा थोड़ी सी ज्यादा करें
3: जी जी
0: वो कह रही है ना जैसे हमने शुरू में कहा था ना कि आरजे शिवा बनना है तो आरजे शिवा कैसे बनेंगे इंटरेक्ट करेंगे तो बनेंगे
1: एग्जैक्टली और ऐसे ही होना चाहिए कि people wants to listen new लोग आपको सुनने हाँ, आगे
4: ही आधा घंटा लेट हो गए और उसमें भी ब्रेक्स लगा के गाने का गा के
3: है इस बात पे कि आधा घंटा लेट हो गए
1: हाँ ना मैं खुद भी मुझे भी ऐसे लगता है कि यार टाइम मतलब दो घंटे भी पूरे ना मुझे खुद को भी ऐसे फील हो
4: पता रहा भी नहीं चलता दो घंटे गुजर जाते हैं
3: बिल्कुल जब हमने अपना पहले भी एक आरजे के साथ शो किया था और हम ये सोच रहे थे कि दो घंटे कैसे गुजरेंगे और जब हम आगे बैठे हमने कहा क्या बात करनी है दो घंटे का क्या पता लगना है दो घंटे और हम कहते दो घंटे का शो होगा
1: तब पहले लग रहा होगा दो घंटे फिर तुमने
4: कहा हमने टाइम देखा हमने कहा इतनी टाइम गुजर भी गया है
3: वो इतनी जल्दी मचाई कि वो कॉलर्स बात कर रही हूँ नहीं नेक्स्ट कॉलर लेना हमने कहा जब टाइम देखा 5 मिनट रह गए हम कह रहे वाह जी वाह दो घंटे गए
4: बस यही चार्म
1: है ऑलराइट सो हियर वी गोना गो विद द सॉन्ग गर्ल्स

0: तो जी हाँ, खुश आमदीद आपको लाहौर ऑन है में। अब हम सुन रहे थे जेन जी के ट्रेंड्स, उनके ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से चल रहे थे 80s का। आप बताएं, आपने ईमान आपने किया
1: 80s का ट्रेंड? मेरी अम्मी कह रही थी पहले तुम लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और अब वही चीजें खुद कर रहे हो हैं। पर मैंने वाकई मैंने नोट किया वो पहले वो हम जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल आ गया, एस्थेटिक कर लो, कलर्स को हमने बिल्कुल अपने आप को माने थे। लेकिन पुराने लोग जो थे ना 80s का जो पॉप कल्चर बहुत ज्यादा चलता था, जो मेरी मामा बताती हैं, वो नादिया हसन के गाने और नाजिया हसन के गाने और वो सारा कुछ, उसका अपना एक इंजॉयमेंट थी। अब तुम लोग शोर शराबे के पीछे पड़ गए, वो अगर पॉप म्यूजिक भी था वो इतना ठहराव वाला मजे का होता था कि समझ नहीं आता।
2: गाना याद है ना तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, अब वो गाना उसकी ड्रेसिंग चेक करो, द वे शी इज सो मॉडर्न और इतनी अच्छी लग रही है वो जी, स्टाइल विद द ग्रेस ना।
1: Yes,
2: तो अच्छा
1: yes.
2: था उनका। तो तुम लोग तो वाकई तुम लोगों की वैसे ज्यादातर चीजें बोरिंग ही हैं।
1: इतने भी नहीं
0: है। बहुत मजा आता है,
1: अडॉप्ट कर लेते अच्छी चीजों को, फिर वो जिस भी जनरेशन में हो।
0: जैसे भी हमने 80s का ट्रेंड किया है, अडॉप्ट किया है हमने अच्छी चीजें।
2: AI ने मौका दे दिया है, वरना तुम लोगों को तो पता भी नहीं था उसका।
3: जेन जी की अपने आप को कवर करने की कोशिश
2: नाकाम वाली, बहुत अच्छी नहीं थी।
1: लेकिन बहुत प्यारा था ट्रेंड, और वो जिस तरह की वो ड्रेसिंग करवा रहा था वो अमेजिंग थी।
2: अच्छा, मुझे सिर्फ एक ही चीज अजीब लगी कि वो ज्यादा ही रेड और ब्लू था।
1: वो
0: जैसे मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 80s में होते थे ना वो शादी में टेंट, उसको उन्होंने कपड़े बना दिया था।
1: कलर्स के साथ बहुत प्ले करते थे,
2: एंड एक्चुअली द लाइफ इज देयर यू नो, कलर कलरफुल लाइफ। अभी भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या लग रही होती है, हमारा स्टूडियो इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि कलर्स अच्छे हैं।
1: Yes.
2: और अगर सिर्फ ये एक ही कलर होता ग्रे या ब्लैक तो बहुत बोरिंग वाइब्स आनी थी, वो मतलब उस तरह की अट्रैक्टिव नहीं आनी थी।
0: लेकिन वो आजकल चलता ना एस्थेटिक सा हो और वो
1: कूल काम
2: ब्रेक है, सो वी गो
0: दोबारा से
1: जरूरी है।
2: या ओके जी, हैव वी गो गो विद दिस,
4: वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस।

0: वेलकम वेलकम बैक। वैसे मैं सोच रही थी कि हम तीनों ही वेलकम कर दें ताकि एनर्जी जो है ना वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए इस तरफ।
1: चलो 1 2 3 वेलकम बैक।
0: ऑलराइट जी, सो इनका वेलकम अच्छा लगा मुझे। और 6:17 हो गए, गाना प्ले करेंगे फिर उसके बाद लाइव कॉल देंगे। देखा टाइम कैसे भागा।
2: बिल्कुल,
0: लेकिन डोंट फॉरगेट कि आधा घंटा हमारा वैसे भी
2: जाया भी हुआ है। जाया नहीं, चलो।
0: सो हमारा टॉपिक क्या है?
1: हमारा है 80s का ट्रेंड।
2: स्लो हो गई एनर्जेटिक।
1: 80s का ट्रेंड।
0: अच्छा, कोक स्टूडियो नया जो आया उसके गाने अच्छे हैं यार। देखा, सुने?
1: मैंने नहीं सुना।
0: रंगीन गाना बहुत अच्छा है।
2: रंगीन है, दो रंगों से भी।
1: नहीं नहीं, अभी वाला
0: नया, अभी जो नया आया जेन जी। नहीं,
1: इस दफा आगे नहीं पता, क्योंकि हम सारे उसके साथ अपडेटेड थे।
0: यू सी, नहीं अब नहीं नहीं नहीं, आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है? पकड़े गए,
2: फंसे हुए जेन जी हैं।
0: वैसे तो 4 दिन पहले आया है। And that song is really awesome.
1: बस हम थोड़ा सा बिजी होते हैं ना।
0: हाँ, जेन जी की सबसे बड़ी जो मसरूफियात है वो फोन ही है
2: बस।
1: नहीं,
0: अच्छा ओके, चलो ठीक है। ये तो बताया नहीं लड़की,
2: मैं सोच रही थी बताऊं वैसे।
0: तो नहीं बताया,
2: बट मैंने कहा कहीं हमारी सिंगर वही बहाना ना कर लेना कि मेरा गला खराब है।
1: बस आपने बताया था ना मेरी तबीयत नहीं सही रहती, वो सिंगर्स पे ही बता देते हैं मेरा गला खराब है।
2: खराब है
0: ओके, ये वो भला हो गया जिसने आते कहते हैं तबीयत खराब है और गला खराब है। ओके अच्छा जी, सो नया गाना जो आया है स्टूडियो का वो करते हैं प्ले, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू रखेंगे। लाहौर ऑन है विद
1: लाइबा आसिफ,
2: ईमान जहरा,
0: लाइबा शाह जहान। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। और अलोंग विद आर्टिस्ट शिबा मलिक, हियर वी गोना गो विद दिस।

0: जब हम लाइव शो में होते हैं हम कुछ कोई चीज अनाउंस कर देते हैं तो पता चलता है कि हाँ
1: अच्छा ये जो ये पैनल को हैंडल करना मुझे इसकी
0: सीख जाओगे
1: मतलब ये जो एक बीच में बीजीएम लगाना होता है वो
2: क्या
3: रॉकेट
0: तो अभी हम जो है हमने सिस्टम के साथ आई एम जस्ट ट्राइंग के इसको क्या ही हो गया है माफी दे दो भाई
3: उतनी देर चलो हम बात कर लेते हैं
2: उतनी देर आपको एक गाना सुना दे लाइबा
3: गाना
0: हाँ, चलो
2: लाइबा गाना
0: लाइबा
2: सुना दे
0: तुम सुना दो
2: लाइबा आप गला खराब का बहाना ना लगाना सबको पता है कि
0: प्लीज लाइबा प्लीज
2: बस लाइबा के ना जो गानों की वाइब है आपके शो के साथ मैच नहीं होगी
3: हाँ मैंने थोड़े से स्लो से मध्यम से मुझे वो अच्छे लगते हैं
2: उसकी आवाज
0: मध्यम इतने स्लो मेहदी हसन के तो नहीं है
3: नहीं वो ज्यादा पुराने हो जाते हैं
0: फिर
3: अपडेटेड जो होते हैं वो भी मतलब
0: पाकिस्तानी गाना है तो सुना दो वो कैसा भी है फिर अब
3: वो अभी था ना आपकी इज्जत वाला
0: चलो सुनाओ
3: आपकी इज्जत ड्रामा तो चल रहा है जब तू याद आए चैन चुराए जब तू याद आए चैन चुराए तेरी सा

0: बस इतना सा ही।
1: क्या बात है लाइबा, तो सिस्टम नहीं चल रहा रजा, सिस्टम नहीं चल रहा, ये माउस नहीं चल रहा, ये तारे नहीं चल रही। ओके
2: सिस्टम।

0: वापस आ चुके हैं, लाहौर ऑन है, बस पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था। अब
1: थोड़ी देर
2: नहीं, ज्यादा देर,
0: जेंसी हूँ ना।
3: और तुम लोगों से बड़ा अच्छा कवर अप नहीं होता।
4: ये बहुत बड़ा मसला है।
2: और अब ऑफ ही करने आए हैं हम लाहौर को
4: ब्रेक के बाद।
0: जी बिल्कुल, अब हमारा शो बीच में इतना ज्यादा कभी हमसे कभी किसी और वजह से गड़बड़ा रहा था, अब देखते हैं।
2: अब तो खत्म हो गया ना, अब खत्म हो गया,
3: अपनी अपने घरों को जाएं, बस यही रह गया।
0: जी
2: अब बस लाहौर ऑफिशियल के तौर पे ऑफ होने का है।
3: या ऑलराइट जी, सो वी ट्राई, आज का जो दिन था वो ऐसे ही था। पता नहीं मैंने सुबह किसकी शक्ल देखी थी कि मैंने अपना शो पूरा नहीं किया, आधा घंटा पहले किया और बाकी का टाइम ऐसे निकल गया। बट कभी कभी ऐसे दिन होते हैं, और वो कहते ना कि हर काम में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। बट अभी मैं देखूंगी रात मेरे सोने तक की सारी चीज में क्या बेहतरी है। आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आप लोगों ने कभी ये ट्राई किया?
0: ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आपकी बात का जरूर करेंगे।
3: तुम लोग जेंसी ये चीजें कहाँ होती हैं? You know, girls. अच्छा, so it's great sharing mic with you, all of you. अच्छा लगा, और तुम लोगों को कैसा लगा? वो मैं पूछने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
2: लेकिन हम बता देते हैं,
3: नहीं स्पाइसी, मैं नहीं सुनना चाहती।
2: थोड़ी स्पाइसी सी कन्वर्सेशन थी हम सब की।
3: So it was great, और good luck.
0: Thank you.
3: And all girls are going to have a long way to go. Okay. Yes. So I hope soon I'm going to listen you solo show.
2: Inshallah.
3: So aaj ke liye itna hi tha bas.
2: क्या कर सकते हैं।
3: हाँ ना, सच में। तो अब जो है आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे शाम को 5 बजे। इन लोगों में से आप टाइम टू टाइम आई गेस सुनते रहेंगे किसी ना किसी आरजे के साथ, और वन डे सोलो इंशाल्लाह। बट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम देम,
0: यस यस,
2: आपके साथ हमारा भी एक और है।
0: हम जैसे ही अपना वो जोन में आते हैं उधर से ब्रेक, उधर से न्यूज ब्रेक, वो जरा जो है ना रब्त।
3: अब हम बाय बोलेंगे
0: जी। ओके लिसनर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज, दोबारा आएंगे हम
3: तरफ से। अल्लाह हाफिज,
2: दोबारा आएंगे
3: इंशाल्लाह। Alright, so now RJ Shiva Malik is signing off. Do take care of yourself and your loved ones too. और कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई हर्ट ना हो, और आपकी ज़िंदगी के रास्ते किसी को मसलते हुए ना जो हैं वो बने। So take care of yourself. Allah Hafiz and hearts of lads.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you

गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: तरफ से आपका इंतहाई तह दिल से शुक्र गुजार हूँ कि सर आपने इस मंसूबे में जिस तरह से दिलचस्पी ली, ये सर अनप्रेसिडेंटेड थी।
1: 9 मई सानहे में नजर आतिश की गई रेडियो पाकिस्तान की इमारत की दोबारा तामीर की इफ्तिताही तकरीब के मनाजर आप देख रहे थे। इस मौके पर वफाकी

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.

0: ਚੱਲ ਬੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਾਹੌਰ, ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ FM 101। ریڈیو پاکستان FM 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگر ریڈیو پاکستان FM 101 کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں، شب کے اس پہر میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ پروگرام کو کہتے ہیں مہمان ہمارے، مہمان ہمارے میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے معزز مہمان۔ لیکن آج کے پروگرام میں مہمان نہیں ہیں، بہت سے مہمان ہیں۔ ابھی کچھ لمحہ پہلے جب ہم اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تو ہمیں پتہ چلا خالد عباس ڈار صاحب، ریڈیو کا ایک بہت بڑا نام جن کو آپ جانتے ہیں، لیگیسی یا لیونگ لیجنڈ جن کو کہا جاتا ہے، خالد عباس ڈار صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور ہمارے جو مہمان جتنے بھی یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے بات کی کہ جی اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، جب اس کی رحمت بہت زیادہ جوش میں آتی ہے تو وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو آج جناب ہمارے جو شو میں ہمارے مہمان جو ہے نا رحمت سے بھرے مہمان ہیں، اور رحمت ہی رحمت ہے ہمارے اس پورے اسٹوڈیو کے اندر، بلکہ ریڈیو پاکستان کے اندر۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان بڑا فرٹائل ملک ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جہاں پاکستان کو ہر حوالے سے پاکستان نے بڑا خوبصورت بنایا، ہر نعمتوں سے نوازا، وہاں پہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ٹیلنٹ سے نوازا ہے، اور سب سے بڑا ٹیلنٹ پاکستان کا پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کا نوجوان ہے، پاکستان کا وہ اثاثہ جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، جو دنیا بھر میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے دنیا بھر میں پاکستان کا پھیلا رہا ہے۔ اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف دس کہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ پاکستان کا وہ ایک خوبصورت، ایک مثبت چہرہ ہمارے پاس ہے، ایک ایسی پازیٹیویٹی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہے۔ سو میرا پورا اسٹوڈیو اس ٹائم پورا پازیٹیو ہوا ہے، کیونکہ پازیٹیو انرجی اسی ہر طرف نظر آ رہی ہیں، جن کی آنکھوں کے اندر میں چمک دیکھ رہا ہوں، جن کے دل کے اندر میں خواب دیکھ رہا ہوں، دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار کنٹری، دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیئر سیلف، دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ، کوئی اپنا کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے پہلے میں ہمارے بڑے مہمان کی جانب بڑھوں گا، اور آپ کو بتاتا چلوں جی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے معزز ممبران موجود ہیں، اور ان کے پریزیڈنٹ اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی طرف بڑھیں گے، اور عمران علی کاڈیا صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی جتنے بھی ممبرز ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلے ہم بڑھیں گے ہمارے آج کے پہلے مہمان جناب عمران صاحب کی طرف۔ عمران صاحب ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فرحان بھائی فار انوائٹنگ اس۔
0: کیسے ہیں آپ؟
1: بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔
0: آپ کو ریڈیو پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں۔
1: تھینک یو سر۔
0: آج آپ ہمارے اتنے زیادہ، اتنے اچھے اور اتنے پازیٹیو مہمانوں کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، کیسا لگا ریڈیو پاکستان آ کے آپ کو؟
1: ریڈیو پاکستان یہ میرا تھرڈ وزٹ ہے۔
0: اچھا،
1: اور آج تھوڑا سا بریفلی جو ہے نا اس کو وزٹ کیا، پہلے تو جیسے پوڈ کاسٹ کے لیے اور ویسے ہی چلے گئے، اور آج جیسے آج آپ نے بریف کی ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں، تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے بارے میں پتا چلے کہ انہوں نے اپنا کیریئر یہاں سے اسٹارٹ کیا، تو میں نے اور ہمارے ممبرز نے کافی یہاں پہ لرننگ کی، دیکھا کہ کس نے کہاں سے اسٹارٹ کیا، تو بہت اچھا لگا۔
0: اور ہمارے پاس جی بہت، یہ تو لیونگ لیجنڈ تھے خالد عباس ڈار صاحب، اس کے علاوہ جو ایسے ایسے لیجنڈس جنہوں نے ریڈیو کے لیے بھی کام کیا، پاکستان کے لیے بھی کام کیا، اور آج بھی ان کا نام ہے، اور جب بھی براڈ کاسٹنگ کی بات آتی ہے، آواز کی بات آتی ہے، تلفظ کی بات آتی ہے، اور ادائیگی کی بات آتی ہے، تو پھر اوبویسلی ریڈیو پاکستان ایک انسٹیٹیوشن، ایک صنعت کے طور پہ ہم سب کے سامنے آتا ہے۔ عمران صاحب آج جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسٹوڈیو بڑا پازیٹیو ہے، بڑی پازیٹیو انرجیز ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ساری آپ سمیت، سو مجھے بتائیے کہ جی اتنی یوتھ اور یہ یوتھ پارلیمنٹ، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور ان بچوں کا بیسیکلی آپ سب کا کام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟
1: اچھا، بڑا زبردست کوشچن ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ بیسیکلی ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے، جس کو رضوان جعفر صاحب بیسیکلی، وہ بھی ایک آر جی ہیں اور اینکر ہیں، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 2005 میں۔ اس سے پہلے وہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے کیفے ویژن کے نام سے،
0: بالکل ٹھیک،
1: اور جس کا کنسیپٹ تھا کہ وہ ایک جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، یوتھ کو، اور ان سے کوشچن کرتے تھے، اور بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا کیوں نہ اس یوتھ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا وہ جمع کیا جائے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا یوتھ پارلیمنٹ۔ اور جو یوتھ پارلیمنٹ ہے اس کو 21 ईयर्स हो गया.
0: अच्छा,
1: ऑलमोस्ट. और इसका स्ट्रक्चर बड़ा, मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है, और नेशनल असम्बली की तरह. लेकिन अभी देखिए कि हर साल इसके इलेक्शंस होते हैं, हर साल एक नई कैबिनेट बनती है, नए लोग आ जाते हैं, जो पुराने होते हैं वो एलुमनाई हो जाते हैं, और जो नई कैबिनेट, जैसे आप देखते हो कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने 5 साल पूरे करती है, तो हमारे यहाँ 1 साल के लिए होती है, और वो अपना 1 ईयर टेन्योर पूरा करती है उसके बाद. अच्छा अफरान भाई, इसमें हमारे पास 27 सेक्रेटरीज होते हैं. आप देखिए कि जैसे पंजाब है, यहाँ पे हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट के अंदर 27 सेक्रेटरीज होते हैं. अब जैसे मिस मरियम नवाज हैं, हमारी सीएम हैं, उनके अंडर ऑलमोस्ट कुछ 27 मिनिस्ट्रीज हैं. हमारे यहाँ भी सेम ही है. लाइक देयर वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, तो हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है. अब इस होल का प्रोसेस ये होता है कि एक बच्चा जो एजुकेशन के ऊपर काम करना चाह रहा है उसको हम उस सेक्रेटरी के अंडर कर लेते हैं. एक बच्चा जो है वो आईटी में काम करना चाहता है तो उसे हम आईटी की जो फील्ड में लेके आ जाते हैं. एक बच्चा हेल्थ में काम करना चाह रहा है तो उस जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ होता है उसकी हम अंडर लेके आ जाते हैं. तो एक होल कैबिनेट बन जाती है जो कि पूरा साल काम करती रहती है. इसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारी चल रही है वो शेडो कैबिनेट है. अब शेडो कैबिनेट क्या है कि जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है या सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है वो पूरा साल देखते हैं कि हमें किन चीज़ों के ऊपर काम करना है. वो अवेयरनेस सेशन करते हैं, वो डिफरेंट इवेंट्स करते हैं, वो डिफरेंट जो रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं उनको जाके मिलते हैं और अपनी सजेशंस देते हैं कि सर ये काम होना चाहिए. ये तो थ्रू आउट 21 ईयर से चलता आ रहा है, और हमारा मेन मोटिव और मेन विजन और मिशन भी यही है कि जो यूथ है उसको एम्पावर करना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि आप आएँ और अपनी बात करें, और उसको स्टेज देना है. अब देखते हैं कि यूथ को ना स्टेज नहीं मिलता, उसको बात करने का मौका नहीं मिलता, तो हम बेसिकली इस यूथ को जो है एक स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आएं, आप बात करें और लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी की बात करें. तो ये एक होल स्ट्रक्चर है.
0: वेरी नाइस. और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो बच्चे जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, वो अपना आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उनको एक्सपोजर भी मिलता है. और जब आपको स्टेज मिलता है आपको एक्सपोजर मिलता है, जब आपको माइक्रोफोन मिलता
1: करते
0: है
1: लोगों से,
0: आप लोगों से बात करते हैं, आप अपना आप यू नो बताते हैं कि यार व्हाट आई एम डूइंग, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, और क्या मैं कर सकती हूँ. दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड. अच्छा मुझे बताइए कि हम, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा फर्टाइल मुल्क है, आप यूथ के साथ होते हैं तो आप इनके अंदर कितनी एनर्जी देखते हैं, कितनी पॉजिटिविटी देखते हैं?
1: ये तो आपने अब देख ली होगी कि आपका शो 10 बजे स्टार्ट हुआ है. और आप देखिए कि ज्यादातर हमारे साथ जो हमारे डेलीगेशन में फीमेल्स हैं, मेल कम है, और आपको पता है घर से आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये एनर्जी है जो आप अभी बात करें, एनर्जी का लेवल आप चेक करें कि ये लोग, मैंने बार बार इनको कह रहा था कि ये इवेंट जो हमारा सेशन है या ब्रॉडकास्टिंग 8 से 10 है, आप लोग मुझे कंफर्म कर दें कि आ जाएंगे. तो वो कह रहे सर कोई इशू नहीं, हम आ जाएंगे. सर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है. बस हमारी यूथ को कोई प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिल पा रहा कि बच्चों को, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कि हमने करना क्या है. कोई एक कह ले कि कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो काम हम लोग कर रहे हैं. हम लोग इन्हें प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं. जैसे आज देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ पे इनको रेडियो पाकिस्तान का नहीं आइडिया होगा कि ये बेसिकली काम कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, रेडियो कैसे चलता है. और ये आज सब लोग अपनी यूथ को रिप्रेजेंट करने आए, यूथ की वॉइस बनने आए यहाँ पे, और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देने.
0: अच्छा इस हवाले से मैं बताऊँ, रेडियो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक मैसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम किया जिसमें ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चों को पैकन किया, उनके इंटरव्यूज़ हुए, ऑडिशंस हुए, फिर उसके बाद उनमें से बच्चे पिक हुए, फिर उनमें से 80 या 90 ऑलमोस्ट बच्चे जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान में इंटर्नशिप, 2 माह का बड़ा मैसिव प्रोग्राम किया, ट्रेनिंग उनको दी गई, और जो हमारे सीनियर्स, हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे मैनेजमेंट, सब ने उसके अंदर एफर्ट लगाई ताकि वो जो आप बात कर रहे हैं कि यूथ को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, यूथ को बोलने का मौका मिलना चाहिए. तो हमारे साथ तकरीबन 80-90 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपना हिस्सा लिया, और एक्सीलेंट, दे आर मॉवलेस. मैं तो उनकी कम्युनिकेशन, उनका, चूँकि बेसिक हमारा मोटिव था कि बच्चों की कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, ब्रॉडकास्टिंग सेंस उनकी अच्छी करनी है, उनको बोलने का तरीका सिखाना है, चाहे वो किसी भी मीडियम में जाएं वो अच्छा बोल सकें. तो वो एनर्जी भी बड़ी ज़बरदस्त थी. फिर अभी हमने कंक्लूड की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता उल अतार साहब ने, जब उनकी एनर्जी देखी ना तो उनको इस्लामाबाद इन्वाइट किया कि यार यू गाइज़ आर अमेजिंग. फिर इस्लामाबाद बाकायदा तौर पे उनका विज़िट रखा, उनको ब्रीफ किया कैसे मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, रेडियो कैसे काम करता है, पाकिस्तान टेलीविज़न कैसे काम करता है. सो आई थिंक यू आर राइट कि ये इन बच्चों में इतना टैलेंट है, अगर इनको प्लेटफॉर्म चीज़ें मिलें तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते
1: हैं। इस पे जब ये बात करें इंटर्नशिप की, इसमें हमारा भी एक बच्चा था जो अहमद, ये हमारा पिछली जो हमारी कैबिनेट अभी जो है 26 तक थी, उसमें सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन था
0: अहमद हमारे साथ है।
1: यस, अभी वो कह रहा था कि उसको एक प्रोग्राम भी ऑफर हुआ है, और इसने थ्रू आउट जो हमारे साथ एक साल इसने काम किया, बहुत एक्टिव रहा, बहुत सारी चीज़ें इसने की, बहुत ज़्यादा सेशंस किए, इवन जो भी एक्टिविटी होती उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट। तो हमारा भी इसमें रोल है यूथ पार्लियामेंट का, कि वो यहाँ पे इंटर्नशिप उसने की, अब उसको प्रोग्राम भी मिलने।
0: और ये देखें ना, बात ये होती है इमरान साहब, काम होना चाहिए, इस मुल्क के लिए काम हो रहा है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, अगर वो पॉजिटिव काम कर रही है, बच्चों की कम्युनिकेशन पे काम हो रहा है, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर काम हो रहा है, उनकी स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है। और आप देखिए ना कि जैसा आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, इनका मकसद ही है कि प्लेटफॉर्म्स, स्टेज मिले, माइक मिले, एक्सप्रेस करें, और माशाल्लाह टैलेंट तो है।
1: आपने देखा नहीं हमारा लास्ट प्रोग्राम जो था, तो हमने बजाय गेस्ट को बात करने के, हमने बच्चों को मौका दिया कि आप लोग आके बात करें, कि आपके अंदर क्या, अपनी स्टोरी बताएं, अपनी जर्नी बताएं, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं। तो हमने देखा बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया। तो हमारा बेसिक फ्रेंड भी मोटिव भी है कि यूथ को स्टेज दें और वो आके बात करें, लोगों को अपनी बातें शेयर करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी जर्नी बताएं, और जब उनको एक स्टेज मिल जाता है तो मुझे लगता है वो और उनके अंदर मोटिवेशन होती है।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान साहब, ये चूँकि इन स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म मिल गया, ये कनेक्ट हो गए रेडियो पाकिस्तान के साथ, कनेक्ट हो गए, कुछ बच्चे जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो गए, और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करी उनके साथ कनेक्ट हो गए, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, अगर वो कनेक्टिविटी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो कैसे अपने एक्सपोजर को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं?
1: सिर्फ हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, जैसे हमारे बहुत ज़्यादा सेशन ऑनलाइन भी होते हैं, MUN सेशंस होते हैं, डिबेटिंग कम्पिटिशन होते हैं, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो वैसे फिजिकली जो है वो नहीं जो है पार्ट बन सकते यूथ पार्लियामेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको उसमें अपने आप को जो है वो इंगेज कर सकते हैं, या अगर हमारे साथ इंगेज होना चाहते हैं तो हमारे तो बहुत ज़्यादा सेशंस होते हैं, उसमें आएँ, बात करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो वो इससे रिलेटेड वो कर सकते हैं,
0: यानी उनके पास एक्सपोजर मिल सकता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो सकता। अब तो वैसे भी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट आपके पास है, यू कैन सेट ऑन और आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, और डायरेक्शन अगेन वो आपको मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके ओहदे भी होते हैं इसमें डिफरेंट,
1: जैसे मैंने बताया कि एक प्रेसिडेंट होता है, उसके अंडर 27 सेक्रेटरीज होते हैं,
0: अच्छा,
1: वो अपनी सेपरेट कैबिनेट बनाता है, तो उसके पास ये वन ईयर के लिए एक
0: ओहदा ही होता है, मौका देते हैं सेक्रेटरीज का भी,
1: और जो एक दफा प्रेसिडेंट बन जाता है वो दोबारा नहीं बन सकता,
0: अच्छा,
1: वो दोबारा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इलेक्शन होते हैं, आपको एक निशान अलॉट होता है, उसके ऊपर जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो आके वोटिंग करते हैं। अब जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ तो हमारी एक नई कैबिनेट बन रही है, हमारी मेंबरशिप चल रही है, तो फिर मैं साइड पे हो जाऊँगा,
0: अच्छा,
1: ठीक है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ चला जाऊँगा, और दोबारा हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे। कोई भी मेंबर जो है वो एज आ प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेक्ट कर सकता है, फिर मेंबर जो है वो पूरी इलेक्शन कंपेन करेगा अपनी मेंबर्स के साथ, हर बच्चे को मैसेज करना, कॉल करना कि मुझे वोट करें, फिर हम एक वेन्यू डिसाइड करते हैं, उस वेन्यू के ऊपर आके लोग जो है उस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इवन अपना मैनिफेस्टो देता है कि मैं पूरे साल में ये काम करूंगा,
0: अच्छा,
1: तो फिर मेंबर उसको सिलेक्ट करते हैं, वो किसी को भी कर सकते हैं अपने वोटिंग से।
0: ऑलराइट, और इसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करते?
1: नहीं, हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते,
0: सोच लें
1: नहीं, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो इलेक्शन कमिश्नर के पास होता है,
0: अच्छा, वो भी बना होता है,
1: मतलब मैंने बताया कि प्रॉपर नेशनल असेंबली की तरह स्ट्रक्चर है, तो वही सारा, अगर पंजाब का है तो पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर जो वो मैनेज कर रहा होता है, सारी चीजें उसी के अंडर होती है, उसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, अगर फेडरल का है तो वहाँ पे हो रहा होता है, तो ये सारा इलेक्शन कमीशन।
0: इसका क्या तरीका कार है, अगर कोई कॉन्टेस्ट करना चाहे पहले उसको मेंबर बनना पड़ता
1: है? मेंबर जरूरी है, मेंबर होगा तो ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर मेंबर नहीं होगा तो फिर वो पार्टिसिपेट।
0: और मेंबर जो है वो स्टूडेंट है कि कोई भी मेंबर?
1: अच्छा, कोई भी मेंबर बन सकता है, लेकिन उसमें हमारी एक क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो अंडर 30 होनी चाहिए, अगर आपकी एज 30 तक है तो फिर आप यूथ पार्लियामेंट का पार्ट भी बन सकते हो और इलेक्शन जो है वो भी कंडक्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, अगर आप पहले साल भी गिवन अभी आप मेंबर बने हो तो अभी से ही आप कर सकते हो, चाहे आपको 10 साल नहीं भी हुए तो कोई मसला नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा यूथ पार्लियामेंट का एक मोटिव भी है कि आपको आगे आने का मौका मिलता है, हर पर्सन को आगे आने का मौका मिलता है, ये नहीं है आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी फरहान भाई कि एक ही प्रेसिडेंट होता है वो 10 साल वही रहता है,
0: एक ही चेयरमैन होता है
1: वही रहता है, यहाँ पे हर साल कैबिनेट चेंज हो जाती है, और जो लीड कैबिनेट है वो चेंज हो जाती है, नए लोग आ जाते हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका स्ट्रक्चर
0: अच्छा,
1: है, बहुत ज़्यादा लर्निंग
0: आइडियाज़ जो होते हैं, सपोज यू आर कनेक्टेड विद डिफरेंट पीपल, सो आइडिया अगर कोई आपको फ्लोट करना चाहे, आइडिया से मुराद ये है कि कोई भी पॉजिटिव आइडिया, कोई भी अच्छा आइडिया, वो आपकी यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी एक आइडिया वो आपके पास लेके आता है कि इस आइडिया पे आप काम करें, सो यू गाइस वर्क ऑन दैट?
1: यस, हम उनको वेलकम करेंगे.
0: अच्छा,
1: अगर वो यूथ की एम्पावरमेंट के लिए बेस्ट आइडिया है, अगर उसके ऊपर कोई वर्किंग हो सकता है, हम ज़रूर करेंगे, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है. और अगर कोई वो अपनी इवन सर्विस देना चाहता है, कि उसके पास प्रपोजल है, वो चाहता है कि कुछ हम मिल के कर सके, कुछ कोलैबोरेशन से कर सके, तो हम कर सकते हैं.
0: अच्छा, दैट्स वेरी गुड. अगर आपके पास आइडिया है और आप समझते हैं कि ये आइडिया टूवर्ड्स सोसाइटी एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है और मस्बत किरदार अदा कर सकता है, आप बिल्कुल आइडिया पोटेंट करें. अच्छा जी इमरान साहब, चूँकि आपकी जो इस टाइम ये कैबिनेट है सारी जो बैठी हुई है,
1: इस ये सारी हमारी कैबिनेट है.
0: अच्छा,
1: इसमें कुछ लीड कैबिनेट भी है. लीड कैबिनेट हम उसको कहते हैं कि जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट.
0: अच्छा,
1: है वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शहजेब साहब हैं.
0: इतने यंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का नाम सुन के बंदे को लगता है कि यार कोई बड़ा मैच्योर, बड़ा सारे माशाल्लाह यंग और फ्रेश चेहरे.
1: ताहिर भाई हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं.
0: अच्छा,
1: और बाकी हमारे सारे जो हैं ये मेंबर्स हैं. जैसे हमने बताया अभी हमारे इलेक्शंस होने हैं, अभी क्योंकि मेंबरशिप चल रही है, तो जैसे ही वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मेंबर जो होता है उसका प्रॉपर हम इंटरव्यू करते हैं.
0: अच्छा,
1: अभी हमने पिछले दिनों जो है फ्लैटीज में इंटरव्यूज रखे हुए थे, हमने इंटरव्यूज किए हैं प्रॉपर, फिर उसके बाद हम मेंबरशिप उसको देते हैं, फिर मेंबरशिप कार्ड बनता है, एक पूरा प्रोसेस है. तो अभी जैसे ही मैंने बताया कि मेंबरशिप कंप्लीट होगी, हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे. हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब के हैं वो अनाउंस करेंगे, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है.
0: अच्छा, दैट्स ग्रेट जी, ज़बरदस्त जी, कोई भी पार्टिसिपेट है, लेकिन आपने जो क्राइटेरिया बताया
1: हाँ, मेंबर होना,
0: उसके लिए लाजमी है. और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का कोई ऐसा नहीं कि इसी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, इस कॉलेज का एवरीवन कैन कम?
1: इसमें कोई फैन भाई कि किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है,
0: सिटी
1: कोई किसी सिटी का भी हो
0: अच्छा,
1: सकता
0: है,
1: पूरे पंजाब से. अभी जो हमारी ये कैबिनेट बैठी है पूरे पंजाब से है, लेकिन क्योंकि लाहौर में आपको पता है मेन हब है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ फिर ज़्यादा होती है, और जो लोग हमें फिर ज़्यादा ज्वाइन करते हैं वो भी सिटी से ही ज्वाइन करते हैं, लाहौर सिटी से. डिफरेंट सिटी से लोगों को आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो एक्टिविटीज़ ही हो रही होती है. तो अभी ये मेरे ख्याल में जितने भी मेम्बर ज़्यादातर लाहौर से ही हैं.
0: अच्छा, सारे लाहौर से हैं
1: जी.
0: और सबसे अच्छी बात यह है इनकी कि ये मेम्बर्स बड़े पंक्चुअल हैं जी.
1: एग्जैक्टली,
0: और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है जी कि मेरे से पहले मेरे मेहमान पहुंचे हुए हैं.
1: नहीं अभी हमारी
0: इतने पंक्चुअल
1: हमारी इस पूरी कैबिनेट को जो
0: डेली काफी ज्यादा सख्त किस्म
1: की. नहीं नहीं, ऐसा नहीं फरहान भाई, इस डेलीगेशन को मिस तहलील लीड कर रही थी.
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने प्रॉपर वो एंगेज थी इनके साथ कि आप लोगों ने इस टाइम पहुंचना है. आपसे मेरी जो कम्युनिकेशन हो रही थी, फिर मैं उनको बता रहा था कि इस टाइम पहुंचना है, अगर आप लोगों को कोई इशू होता है तो आपने 1:01 पहुंच जाना है वहां पे बैठे. हाँ, तो मैं देख रहा था कि 7:15 भी एक बच्चे यहाँ पे पहुंच गए थे.
0: और ये बात मेरे ख्याल में बड़ों के लिए भी है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में वीक में 2-3 पॉडकास्ट होते हैं, तो माशाल्लाह कम ही होता है कि गेस्ट जो है टाइम पे तो मेरे ख्याल में पंक्चुअलिटी जो है, टाइम की पाबंदी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और माशाल्लाह हैट्स ऑफ ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप बड़े टाइम पे और टाइमली, बिकॉज ये भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, ये भी लर्निंग प्रोसेस है कि जी आपने कहीं जाना है तो एक टाइम से जाना है. हमारे यहाँ इमरान साहब अनफॉर्चुनेटली हम वक्त के इतने पाबंद नहीं हैं. हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि अगर 8 बजे का टाइम है तो हमने 9 बजे पहुँचना है, अगर 9 का टाइम है तो 10 बजे पहुँचने, किसी इवेंट पे जाना है या किसी जगह भी जाना है.
1: वो है ना कि हम थोड़ा सा शो करते हैं, अच्छा ये बहुत बिजी होगा इसलिए लेट आया.
0: हाँ,
1: ये भी एक फैक्टर है ना हमारी सोसाइटी में.
0: ये बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है. तो आप अगर आपकी इजाज़त हो तो हम 1 by 1 आपके जो मेंबर्स हैं उनको भी ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं, उनसे भी बात करें. और उनकी तरफ ही मैं चाहूँगा कि राइट साइड से स्टार्ट करें कि आप आएंगे पहले. चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं जी. लेफ्ट साइड से हम आपने आके अपना तारुफ ही कराना है और हमसे बात करनी है. सो मैं बढ़ूँगा हमारी आज की पहली मेंबर, आ जाएँ प्लीज़, आएँ इधर आ जाएँ. अच्छा जनाब, इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे पास यूथ पार्लियामेंट की जो मेंबर हैं, लेकिन पहले आपने अपना नाम बताना है और अपना ओहदा बताना है, आप क्या हैं यूथ पार्लियामेंट में.
2: मैं अभी जस्ट इधर मेंबर ही हूं, तो मैं वहीं बोलूंगी.
0: अच्छा मैम जी जी हाँ बोलें, अब लाइव है वैसे कोई बात नहीं.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, माय नेम इज निदा शेर एंड आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ द यूथ पार्लियामेंट राइट नाउ.
0: अच्छा आप मेंबर हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो?
2: आई एम इन द थर्ड सेमेस्टर, आई एम डूइंग बीबीए एट यूसीबी.
0: پی بی اے کر رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے. سو کیسا آپ کا ایکسپیرئنس رہا ریڈیو پاکستان میں آ کے, کیسا لگا آپ کو؟
2: بہت اچھا لگا اپنے پاکستان کی لیگیسی کو دیکھنا. ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں ریڈیو, اور سب سے اچھا تب لگا جب ہم اپنے لیجنڈ سے ملے, اور اس سے بڑے لیجنڈ جب ہم نے دیکھا کہ مطلب ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ یہ وہ وائس ہے. اکثر ہم 14 اگست یا اگست کے مہینے میں وہ زیادہ مطلب انسٹاگرام اور ہمارے فیس بک پیجز وغیرہ پہ فلو کرتی ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور اگلے اعلان کا انتظار کیجیے.
0: Very nice.
2: مجھے بہت اچھا لگا بیسیکلی اس چیز کو دیکھ کے کہ مطلب
0: اگلا اعلان کیا تھا
2: کہ آپ آزاد ہیں اس پاکستان میں اپنی مسجدوں میں اور اپنے مندروں میں جانے کے لیے.
0: اگر نہیں آپ, یہ ریڈیو پاکستان ہے, اب اگلا وہ تھا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے. اعلان کا انتظار سنی, پھر اس کے بعد یہ ریڈیو پاکستان ہے.
2: بالکل
0: جی, آپ کا بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں, اور اسی طرح ہی آپ ریڈیو کو بھی سنتے رہیں, ریڈیو سے بھی آپ کنیکٹ رہیں. ریڈیو بڑا زبردست بلاگ ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے. سننے سننا جو ہے نا, یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور آپ میس کام کی اسٹوڈنٹ ہو؟
2: نہیں, بی بی اے
0: کر رہی ہیں. اچھا, بزنس کی اسٹوڈنٹ ہے؟
2: جی.
0: اچھا, بزنس بڑا انٹائرلی ڈفرینٹ ہے میرے خیال میں. سب لوگ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. وائی بی بی اے؟ اس کی
2: کیونکہ مجھے مارکیٹنگ میں جانا ہے. مارکیٹنگ از دا بیسٹ فیلڈ رائٹ ناؤ, سو
0: مارکیٹنگ میں جانا چاہ رہی ہیں آپ؟
2: جی.
0: وائی؟
2: میرا انٹرسٹ ہے مارکیٹنگ میں, اور آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ.
0: اچھا, چلیں, زبردست. یہ بیسٹ آف لک, بہت بہت آپ کو بیسٹ وشیز کہیں گے. اچھا جناب, اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ جو ممبر ہیں ان کی جانب بڑھیں گے, اور ان سے جانیں گے ان کا ایکسپیرئنس آج کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام,
0: کیسی ہیں آپ؟
3: اللہ کا شکر.
0: اچھا, اچھا جناب, ایک اور ممبر ہمارے ساتھ ہیں, اینڈ لیٹس سی کہ کون ہے ہمارے ساتھ, اور آپ اپنا نام بتائیں. اور
3: جی, تحلیل کاشف.
0: تحلیل, آپ آرگنائز کر رہی تھیں سب کو؟
3: میں اس کو لیڈ کر رہی تھی.
0: اچھا, اس کو لیڈ کر رہی ہیں آج. بڑا زبردست لیڈ کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ماشاء اللہ آپ نے بڑا ٹائملی چیزوں کو آرگنائز کیا ہے, اینڈ آئی تھنک ہیڈس آف ٹو یو. اینڈ آف کورس آپ کے پریزیڈنٹ نے بھی کافی زیادہ فورس کیا ہوگا کہ جی آپ نے ٹائملی پہنچنا ہے.
3: وہ بھی کافی پنکچوئل ہے, ان کا بھی ہم پہ پریشر رہتا ہے.
0: ہاں نہیں, ہونا بھی چاہیے ویسے, کیونکہ آپ اگر ٹائم سے نہیں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی چیزیں ویسے آرگنائز نہیں ہوتی. ایکچولی نا, ہمیں مناسل قوم, ہم سب کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. یو گائز آر ینگ اسٹوڈنٹ ہیں, اب آپ نے پروفیشنل لائف میں بھی جانا ہے. ہم سب نے یہ عادت بنانی ہے کہ جی ہم نے ٹائملی چیزوں کو کرنا ہے.
3: تھوڑا سا ہم بھی ڈسپلن کو ظاہر سمجھتے ہیں. جب ہم پارلیمنٹ کا ایک پارٹ ہوتے ہیں یا کسی اس طرح کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں بھی یہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ڈسپلن کے ساتھ ہی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. پھر آئی ایم آلسو ورکنگ پروفیشنل, ناٹ اے اسٹوڈنٹ.
0: اچھا اچھا, آپ نے ویسے پڑھا کیا ہوا؟
3: بی بی آنرس کیا ہوا میں نے, فاسٹ یونیورسٹی سے.
0: بی بی آنرس کیا ہوا, سو یو آر ورکنگ ایز واٹ؟
3: ایز این ایس سی او پروفیشنل. آئی ایم این اسسٹنٹ مینیجر ایس سی او
0: ایٹ دی
3: ملٹی نیشنل کمپنی.
0: ویری نائس. سرچ انجن آپٹیمائزیشن از آج کل تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے. اچھا, ویسے جو دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں, ایس سی او کا اسکوپ کیا ہے ویسے بھی؟
3: بہت اچھا اسکوپ ہے ویسے ابھی کے لیے. ابھی جب میں سنتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں جانا ہے ہمیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جانا ہے, تو یہ اس کی ایک ایڈوانس اسٹیم ہے آگے. اور اس میں اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے, جیسا اے آئی کی طرف آج کل لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں, تو ایس سی او اینڈ اے آئی جو ہے اس میں ایک آپ کہیں کہ اوور لیپ اور کراس پوسٹنگ آ رہی ہے, جس کو ہم اے ای او کہتے ہیں, تو اس کا کافی زیادہ اسکوپ ہے. تو وہ مارکیٹنگ کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹیمس نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یوتھ کے لیے اور زیادہ اسٹیمس ہیں. اور ہم جہاں پہ لائک ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جابس کی تھوڑی سی ایک اسکارسٹی ہے, اس چیز کو یہ بریک کرے گا بیسکلی. جس طرح آپ کی ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے, اسی طرح ہمارے پاس جو ہے پوسٹنگز اور آ رہی ہیں, ہمارے پاس اپرچونیٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو ایس سی او بھی اسی طرح کی فیلڈ ہے کہ اپرچونیٹیز نکالتا چلا جاتا ہے.
0: اچھا, اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ اب تو اے آئی نے چیزوں کو بہت زیادہ کر دیا ہے, ٹرانسفارم کر دیا ہے. ڈو یو تھنک اے آئی کے آنے سے ایس سی او ایکسپرٹس جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے جاب کے لیے؟
3: تھوڑا بہت ہوا بھی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈوانس کرنا پڑتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
3: جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسی کے ساتھ ہمیں جی اور اے ای او ڈفرینٹ مطلب آگے ہمیں ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے. انہیں کی ایڈوانس ٹائم ہے, انہیں کی کراس پوسٹنگ ہے. اے آئی کو ہم انٹیگریٹ کر لیں اگر اپنی مارکیٹنگ میں, کیونکہ اب تو ہر جگہ چل رہا ہے, تو اسی کو ہم جب لے کے چلیں گے تو پھر جب ہم ہی ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے لے کے آگے چلیں گے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں ریپلیس کرنا.
0: اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا یعنی کہ ایس ای یو کے بعد اے آئی کے اوپر کام کیا تو آپ کو لگا ہے کہ ان کے لیے زیادہ بہتر فیوچر ہے یا اپرچونیٹیز ہیں؟
3: بالکل ہے, بہت اپرچونیٹیز بھی اور زیادہ بن گئی ہیں اور ان کے لیے جو ہیں جاب زیادہ نکلی ہیں. اور جیسے جو پرانے ایس سی او کے بندے ہیں اور وہ ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تو ان کی جاب سیکیورٹی بھی بڑھ گئی ہے.
0: اچھا,
3: ایسے ہی ہے.
0: اچھا, اس کا مطلب پیرلل آپ کو چیزیں لے کے چلنا ہے.
3: آف کورس, ہم جب بھی کسی بھی فیلڈ میں ہوں گے ہمیں سات سال لرن کرتے رہنا پڑے گا, کیونکہ جیسے جیسے ایڈوانس ہوتا چلا جائے گا زمانہ اسی طرح نئی چیزیں آئیں گی, نئی پڑھائیاں آئیں گی, نئی ایجوکیشن سسٹم آئیں گے, اسی میں ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک نئی ایڈوانس میں.
0: آپ کب سے جاب کر رہی ہیں؟
3: مجھے 5+ ایئرز ہو گئے ہیں.
0: ماشاء اللہ. تو آپ کے جو نئے بچے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں ابھی مارکیٹ میں؟
3: میں کہتی ہوں کہ جو بندہ قابل ہے اس کے لیے ہمیشہ جاب
0: اپرچونیٹیز. قابل کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟
3: قابل کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کام ایکچولی میں آتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کام نہیں آتا, ان کو پھر جاب ڈھونڈنے میں مسئلہ ہے. اور ہم اپنے آپ کو نا بہت جیوگرافیکلی لمٹ کر لیتے ہیں, ایسا ہے نہیں. اور اب تو ریموٹ جابز اتنی ہو گئی ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی ہی کہیں فیلڈ کا یا اپنی انٹرسٹ کا کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اب جو ہماری فیلڈز ہیں نا وہ بھی بہت اسٹریم لائنڈ اور اسٹریٹ نہیں ہیں. کسی کو اگر کراس پوسٹنگ میں انٹرسٹ ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں انٹرسٹ ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, یہ بہت ایک آپ کہیں سمپل سے فارمز تھے جو چلتے آ رہے تھے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ڈفرینٹ چیزیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں. اب ڈیجیٹل پرسنالٹیز بن گئی ہیں, اے آئی کے اوپر کام ہو رہے ہیں, فری لانسنگ اتنی اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو یوٹیوب اور پوڈ کاسٹنگ وغیرہ یہ سب چیزیں کھل گئی ہیں. تو پھر میرا نہیں خیال کہ جاب اپرچونیٹیز.
0: سو یو تھنک کہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, کام ہے, اور یہ لوگ جو شکوا اور شکایت کرتے ہیں وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. جو کام
3: تھوڑی سی کریٹ بھی کرنی پڑتی ہیں آپ کو, جس چیز کا انٹرسٹ ہے ہمیشہ ایک نئی اسٹریم تبھی آتی ہے جب ایک بندہ اپرچونیٹی لے کے اس کو کریٹ کرتا ہے. پھر اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ایک یہ انفلوئنسر والا جو سسٹم تھا یہ پہلے تو نہیں تھا, یہ کووڈ کے بعد ہمیں بہت دیکھنے کو ملا. تو کبھی کسی نے تو فرسٹ اسٹیپ لیا ہوگا نا, تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد ایک اسٹریم اسٹارٹ ہو گئی ہے. آئی تھنک کہ ہمیں اپرچونیٹیز خود کریٹ بھی کرنی پڑتی ہیں.
0: اچھا, اپرچونیٹیز سے میں آپ سے ایک سوال ایک اور کرنا چاہوں گا. آپ نے جیسے کہ انفلوئنسرس کا سلسلہ پہلے نہیں تھا, اب تھا, تو اب تو اے آئی انفلوئنسرس بھی آ گئے, اس نے بھی مارکیٹ کو تھوڑا سا کیا ہٹ
3: کیا ہے. لیکن ہم کیونکہ ہیومن انٹریکشن کے بھوکے ہیں, ہم خود ہیومن ہیں, تو ہمیں ہمیشہ ہیومن انٹریکشن تھوڑی زیادہ پسند آتی ہے. جو یہ میں نے پرسنلی فیل کیا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنا لائک لوگوں میں اس چیز کا,
0: یعنی اس کا آپ کہہ رہی ہیں کہ رزلٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اروما زیادہ اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں کیا اصل انسان انٹریکٹ کر رہا ہے.
3: ہم اے آئی پرسنالٹی جب دیکھتے ہیں نا تو ہمارے لیے ڈفرینشیٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ یہ ہیومن ہے یہ اے آئی ہے. تو ہم اے آئی کو یوزلی اسکرول کر دیتے ہیں اور ہیومن کو ذرا دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں کریڈیبلٹی زیادہ ہے ہیومن.
0: اچھا, لیکن اے آئی کریکٹر میں کوالٹی کا بھی ہے کوئی فرق؟ اگر اچھی کوالٹی کا اے آئی لے لیں, اچھا انسان مل سکتا ہے اس میں؟
3: مل بھی سکتا ہے. اب تو اے آئی اینیمیشن میں آئی تھنک
0: بچے سارے لا رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں نہیں ملتا. ہاں جی ملتا ہے, آپ بتائیں, آپ بول سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیوز کے جیسے آپ نے بات کی نا, کہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بعض کریکٹر اتنے کلوز ٹو ہیومن لگ رہے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یار یہ تو سچ میں انسان ہے, تو آپ ادھر رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے.
3: لیکن آپ کو پھر بھی آئیڈیا ہو بھی جاتا ہے کہ یہ اے آئی ہے, ہیومن نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
3: اور اس کی ہک ٹائم بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے.
0: اچھا, ڈفرینٹ
3: انٹریکشن میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم زیادہ دیر ٹھہریں گے, زیادہ دیر رکیں گے, زیادہ دیر دیکھنا چاہیں گے.
0: بالکل ٹھیک ہے. اچھا, واٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس اور وہ لوگ جو پریکٹیکل لائف میں آنا چاہتے ہیں؟ اوبویسلی یونیورسٹی کی پڑھائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں زیادہ کہاں سیکھا جاتا ہے؟ یونیورسٹی میں سیکھا جاتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھا جاتا ہے؟
3: میں کہتی ہوں پریکٹیکل لائف میں. ایکسپیرینس از مور امپورٹنٹ دین ایجوکیشن, ناٹ مور امپورٹنٹ بٹ مور فروٹفل دین ایجوکیشن آئی مسٹ سے. اس میں ہمیں ایک ریئل ٹائم اسکل سیٹ بھی سمجھ آتا ہے, اور ریئل ٹائم میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں.
0: ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ آپ ڈگری نہ لیں, آپ اسکلز لیں.
3: ہاں نہیں نہیں, آپ ڈگری ضرور لیں.
0: اچھا,
3: اس کے ساتھ ساتھ اسکل انہانسمنٹ پہ بھی فوکس کریں.
0: اچھا ٹھیک,
3: مطلب بک وارم نہ بنے رہیں, اپنے ارد گرد جو ایکسپیرینسز جو ہیں ان کو دیکھیں, انٹرنشپس کریں, اپنی جو بھی آپ کو ایکسپوجر ملتے ہیں ایکسپوجر پہ رہیں.
0: زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی, ویری کائنڈ آف یو.
3: تھینک یو,
0: سلامت رہیں جی, بیسٹ آف لک. اور ذرا بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکشن چل رہی ہے, آئی ایم لرننگ الاٹ. بیسیکلی آج میرے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. آ جائیں سر, کوئی بات نہیں, آ جائیں کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. آج سب آئیں جتنے بھی ہیں دوست. अच्छा जनाब, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं और अभी दोस्त कह रहे थे कि जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या नाम है? माइक ज़रा साथ लगा लीजिए। आपका नाम क्या है?
4: मियाँ मोहम्मद उस्मान।
0: मियाँ मोहम्मद उस्मान, आप कहाँ से हैं?
4: मैं बिहारी से बिलोंग करता हूँ।
0: माशाल्लाह।
4: बट रिसेंटली मैं लॉ कर रहा हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से।
0: अच्छा, लॉ कर रहे हैं आप?
4: जी सर।
0: बिहारी से आपका ताल्लुक है?
4: बिहारी से।
0: कितना अर्सा हो गया लाहौर में?
4: लॉ में मेरे आते तकरीबन 4 सेमेस्टर हैं।
0: और लाहौर में कितना अर्सा हो गया? लाहौर में
4: यही टाइम,
0: यानी तकरीबन आपको
4: 2 ईयर्स
0: हो गए हैं। ज़बरदस्त। लाहौर कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा, तारीखी शहर
0: है ना
4: जी।
0: आप दिल कर रहे हैं वापस आने को बिहारी?
4: नहीं।
0: आपको पता है ये लाहौर की खूबी है, लाहौर अपने अंदर बंदों को समा लेता है।
4: सब कहते हैं ना कि लाहौर का मतलब ये लाया होर, पंजाबी में कहते हैं।
0: तो वो लाहौर जो है ना वो अपने अंदर बंदों को समा लेता है।
4: बिल्कुल।
0: तो जो लाहौर आता है ना फिर लाहौर का होकर रह जाता है। सो आप लॉ कर रहे हैं?
4: जी सर।
0: तो इस यूथ पार्लियामेंट से इंटरेक्शन आपका कैसे हुआ?
4: सर बेसिकली मैं वैसे पॉलिटिक्स से थोड़ा बिलोंग करता हूँ, लाइक फैमिली में भी।
0: ठीक।
4: बट आगे मैं कहता हूँ कि यूथ के हवाले से अगर बात करें तो हमें नौजवानों को आगे आना चाहिए।
0: ज़बरदस्त।
4: तो बेसिकली मैं बिहारी, इतना कोई ज़्यादा इलाका नहीं है,
0: छोटा सा
4: गाँव
0: है, सारी बात
4: गाँव टाइप।
0: तो नाम बड़ा है आपके इलाके का, हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं वहाँ से।
4: जी सर।
0: बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि लॉ आप करना चाह रहे हो?
4: जी सर।
0: दिस इज़ योर ओन पैशन?
4: यस सर।
0: आपका अपना शौक है?
4: जी सर।
0: आपकी अपनी है कि आप वकील बने?
4: बिल्कुल सर।
0: यानी कि आप कायदे आज़म की लेगेसी को लेकर चलना चाहते हैं?
4: इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर्स हैं तो उनको देखें तो वो सारे लॉयर ही थे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
4: कायदे आज़म थे, अलामा इकबाल थे, अगर महात्मा गांधी जी की बात करें वो भी लॉयर ही थे।
0: बिल्कुल जी, आप अल्लाह ताला आपको उसी लेगेसी पे कामयाब भी करें और इसी तरह ही अपनी जो फील्ड है उसमें भी कामयाब हों। अब इसका मतलब है कि आप लॉयर बनेंगे और आप ये हमसे कमिटमेंट करेंगे
4: इंशाल्लाह,
0: अब जो भी करेंगे सही करेंगे,
4: अच्छा करेंगे,
0: है ना, हक और सच के साथ चलेंगे
4: इंशाल्लाह।
0: चलें जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका एंड बेस्ट ऑफ लक। वल जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ बड़े ही बड़े टैलेंटेड किस्म के दोस्त मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू चल रही है। एक और दोस्त हमारे साथ हैं, लेट्स सी हु इज़ विद अस। एंड आप समझें ये भी ओपन माइक है जी, और हमारे साथ ये तमाम दोस्त जो आ रहे हैं ये बड़े टैलेंटेड हैं। माइक को आप इधर लगा लीजिए। नहीं, आप मेरे ख्याल में सद आप खुद सेट करें माइक। हाँ, चलें, ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप?
5: ठीक है
0: सर। थोड़ा सा आगे हैं, माइक के पास आएँ। हाँ, ये नहीं, मेरे पास नहीं आना, माइक के पास रहना है। नहीं नहीं, उसको रहने दें, ये वाला माइक के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
5: वालेकुम सलाम।
0: क्या नाम है?
5: उमेर।
0: थोड़ा सा उमेर ऊंचा बोलें।
5: उमेर वान।
0: घर में तो आप इतना ऊंचा बोलते हैं, अक्सर आपकी शिकायत मिलती है कि उमेर बहुत ऊंचा बोलता है। ऐसे ही है ना?
5: नहीं,
0: कम बोलते हैं
5: जी,
0: लग नहीं रहा वैसे मुझे कम बोलते हैं। उमेर क्या कर रहे हो आप?
5: मैं बीबीए कर रहा हूँ।
0: बीबीए?
5: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब सर।
0: बिजनेस करने का इरादा है?
5: जी जी।
0: कि जॉब करनी है?
5: बिजनेस।
0: क्या बात है जी। मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे वो लोग मिलते हैं जब जो जॉब क्रिएटर्स हों, है ना जी। जॉब फाइंडर तो हर कोई होता है, लेकिन जॉब क्रिएटर जो होता है ना, जो लोगों को नौकरियां दे, जो लोगों के लिए काम करें। तो ज़बरदस्त यार उमेर, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आप अगर बिजनेस करोगे मुझे पार्टनर बना लेना यार, ठीक है? कुछ प्लान है कोई वैसे सोचा है?
5: नहीं, अभी
0: अभी नहीं सोचा। कौन सा सेमेस्टर है आपका?
5: सेवन्थ।
0: सेवन्थ सेमेस्टर है, मतलब ऑलमोस्ट कम्प्लीशन के ऊपर है। सो बीबीए के बाद क्या इरादा है?
5: एमबीए शायद।
0: अच्छा, शायद कंफर्म नहीं है?
5: नहीं।
0: तो उसके दरमियान में कुछ बिजनेस वगैरह भी करेंगे, कुछ जॉब वगैरह भी करेंगे?
5: जॉब नहीं करने।
0: नहीं यार, थोड़ी सी कर लो। उसकी वजह, जॉब जो होता है ना आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देती है, पंक्चुअल कर देती है, वक्त का पाबंद कर देती है, और आपके जो मामला है ना उसमें ज़रा बेहतरी कर देती है। जॉब करना बुरी बात नहीं है, इसको मैं नहीं गलत कहता, लेकिन यह कि चले जॉब का एक्सपोजर लेने के बाद आप बिज़नेस में आ जाएँ। सो आपके अंदर पंक्चुअलिटी आ जाती है, आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इमरान साहब से पूछे ना, माशाल्लाह वो सुबह सुबह उठे होते हैं, अपने काम पे होते हैं, फिर उसके बाद कई काम कर रहे होते हैं। सो उनके अंदर पंक्चुअलिटी भी है, उनको पता है कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से रहना है। तो बिज़नेस ज़रूर करो साथ में आप। वैसे बिज़नेस कुछ सोचा हुआ जहन में कुछ है?
5: नहीं।
0: फैमिली में कोई बिज़नेस करता है? कोई नहीं करता। तो फिर आप, इसका मतलब है आप तो लेजेंड बनेंगे फैमिली के। आप फिर ना एक बड़ी सी वो तख्ती लगा लेने का, आई एम द फर्स्ट वन जो पूरी फैमिली में बिज़नेस करने वाला है। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, सलामत रहें, खुश रहें, बहुत सी आपके लिए नेक तमन्नाएं। इसी तरह ही आप पढ़ते भी, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई
5: पढ़
0: दिल लगा के पढ़ें, सिर्फ पढ़ाई की तरफ दिल लगाए हुए कहीं और भी दिल लगाया हुआ?
5: एवरेज ही है बस.
0: एवरेज यानी दिल भी एवरेज लगाया हुआ है?
5: नहीं पढ़ाई में.
0: नहीं सर, दिल आपने पूरा लगाना है. पढ़ाई में बेशक एवरेज नहीं, लेकिन दिल आपने जहाँ लगाना है वो आपने पूरा लगाना है. है कोई टारगेट? नहीं. अच्छा, टारगेट भी कोई नहीं यार, क्या बात है. ये तो बड़े मज़े की चीज़ है यार. शरीफ आदमी आप मेरी तरह. मैं भी अपने आप को अपनी तरफ से शरीफ कहता हूँ. नहीं है
5: शरीफ
0: है भाई, शरीफ आदमी. चलो यार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी. वल जनाब, हमारे साथ इस वक्त बड़े ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं और प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं. और हमारे साथ नेक्स्ट कौन है, कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम.
6: वालेकुम अस्सलाम.
0: कैसी हैं आप?
6: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम रिमजा है.
0: रिमजा, बड़ा यूनिक नाम है.
6: थैंक यू.
0: इसका क्या मतलब है?
6: इसका मतलब है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फूल का खिलना.
0: अच्छा, ये फारसी जुबान का लफ्ज है?
6: I believe it is an Arabic, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है.
0: रिमजा
6: जी, रिमजा.
0: माशाल्लाह, मैं रिमशा सुना हुआ है. और
6: रमजा बहुत थोड़ा सा है और रिमशा है. रिमजा जो है वो बहुत रेयर नेम है.
0: रेयर नेम है. आप रेयर ही लग रही हैं आप भी, माशाल्लाह.
6: थैंक यू.
0: क्या कर
6: much.
0: रही हैं आप?
6: मैं मैनेजर हूँ और वैसे तो मैं ICAP की स्टूडेंट हूँ, लेकिन लाइक आई एम सर्विंग एज अ मैनेजर टू अ सोल प्रोप्रेटरशिप फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स.
0: माशाल्लाह.
6: और जैसे कि अभी आप इससे पहले बात कर भी रहे थे कि हमें पहले जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहिए एंड देन हमें बिजनेस की तरफ आना चाहिए.
0: आप एग्री नहीं करती इस बात से?
6: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ.
0: मैं डर गया, मुझे लगा कहने लगे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती.
6: नहीं नहीं, मैं बहुत एग्री करती हूँ और मैंने इन लास्ट टू ईयर्स में यही किया है और अब मेरा भी प्लान है कि बिजनेस स्टार्ट करना है इंशाल्लाह.
0: अच्छा, आपने मैनेजर कहा है ना, मुझे लगा आप तो अभी स्कूल में पढ़ी होंगी. माशाल्लाह.
6: नहीं. वैसे लड़कियां अपनी एज बताती नहीं है, बट आई लुक यंगर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह.
0: चलें जबरदस्त, आप ना बताएं, हम पूछेंगे भी नहीं आपसे. लेकिन ये कि अच्छा है, अच्छा आप क्या है, जॉब क्या है, काम क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है?
6: अच्छा, जो कंपनी है इट इज़ बेसिकली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बिजनेस है. मेजर नेम्स हैं जैसे कि पाकिस्तान में उसमें TGF प्रेजेंट के नाम से है.
0: राइट.
6: तो उनकी क्लाइंट मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट और इस ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करती हूँ.
0: हाउ डू यू कम इन दिस यूथ पार्लियामेंट?
6: हाउ डू आई कम इन यूथ पार्लियामेंट? एज तहलील वाज सेइंग कि हम बहुत बुकवर्म होते हैं जब हम अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं. तो मेरा भी सिमिलर केस था. लाइक आई यूज़ टू स्टडी मेडिसिन फर्स्ट, तो उसके बाद जब मैंने ICAP ज्वाइन किया था तो आई यूज़ टू बी अ बुकवर्म. मैं बहुत एक बुकवर्म वाला बच्चा थी जिसका बबल भी एक बहुत लिमिटेड सा था.
0: ठीक.
6: तो मुझे ऐसे लगता था कि लाइक हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. एंड विद टाइम आई रियलाइज्ड कि देर इज़ अ मेजर गैप इन एजुकेशन स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो फिर मुझे यूथ पार्लियामेंट में ये एक चीज़ नज़र आई थी कि जिसमें जब मैंने इनको ज्वाइन भी किया था, इनके मैंने कुछ सेशंस दिए थे बेसिकली. इनका एक बसीरत फेलोशिप का प्रोग्राम हुआ था, मैंने वो ज्वाइन किया था. तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. जैसे कि देखें, आज फर्स्ट टाइम मैंने रेडियो पाकिस्तान विजिट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. सो दैट्स द रीज़न मैंने इनको ज्वाइन किया है, कम्युनिकेशन बेहतर करने में उन सब चीज़ों में.
0: अच्छा, आप होल्ड कीजिएगा, हमने न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाना है. ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा आपसे कंटिन्यू करेंगे हम.
6: श्योर, इंशाल्लाह.

0: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
1: We'll be back after the shot commercial break.

0: किया जाना चाहिए। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद की जानिब अपना लॉन्ग मार्च अगले महीने के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं।
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

We'll be back after the shot commercial break.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

कैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो की

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना बात करनी ना तुझको सुनानी सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ आता नहीं मेरे दिल को सुकून दुनिया झूठी दुनिया वाले है फेक उनके बारे में मेरा है टेक I don't care what you think, what you

मिटक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: This is FM 101।
4: सुनते रहिए FM 101।
0: FM 101, The Sound of New Millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.
3: This is FM
4: 101. सुनते रहिए FM 101.
0: FM 101, The Sound of New Millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए FM 101
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

एक दिन हम कहीं साथ होंगे, वक्त की आंधियों से अटी सातों पर से मट्टी हटाते हुए, एक ही जैसे आंसू बहाते हुए। हम मिलेंगे घने जंगलों की हरी घास पर, और किसी शाख नाजुक पे पड़ते हुए बोझ की दास्तानों में खो जाएंगे। हम सनोबर के पेड़ों के नौकीले पत्तों से सदियों से सोए हुए देवताओं की आंखें चबू जाएंगे। हम मिलेंगे कहीं बर्फ के बाजुओं में घिरे पर्वतों पर, बांझ कब्रों में लेटे हुए कोह पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए, जो पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें वक्त आने पे माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया। हम मिलेंगे शाह सुलेमान के उर्स में, हौज की सीढ़ियों पर वजू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे, संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए, आह भरते हुए और दरख्तों को मन्नत के धागों से आजाद करते हुए हम मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं नारमेंडी के साहिल पे आते हुए, अपने गुमगश्ता रस्तों के खाके सफर से अटी वर्दियों के निशान देखकर, मराकिश से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए, एक जहां जंग की चोट खाते हुए। हम मिलेंगे कहीं रूस की दास्तानों की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए। शाम लबनान बैरूत की नरगसी चश्महोरों की आमद के नौहों पे हंसते हुए, खूनी खजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे। खूनी खजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं एक मुर्दा जमाने की खुश रंग तहजीब में जज्ब होने के इम्कान में, एक पुराने इमारत के पहलू में उजड़े हुए लॉन में, और अपने असीरों की राह देखते पांच सदियों से वीरान जिंदान में। हम मिलेंगे तमन्नाओं की छतरियों के तले, ख्वाहिशों की हवाओं के बेबाक बोसों से छलनी बदन सौंपने के लिए रास्तों को। हम मिलेंगे जमीन से नमूदार होते हुए आठवें बर्रे आजम में उड़ते हुए कालीन पर। हम मिलेंगे किसी बार में अपनी बकाया उम्र के पाए माली के जाम हाथ में लेंगे, और एक ही घोंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे और होश आने तलक गीत गाएंगे, बचपन के किस्से सुनाता हुआ गीत जो आज भी हमको अजबर। बेड़ी वी बेड़ी तू ठल दी ते पहिए, पते पार क्या है, पते पार क्या है। बेड़ी वी बेड़ी तू खेल दी ते पहिए, पते पार क्या है, पते पार क्या है। हम मिलेंगे कहीं बाग में गांव में धूप में छाँव में, रेत में दश्त में शहर में मस्जिदों में, कलीसों में मंदिर में मेहराब में चर्च में, मूसलाधार बारिश में बाजार में ख्वाब में आग में, गहरे पानी में गलियों में जंगल में और आसमानों में, कौनों मकान से परे गैर आबाद सैयाराए आरजू में, सदियों से खाली पड़ी बेंच पर जहां जहां मौत भी हमसे दस्तो गिरेबान होगी तो बस एक दो दिन की मेहमान होगी।

आज का सवाल जानते हैं क्या है? 12:33 पे सवाल आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप मुकम्मल तौर पर आएं और इस सवाल के हवाले से मेरी कश्मकश और मेरी उलझन को सुलझाने की कोशिश करें। बताएं मुझे कि क्या करना चाहिए मुझे। आज का सवाल है कि क्या हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम है या कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी हिजरत करनी पड़ती है। आज का सवाल है ये कि हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम है या इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी हिजरत करना पड़ती है। कैसा करना चाहिए इंसान को। इस सवाल को लिए हुए हम चलेंगे और बहुत आगे तक बढ़ेंगे, सोचेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे हम। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए प्रोग्राम का एक और ट्रैक है, कल मैंने सुना और अभी ये ट्रैक अपलोड किए हुए अली जफर को 2 दिन हुए हैं, तो दिल चाह रहा है ये ट्रैक सुनने का, अच्छा लगा मुझे। आज ट्रैक्स भी काफी शामिल रहेंगे। गला जो है वो अभी भी खराब है और मुझे जो जुकाम होता है, मुझे जो गला खराब होता है, वो बड़ी तश्वीशनाक सूरत हाल पैदा होती है, शदीद होता है हमेशा। लेकिन एक बार होने के बाद ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ अर्सा बड़ा आराम से सुकून से गुजर जाता है। इसको पूरा सुनना है हमने, इस ट्रैक को, 3:26। आई विल बी बैक।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

बहरहाल मैंने आपसे एक सवाल पूछा है आज, मैं चाह रहा हूं कि आप उस सवाल के हवाले से अपनी कीमती राय जरूर दें।

हिजरत क्या है आपकी नज़र में? क्या हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम है या कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी हिजरत करनी पड़ती है? ये आज का सवाल है, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे। जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या हर हिजरत इंसान को वाकई में बदल देती है, या कुछ लोग जगह बदल कर भी वहीं रह जाते हैं जहां से चले होते हैं। जाहिरी तौर पर कदमों के साथ चलकर जगह बदलने से क्या वाकई में चीजें तब्दील हो जाया करती हैं, या अपने अंदर से भी जगह को तब्दील करना पड़ता है? बहुत सारे ख्यालात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जहन में आ रही हैं। क्या है हिजरत आपकी नज़र में? ज़रा इसका खुलासा तो कीजिएगा, बताइएगा तो सही मुझे, ज़रा मेरी उलझन को सुलझाइएगा तो सही ना। क्या है ये हिजरत आपकी नज़र में, ज़रूर बताइएगा मुझे। और बताने के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं, मैंने आपको पहले से बताया। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 4471 पर, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखेंगे आप 101 स्पेस देकर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पैगाम लिखेंगे और उसे भेज देंगे 4471 4471। यस, इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/fm101lahore, और वहां पे एक पोस्ट पिन कर दी गई है और उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जो लोग मुफ्ता एंजॉय करना चाहते हैं या फिर दुनिया में रहते हुए किसी भी जगह से अगर आप मुझ तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हिजरत के हवाले से, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए क्या हिजरत कर लेनी चाहिए, अगर एक जगह पे इंसान हर लिहाज से जहनी तौर पर, माली तौर पर और बहुत सारे दूसरे एतबार से इंसान बिल्कुल स्टक हो चुका है, रुक चुका है, उसके लिए ज़िंदगी जैसे एक रुकी हुई महसूस होने लगी है, ऐसी सूरत हाल में क्या हिजरत कर लेनी चाहिए? क्या उस जगह को, उस शहर को, उस जॉब को, मामूलाते ज़िंदगी को तब्दील कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे ज़रूर बताइए। क्या हिजरत, हम हिजरत के हवाले से आज बात कर रहे हैं, तो क्या हिजरत काम आ सकती है? ऐसी सूरत हाल में क्या हिजरत पे इक्तफा किया जा सकता है? क्या भरोसा किया जा सकता है कि हाँ हिजरत कर ली जाए? क्योंकि ऐसी सूरत हाल में बाज़ोकात इंसान को अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा इतना नहीं रहता। ऐसी सूरत हाल में जब बहुत सारी चीज़ें टूट का शिकार होती हैं, हर तरफ से रास्ते कभी बंद होते हुए नज़र आते हैं और कभी अधखिले नज़र आते हैं, खुलते हुए भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन जब भी उस खुले हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे बंद होने लगता है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए हमें? क्या हिजरत कर लेनी चाहिए? क्या रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए? क्या मंजिल मुतय्यन कर लेनी चाहिए? किसी और शहर, किसी और मुल्क का रुख कर लेना चाहिए? क्या चले जाना चाहिए, उस जगह से हट जाना चाहिए? क्या वहाँ का भी कोई ऐसा असर हो सकता है? क्या ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं जो हमारे बहुत सारे मामलात को उलझा रही हैं? मैं चाह रहा हूं कि दिल खोलकर आप मैसेज करें, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखें 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज दें 4471 4471। मैं आपके पैगामात का इंतज़ार कर रहा हूं और मैं सारे के सारे पैगामात आज शामिल करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगियां इसी तरह से कहीं ना कहीं उन्हें रुकी हुई महसूस हो रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ मामलात ख़राब हो रहे होंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? क्या उनमें से किसी ने हिजरत की? और अगर आप हैं वो जिसने हिजरत की, तो आपने क्या उसके समरात देखे? क्या वाकई में कुछ तब्दील हुआ? क्या सब कुछ तब्दील हुआ या बहुत बेहतर हो गया, मामलात अच्छे होने लगे, चीज़ें तब्दील होने लगी? ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज, मैं चाहता हूं कि वहां पे भी आप मेरी पोस्ट को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर
अपने होने का हमें एहसास दिलाएं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के ज़रिए से मुझे इस सवाल का ज़रूर जवाब दें, क्योंकि लाइव कॉल्स मैं प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना रहा कुछ अरसे से, लेकिन आपकी ऑफिर कॉल्स मैं प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप हर गीत के दौरान जब भी मैं कोई ट्रैक प्ले करूं तो आप ज़रूर शामिल हों और मुझे बताएं ऑफिर कॉल में कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। बहरहाल एक और ट्रैक प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूं और इसके बाद जैसे ही वापस आऊंगा तो जरा टॉपिक के ऊपर गहरी नजर से बात करेंगे, हर तरफ से इसको देखेंगे। साइंस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, मजाहिब क्या कहते हैं, फलसफा क्या कहता है।

0: All right, once again, welcome back. बहुत सी कॉल्स आ रही हैं मुझे और थैंक यू वेरी मच. बीबी मुझे सुन रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. खुश रहें, आबाद रहें आप. बहुत सी बातें आपने मुझसे शेयर की, थैंक यू वेरी मच. और ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, आपके मैसेजेस जो हैं वो मुझ तक पहुंचते रहने चाहिए और मैं एक ही साथ मैं स्टार्ट करूंगा आपसे बातें, ठीक है ना. सो सिद्रा हनीफ हमारे साथ हैं लाहौर से. आप कैसे हो? अपने ज़िंदगी को बदल लेना चाहिए आपने कहा. अच्छा, लेकिन किस तरह से बदलना चाहिए? क्या हिजरत करके बदलना चाहिए या वहीं पर रुकते हुए ठहर कर इंतज़ार कर लेना चाहिए, शायद ऑटोमेटिकली वो तमाम मामला ठीक हो जाएं और ज़िंदगी बदल जाए, ऐसा कह रही हैं आप सिद्रा. अरसलान अरशद हमारे साथ है फ्रॉम सरगोदा, अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त रायवंड से सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया. नूर हमें सुन रही हैं नूरोलैन. हिजरत हर जगह से की जा सकती है सिवाय मोहब्बत के. हाँ सही कहा. अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान अनवर भाई एंड ऑल लिसनर्स. पाक आर्मी से अशरफ लाहौर कैंट से जरूर हिजरत करनी चाहिए क्योंकि हिजरत सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एग्जैक्टली सही कहा आपने. अरसलान रशीद कहते हैं इस वक्त रायवंड से सुन रहा हूँ. मामूलात ज़िंदगी के लिए कर लेनी चाहिए और इसके समरात भी बहुत अच्छे हैं. बताइए तो सही किस तरह से अच्छे हैं. मोहम्मद अहसन कह रहे हैं कि मुग़ल, मोहम्मद अहसन मुग़ल हमारे साथ फ्रॉम काला शाह काकू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अब आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं 4471 पे, बहुत अच्छा एहसास मिलता है. आते रहिए, मैसेजेस करते रहिए, मैं आपके सारे के सारे मैसेजेस जो है ना वो पढ़ूंगा. और डॉक्टर राबिया और डॉक्टर अलीना ने एक ही फरमाइश की है मुझसे और कहा है कि आज के आपके अशार बड़े खूबसूरत हैं, सो काइंडली एक बार अगर आप पढ़ दें. अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे उठना चाहिए मुझे यहाँ से. अस्सलाम वालेकुम आरजे डॉक्स. एक अरसे के बाद आ जा वहाँ से. ठीक कितने बजे? 1 बजे आए. इधर आ जाए, इधर आना. अच्छा ठीक है, ले जी. अब जिंदगी का जो एक मज़ा है वो तब्दील होने वाला है, चेंज होने वाला है यहाँ से सब कुछ. आरजे डॉक्स हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं और आ चुके हैं हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम डॉक्स, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. आप खैरियत से हैं?
0: ये एसी वैसे मैंने अपने लिए बंद किया हुआ, आपके लिए चलाऊं?
1: नहीं.
0: ठीक है, सब ठीक है. अच्छा नहीं. कैसा चल रहा है जिंदगानी का सफर?
1: बहुत अच्छा. जो वक्त गुजर जाए अच्छा है.
0: हाँ, जो वक्त गुजर जाए अच्छा है और अगर अच्छे से गुजर जाए तो बहुत अच्छा है.
1: और वक्त हमेशा गुजर जाने के बाद अच्छा लगता
0: है. सही कहा.
1: जब वो माजी बईद का हिस्सा बन जाए, माजी करीब से सफर करते हुए कहीं दूर मुसाफतों का सफर तय कर ले आपकी मेमोरीज में, आपकी यादों में, जहाँ पे आपको सोचना पड़े उसको याद करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है.
0: सोचना पड़े, हाँ. अगर ऐसा वक्त गुजरा हो जिसे वाकई में बाद में किसी खास वक्त में इंसान सोचे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है. और अगर ऐसा वक्त गुजरा हो तब
1: चाहे वो तकलीफ के लम्हात हो,
0: हाँ,
1: चाहे खुशी के, गुजर गए तो अच्छे हैं.
0: इंसान सोचे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है. और अगर ऐसा वक्त गुजरा हो तब
1: चाहे वो तकलीफ के लम्हात हों,

0: तुम आवाजें देते रहोगे मगर मैं हाथ नहीं आऊंगा। कहा था तुम्हें कि बहते हुए पानी को महसूस तो किया जा सकता है, थामा नहीं जाता, मगर तुम्हारी ये जिद हमेशा से रही कि हाँ मैं तुम्हें थाम लूंगा। अब मैं कहता हूं कि देखा, मैं हवा के झोंके की तरह से महज छू के गुजर गया, तुमने मुझे महसूस किया, ना मैं रुका ना तुमसे रोका गया। वक्त के बहते हुए धारे की तरह से मैं गुजर जाऊंगा।
1: इन तमाम एहसासात को यकीन करें बड़ी शिद्दत से और मुख्तलिफ तरह से महसूस कर रहा हूँ, और वो जो चीज़ें हैं जो मेरे महसूसात को, मेरी उस हिस को उस जगह तक पहुँचा रही हैं, वो आप जानते हैं कुछ और तरह से। ये जो आपने कहा ना कि थामने की कोशिश करोगे लेकिन फिर भी मैं बह जाऊँगा, ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ से निकलता चला जा रहा है किसी इंसान की सूरत में या पानी की सूरत में। इंसान रोकने की जितनी भी कोशिश कर ले या थामने की जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो रेत के ज़र्रे ही क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने थाम लिया। मुट्ठी आखिर कितनी देर तक बंद रह सकती है।
0: अच्छा, एक और दूसरा नुक्ता नज़र है। ये तो आम सी बात है ना कि आप पानी को नहीं थाम सकते, आप हवा को नहीं थाम सकते, महसूस करते हैं।
1: Yes.
0: इस तरह के और भी मखलूकात हैं, लेकिन दूसरी राय मेरी ये है कि हर वो चीज जिसको आप समझते हैं कि आपने पकड़ लिया, थाम लिया, उसको भी एक्चुअली आपने थामा नहीं है, एक्चुअली वो भी निकल जाएगी।
1: हाँ,
0: तो कोई चीज दायमी तो है नहीं,
1: दायमी नहीं है,
0: क्योंकि दायमी
1: हम रहते हुए
0: दायमी गिरफ्त, दायमी कैफियत, दायमी महसूसात, एहसासात के जागने के लिए आपका भी दायमी होना जरूरी है,
1: आपका भी बाकी रह जाना जरूरी है।
0: दायमी नहीं है ना आप ना मैं,
1: ना आप ना मैं, बिल्कुल ऐसा ही फानी है,
0: पॉसिबल नहीं। सवाल क्या चल रहा है आज?
1: हिजरत कर लेनी चाहिए अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए या अपनी जात को तब्दील कर लेने के लिए, आज का ये सवाल है मेरा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, हिजरत के हवाले से, या फिर सिर्फ जगह को तब्दील करने से तमाम मामलात ठीक हो जाते हैं? अगर मामलात जिंदगी के किसी और तरह से चल रहे हैं, कभी गड़बड़ाकर चल रहे हैं, कभी समझ से बालातर होकर चल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में हिजरत के हवाले से तो आज
0: सवाल पे सवाल ही करते हैं।
1: हाँ,
0: ये सवाल का जवाब भी तलाश करना शुरू कर दें।
1: यस, सवाल का जवाब तलाश करते हैं, और आप अगर सामने बैठे हैं तो मुझे लगता है कि जवाबात अभी तक तो मुझे ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि अगर कोई सवाल मन में आया है और मैंने वो आपके सामने रखा है तो उसके कई हजार जवाबात सामने आए, चाहे हम अकेले में आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं।
0: नहीं, हजार तो नहीं होते, वो लेदा बात है कहने की हद तक होते हैं। हाँ जी, हजार जवाब आ गए। वो कभी कभी ऐसे होता, मैं भी कह देना पांच जवाब है मेरे लो
1: ये जवाब नहीं कहना चाहिए किसी को कि यार मेरी तरफ से जवाब है तुम्हें।
0: इसका वाकई हकीकतन फौरी तौर पर आपको जवाब चाहिए?
1: नहीं, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं।
0: आपको यकमुश्त जवाब चाहिए?
1: यकमुश्त
0: फौरन से।
1: यार आप कोशिश भी करेंगे ना तो मैं आज उस मूड में नहीं जा पाऊंगा। सच है,
0: हिजरत चाहिए क्यों आपको?
1: पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे हिजरत जो है बहुत सारे मामलात को सही करने की वजह।
0: मुहर्रकात क्या है, वजूहात क्या है, उसके बाद फिर बात करेंगे ना। हिजरत मतलब ऐसे ही बैठे बैठे दिल किया, हाँ ये तो चल रहा है, इससे मैं उकता आ गया हूँ, अब बदल देना चाहिए मुझे, तो मैं हिजरत की तलब में निकल पड़ा और मैंने सोचा हाँ मुझे मुहाजिर हो जाना चाहिए।
1: अच्छा, इसको ना इस तरह से
0: रूहानी करनी है, जिस्मानी करनी है, हिजरत कैसी करनी है?
1: नहीं, फिजिकल करनी है, वाकई में जाहिरी तौर पर भी हिजरत होनी है वो,
0: क्योंकि

0: آسان ہے, روحانی ذرا مشکل ہے.
1: وہ بہت مشکل ہے, اس طرف ہی تو جانا ہے ہمیں. لیکن اس سے پہلے میں اس فزیکل ہجرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں تمام معاملات کو, یا اس طرح سے کہہ لیں کہ زندگی کے تمام معاملات کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن دروازے کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں, آپ پہنچتے بھی ہیں, لیکن دروازے بند ہوتے ہوئے بھی محسوس ہوتے ہیں آپ کو, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے یا اس جگہ پہ رہتے ہوئے,
0: کھلے نہ ہوں تو کھول لیتا ہے انسان.
1: ہاں, انسان کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ کھول لیتا ہے دروازے چاہے جتنے بھی بند ہوں. میں نے کہا نا آپ کوشش کر لیں بے شک, لیکن آج ذرا مشکل ہے.
0: نہیں نہیں وہ نہیں مشکل, وہ مشکل کوئی نہیں ہوتا, مشکل چیز کوئی نہیں ہوتی. بہرحال
1: ہاں, لیکن مشکلات آپ نے,
0: محرکات کیا ہے, محرکات کیا ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کا جواب آتا ہے نا.
1: میں نے کہا نا کہ بعض اوقات تمام چیزیں آپ کی,
0: اچھا جو آپ کی میں ابھی تک انڈرسٹینڈ کیا ہے نا, آپ بھی بات کرتے ہیں اور میں بھی بات کرتا ہوں. عام طور پر ہم بات کرتے ہیں جذبات پہ,
1: ہاں,
0: اندر اٹھنے والے خیالات پہ,
1: بالکل,
0: کبھی اپنے تخیلاتی دنیا پہ, امیجنری ورلڈ پہ. وی ٹاک اباؤٹ سو مینی امیجنری اینڈ فینٹسائز تھنگس, وی ٹاک اباؤٹ تھاٹس, وی ٹاک اباؤٹ سوشل انٹریکشن, سوشل ایشوز, انڈیویژل کیپیسٹی میں کیا آتے ہیں اموشنل بیس پہ. تو جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں عموماً عام طور پر وہ ہوتی ہے جذبات سے جڑی ہوئی, آپ کے احساسات سے جڑی ہوئی. آپ ہیں, میں ہوں, یا کوئی سننے والا ہے, کوئی فرد واحد ہے, وہ کس مقام پر کیا محسوس کرتا ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے یار یہ کیا ہے, کیوں ہے, میں تھک گیا ہوں, مجھے بدل لینا چاہیے, بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے, مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے, آگے بڑھنا ہے تو کس طرح سے بڑھنا ہے, کہ وہ نکل جا کیا ہے اس سے. ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے عقل پہ, حضرت علامہ اقبال کا, یاد آ رہا ہے لیکن یاد نہیں ہے.
1: اچھا مفہوم بتا دیجئے
0: کیا ہے, نکل جا عقل سے آگے کچھ کر کے, کہ یہ مشلے راہ ہے منزل نہیں, کچھ اس طرح کر کے ہے. آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو میں نے ابھی تک حاصل کیا,
1: اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ ہستی, یہ والی
0: سراغ زندگی,
1: سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن,
0: یہ
1: ڈیفرنٹ ہے, لیکن آپ کا وہ ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے.
0: تو
1: اچھا
0: یہ سچویشن ہوتی ہے ساروں کے ساتھ ہوتی ہے, اور عمومی طور پہ میں نے محسوس کیا یہ خیال میرے اندر بھی اٹھتا ہے, یہ تب اٹھتا ہے جب میں اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہوتا, جب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, تسلی نہیں ملتی کسی چیز سے, اور میں محسوس کرنا شروع کرتا ہوں کہ میں انفٹ ہوں نا اس جگہ پہ جہاں پہ ہوں, یہاں پہ میں فٹ نہیں بیٹھ رہا, میں وہ پرزا ہوں جو اس مشینری کے اندر بیکار سا شاید بن گیا ہوں, یا یہ مشینری میرے لیے نہیں ہے, مجھے کہیں اور فٹ ہونا چاہیے, لیکن میں جا بھی نہیں پا رہا, جیسے میں پھنسا ہوا ہوں بالکل مشین کے اس پرزے کی طرح جسے تار سے باندھ کے لٹکا دیا جاتا ہے, استعمال نہیں ہوتا لیکن لٹکا رہتا ہے ساتھ, کہ اچھا اسے کبھی ضرورت پڑی تو استعمال کر لیں گے, یہ خیال آتا ہے. یا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کبھی میں کارآمد تھا اب نہیں رہا, کبھی خیال آتا ہے کبھی کسی کو میری ضرورت تھی اب نہیں رہی. بحیثیت انسان, دوست کی حیثیت سے, بندے کی حیثیت سے, بچے کی حیثیت سے, بڑے کی حیثیت سے, کسی بھی تعلق میں, کسی رشتے میں میری شاید اب ضرورت نہیں رہی, تب پھر خیال آتا ہے. لیکن آگے کچھ نظر نہ آنے کی صورتحال میں بھی یہ سوال آتا ہے کیا کیا جائے. خیال پھر اینڈ پہ سلوشن یہی ہوتا ہے کہ نکل جانا چاہیے, لیکن کہاں جانا چاہیے, یہاں سے نکل جاؤں گا تو وہ جو ان سین ہے, ان دیکھا ہے, اس کا خوف, ان سین کا فیئر ہوتا ہے کہ اگر آگے جا کے بھی مجھے ایسے ہی لوگ میسر آئے, اگر آگے جا کے بھی مجھے ایسے ہی فرد سے میری ملاقات ہوئی, जिसके साथ अभी मेरे दूर की शनासाई है, जिसके साथ अभी मैंने वक्त नहीं गुजारा, जिसके साथ खाया पिया सफर नहीं किया, लेन देन का मामला नहीं किया, उठा बैठा सोया नहीं, और जिसके साथ मैं अभी रहता हूँ, खाता पीता उठता बैठता हूँ सोता हूँ, क्या अगला भी वैसे ही निकल आया या उससे ज्यादा बुरा? तो सूरत हाल तो बहुत सारी अंदर आती है ना, जहां आप फिर सोचते हैं कि मुझे अब यहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं, आई शुड मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे आगे निकल जाना चाहिए। मुहर्रकात है ना, ये तो टटोल रहे हैं, जो मैंने कहा मुहर्रकात टटोलते हैं ना पहले, क्यों कैसे किस वजह से। यहां एक और वजह है कि मैं महसूस करूं कि यार अब ये जो जगह है मेरे काबिल नहीं रही, मैं इससे आगे बढ़ गया हूं, ये मुझे समझते नहीं है, ये जो करते हैं मैं कर चुका हूं, मुझे किसी ऐसी जगह जाना जहां मुझे भी अब कुछ सीखने को मिले, मुझे इनके साथ मजा नहीं आता, मैं आगे बढ़ जाऊं ना, कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पे मैं तिफल मकतब हूं, आई शुड बिहेव लाइक ए स्टूडेंट, आई नीड टू फाइंड अ प्लेस, आई शुड बी कंसिडर्ड ट्रीटेड एज ए स्टूडेंट। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज जिसकी वजह से आप कंसिडर करते हैं मुझे निकल जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हिजरत के तालिब होते हैं।
1: एक तो इतनी सारी खूबसूरत बातें करते हैं और बीच में मुहर्रिकात जो आपने बयान किए उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कई मुहर्रिकात ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी ज़ात पे भी फिट बैठते हैं। इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस की जो आपने बात की ये भी हो सकती है।
0: अच्छा, इसको हम साहब ने शेर भेजा है, वो
1: जी जी,
0: गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत।
0: तो ये वो अकल के तकाजे है ना जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी अकल बहुत सारे आपको
1: रास्ते
0: देगी, बहुत सारे हीले बहाने वजूहात रीजन इल्लतें और पता नहीं क्या क्या पेश करती है।
1: अकल का काम तो है हिफाजत और आपको बेहतर बनाने की तरफ रागिब करना।
0: जहां तक हवास खमसा आपसे जुड़े हैं,
1: जी हाँ,
0: एक मुकाम आता है जहां हवास खमसा की पहुंच से आगे की मंजिलें शुरू होती हैं।
1: वहां वहां वहां
0: वो है, ये वो निकल जा अकल से आगे के चरागे राह,
1: क्योंकि
0: मंजिल नहीं है।
1: इश्क में इंसान जो है वो,
0: थैंक यू वेरी मच हमीद गुल साहब,
1: हमीद गुल साहब थैंक यू वेरी मच। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि जो इश्क है वो इंसान को वो करने पर भी मजबूर करता है जिसको अकल बाज़ औक़ात आपको रोक रही होती है। हद से गुजर जाना, हदूद से तजावुज कर लेना, देख लेंगे वहां पे पहुंच कर ये रास्ता अपना कर, वो आतिशे नमरूद में ना कूदते, अकल ने ये कहा होगा कि कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए बात सुनी जा सकती है, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इश्क जो है वो कहता है कि नहीं, बहुत सारे मामलात में वो कहता है कि बस आगे बढ़ जा। यहां से ये वहां से आपको होगा, अगर आवाज आपको चाहिए ना ज्यादा
0: लगा ही नहीं है
1: अच्छा ठीक है, हेडफोन लगा नहीं है। तो मेरे नजदीक बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। बहरहाल अभी इस वक्त जिस हिजरत की बात हो रही है उसमें आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये शायद इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, या फिर
0: ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी है जिसकी आप बात कर,
1: हाँ इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं हम।
0: जज्बात आपके इंतहाए तजब्जुब का शिकार हैं।
1: यस, ये जज्बात ही हैं जो हमेशा
0: कैफियत हाल में जिनके पांव लड़खड़ाते हैं, जिनका दामन छीदा हुआ है, जिनकी निगाहें चुंधियाई हुई हैं,
1: जो परेशान है
0: और लफ्जों में जान नहीं रही, जबान में लुकनत आ चुकी है, लफ्ज निकलते हैं मगर अदा नहीं होते, जबान आपकी शायद गूंगी हो गई है, आप समझते हैं कि मैं बोलता हूं, जब आवाज नहीं जाती तो चीखने की कोशिश करते हैं, चीखा आपसे जाता नहीं, सांस आपकी चलती है, जिस्म आपका हरकत नहीं करता, ख्यालात बेशुमार आते हैं, फिर आपको लगता है शायद आप किसी अफरीद के कब्जे में हैं।
1: जैसे सब कुछ किसी ने बांध रखा है।
0: ये भी एक कैफियत होती है, अक्सर हर बंदा वंस इन अ लाइफ महसूस करता सोते हुए, अचानक आपको ऐसे लगता है किसी ने आपको जकड़ लिया, पकड़ लिया, आपकी अकल जाग काम करती है, आंखें खोलते हैं, खुलती नहीं, जबान हिलाते हैं, हिलती नहीं, जिस्म आपके काबू में नहीं होता, आपको ऐसे लगता है जैसे किसी शय ने पकड़ा। आपको ज़िंदगी में हर चीज़ का एक्सपीरियंस कराया जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका तजर्बा आपको ना करवाया जाए। आपकी अकल को जगा के, आपके जिस्म को बेख्तियार करवा के आपको तजर्बा दिया जाता है कि ऐसे भी करते हैं।
1: हाँ।
0: और ऐसे पॉसिबल है, यहाँ पे ऐसी ऐसी मखलूकात हैं जो ऐसे करती हैं, तो जज्बात में भी पकड़ा जाता है इंसान इसी तरह से। और वहां की ये कैफियत है, मैं जानबूझ के जरा और आगे आपके मौजू को निकाले जा रहा हूँ, कड्डी जा रहे हैं, मैं भी कह रहे हैं आगे की तरफ, लेट्स मूव ऑन, देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लेट्स एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, आई हैव सीन, यू हैव सीन, सुनने वालों ने हमसे बहुत ज्यादा कुछ देखा हुआ, हमें शायद मौका मिल गया, हम इधर माइक पे आके बोल लेते हैं उनकी बातें जो उनसे सुन के सीख लेते हैं। हमें सुनने वाले हमसे ज्यादा तजर्बाकार,
1: बिल्कुल ऐसे ही है,
0: हमसे ज्यादा जमाना शनास है, उन्होंने बहुत कुछ देखा, और वो भी आखिर में जाते हुए यही लिखते हैं, चाहा तो बहुत कुछ था
1: लेकिन सब
0: मगर
1: कुछ
0: हुआ कुछ,
1: सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, चाहा बहुत कुछ जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गुमान, आपका यकीन बहुत पुख्ता है और आप अगर उस रास्ते पर पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल को पाना चाहते हैं, वो अपनी ख्वाहिश मुकम्मल हासिल करना चाहते हैं, मुकम्मल हिस्सियात और जुज़ियात को यकजा करके अगर आप उस जानिब सफ़र करते हैं, पेशकदमी करते हैं, तो रास्ते आपकी मर्जी के मुताबिक और मंजिल आपकी पहुंच में दे दी जाती है, गुमान के जरिए से वो सब कुछ अता कर देता है।
0: वक्त हो चुका है 1:20 है।
1: यस 20 मिनट।
0: इस पे हम इसे थोड़ा सा मौजू को खोलते हैं। मैं अपनी दानिश के मुताबिक
1: जी
0: इस पे आपके सामने कुछ गुजारिशात रखता हूँ, फिर जिस तरह आपका दिल करे लेके चले।
1: यस,
0: आपका माइक आपका, दिल करे आप मुझे म्यूट कर दें, आपकी मर्जी।
1: दिल आज जो है ना वो बड़ा,
0: अल्लाह के रसूल ने फरमाया
1: नहीं, कई दिनों से दुखा हुआ है तो म्यूट नहीं करूंगा आज, दिल जो है ना वो बड़ा, आप आए हैं तो अच्छा लगा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, दिल जो है ना वो मैं खुश हुआ, कराएं नो ऑन,
0: नहीं नहीं ज़िया की वजह से ना मैंने ऑन किया, आई वाज मिसिंग हिम, तो
1: ओह माय गॉड,
0: अल्लाह ज़िया को सेहत सलामती वाली जिंदगी दे, और बहुत सारी दुआएं मौजे दुनिया में ही होते हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल ने पता क्या फरमाया, हमें कुछ चीजें,
1: यही मामला है जिसने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है मुझे,
0: हमें ना जब असलूब देखें ना आप, जो आपको चीजों के अंडरस्टैंड करने के लिए फिका से मिलता है आपको, ठीक है, वहां पे आपको मुख्तलिफ अहकामात के अंदर से उसकी रूह को समझकर उसे सेम सिचुएशन को दूसरी जगह अप्लाई करके नतीजे निकालने पड़ते हैं
1: उसी को इल्म कहते हैं। यस,
0: यहां से इल्मुल कलाम की बहस,
1: इल्मुल कलाम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हिजरत करो जब तुम पे तंगी आए,
1: जब तुम पे तंगी आए,
0: मौली तंगी है और इस तरह के मामला आते हैं जिसमें भी मफहूम बयान कर रहा हूं, हिजरत कर जाओ। तो हिजरत कर जाने से फिजिकली माली तंगी और आपके माशी मसाइल और आपके माशरती मसाइल हल हो जाते हैं।
1: यस,
0: इसका मतलब है वो चीज जिसका कतई तौर पे ताल्लुक मादियत से है, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, मटेरियल से है, इट कैन बी
1: सॉल्व
0: रिजॉल्व, इट कैन बी इन अ गुड शेप, तो जज्बात भी जुड़े हैं इसी मादी दुनिया से। आपको तंगी है आपको माशी तौर पर या माशरती, आपको जज्बात के अंदर उलझन है, परेशानी है, तजब्जुब का शिकार है, या घबराए हैं, या खौफ में मुब्तला है, या उम्मीदें वाबस्ता हैं, या फिर ख्वाहिशात हैं, या तवक्कात हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं जो आपके जिस बात से जुड़े होते हैं उनका बड़ा वाज़ह एंड क्लियर किस्म का कनेक्शन होता है आपके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से। इजमा से, इजतमा से, गिरोह से, यहाँ किसी एक फर्द वाहिद से जो आपके जिस बात को हिला रहा होता है मुसलसल,
1: या उसकी वजह से हिल रहे होते हैं,
0: हिला रहा है या हिल रहे। तो जब आप हिजरत करते हैं तो सारा एनवायरनमेंट बदल जाता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही।
0: तो इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, बट हिजरत लाजिम हो जाती है। और तसव्वुफ में कहा जाता है रूहानी हिजरत करनी पड़ती है। वो क्या होता है? कैफियत को बदल लेना। अभी मैं जिस निगाह से, जिस अंदाज से रहमान को देखता हूं, जब मैं राह सलूक पे चलूंगा और अगर खालिक मुझ पे मेहरबान हो और मेरी अगर लगन अच्छी होगी तो मैं रहमान को फिर और यहां से देखना शुरू करूंगा।
1: जी हाँ।
0: अभी मैं देखूंगा रहमान अच्छा आरजे है, रहमान मेरा दोस्त है, रहमान ऐसे है, रहमान वैसे है, फिर उस वक्त मैं देखूंगा रहमान खालिक का बंदा है, मेरे जैसा इंसान है, तन पे जैसे भी कपड़े पहने हैं बहरहाल कपड़े हैं, जाना दोनों ने एक ही मंजिल पे है, आगे पता नहीं क्या होगा मेरे साथ या इसके साथ, ना मैं इस पे किसी तरह की बर्तरी या फजीलत रखता हूँ और ना कभी हो सकती है। हाँ, मैं इसका तकद्दस और इसकी इज्जत और एहतराम को मुकद्दम रखूंगा क्योंकि ये उसका बंदा है जिससे मोहब्बत का मैं दावेदार।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात।
0: तो ये हिजरतें दो तरह से हो रही हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: लेकिन मेरे लिए, मेरे जैसे आम बंदे के लिए फिजिकल हिजरत इफेक्ट करेगी मेरे अंदर के जज्बात पे भी। जिस तरह हम बात करते हैं ब्रेकअप हो गया, सर ब्रेकअप भी हिजरत है ना। क्या वर्ड यूज करते हैं? मूव ऑन कर गया हूं मैं या मूव ऑन कर गई हूं मैं। वो क्या है कि मैं हिजरत कर चुकी हूं। तुमसे अपने जज्बात, अपने कैफियत, अपनी निगाहों का वो जो महवर तुम्हें रखा था वो उठा के अब कहीं और ले,
1: चेंज कर लिया
0: मैं। मतलब मैं मुहाजिर हो गई हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर ब्रेकअप की बजाय ना आज के बाद ऐसे कहना
1: हिजरत।
0: हाँ, ये वो मुहाजिर हो गया।
1: ये वैसे अच्छा लफ्ज है उसके लिए भी ना, कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगी है ना।
0: हाँ। क्या हुआ उसका? वो मुहाजिर हो,
1: मुहाजिर हो गई है। हाँ, सही
0: है। ये अच्छा लफ्ज।
1: हाँ, ये अच्छा।
0: ये जरा सोफिस्टिकेटेड
1: था। ये सोफिस्टिकेटेड है, इसमें उसको बुरा नहीं लगेगा, यानी कि ये उसको गुमान गुजरेगा कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो मुहाजिर हुई।
0: आपको फोन आया कर रहा, क्या हाल है मुहाजिरा?
1: उसका नाम भी इसी तरह से सेव कर लेना चाहिए।
0: मुहाजिर
1: आपको।
0: मुहाजिरा क्या हाल है?
1: अच्छा। हाँ,
0: तो ये रियलिटी है, कोई फलसफाना ही बातें नहीं है, हकीकत में सारे कह रहे हैं, कौन नहीं करता। आज आपके माँ बाप अगर हयात हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। अगर नहीं है हयात, आपके मेरे हमारे दोस्त दुनिया में होते हुए भी हमारी जिंदगी में इस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह से कोई दुनिया से रुखसत हो जाने वाला।
1: नो,
0: बेशुमार।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: बेशुमार ऐसे
1: ऐसे ही है।
0: तो वो भी हमारे लिए हिजरत कर गए और हम उनके लिए मुहाजिर हो चुके।
1: यस।
0: और वो जो गैप बना उनमें और लोग आ गए। सो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इट इज इम्पॉर्टेंट,
1: बहुत जरूरी है हिजरत करना,
0: हिजरत कर जाना।
1: बहरहाल मैं ये चाह रहा हूं कि 1:26 हुए हैं और आरजे डॉक्स तशरीफ लाए हैं, तो लाइव कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर है। अब इस जगह से ये बहस उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां तक मैं इसको लाना चाह रहा था। बहरहाल डॉक्स पास मौजूद होते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सैयद ख्वाजा कदीर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। भाई रहमान, हिजरत दरअसल सफर है और सफर वसीला सफर है, जगह भी तब्दील होती है और जिंदगी भी। नबी पाक ने भी हिजरत की, सब कुछ तब्दील हो गया। बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू वेरी मच। आपके मैसेजेस 4471 पर भी मुझे मौसूल हो रहे हैं, और facebook.com/fm101 लाहौर हमारा ऑफिशियल फैन पेज। मेरे पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपने हिजरत के हवाले से, इस मौजू के हवाले से, या अपने मन में उठने वाली कोई भी बात उस हवाले से अगर आप भेजना चाहें, यू मोर देन वेलकम। टेलीफोन लाइन पे एक पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं जी? जी इकबाल साहब, खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? टाइम बहुत कम है इकबाल साहब, जरा जल्दी से सम अप कीजिएगा अपनी बात को, जल्दी जल्दी करनी है हमने जी।
2: ये डॉग्स भाई आए हैं, उनको मेरा सलाम और आपको भी।
1: जी वालेकुम सलाम।
2: जिया भाई की जिंदगी तंदुरुस्ती करे,
1: आमीन। सही
2: इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है डॉग्स भाई ने
1: जी।
2: मैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ सुनने का मजा आता है, बस ये कॉल करके सिर्फ अपने हाजिर होने का पैगाम दे सकते हैं।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
2: कहना चाहते वो उन्होंने कह दिया,
1: चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हाजिरी लग गई आपकी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नबील जावेद हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सर मेरे नज़दीक हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, कभी कभी इंसान को अपनी जगह नहीं बल्कि अपनी समत बदलने की जरूरत होती है। असल खूबसूरत हिजरत ये है कि इंसान बुराई से निकल कर अल्लाह की रजा और नेकी की तरफ आ जाए, खूबसूरत बात है। ठीक है, फैसल अब्बास हमारे साथ हैं, उमर बट हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम अबू धाबी। रहमान भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हालात इंसान को हिजरत करने पर मजबूर कर देते हैं, और मेरे ख्याल से हिजरत कर लेने चाहिए, हिजरत में भी बरकत है। हिजरत मदीना सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने। आजकल के हिसाब से हिजरत ज़्यादातर माली मुश्किलात के पेश नज़र हो रही हैं, एक हिजरत रूहानी हिजरत भी है, गुनाहों, बुरी सोहबत और नाफरमानी वाली ज़िंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देना। बहुत शुक्रिया, एक गज़ल कोमल जोया साहिबा की आपके लिए, टाइम हुआ तो ज़रूर पढ़िएगा, मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर पढ़ूँ। टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं, 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर है। जर्द चेहरा है मेरा, जर्द भी ऐसा वैसा, हिजर का दर्द है और दर्द भी ऐसा वैसा, ऐसी ठंडक के जमी बर्फ हर एक ख्वाहिश पर, सर्द लहजा था कोई सर्द भी ऐसा वैसा, अब उसे फुर्सत अहवाल मुयस्सर ही नहीं, वो जो हम दर्द था हम दर्द भी ऐसा वैसा, यानी इस धूल के छटने पे भी इल्ज़ाम जुनू, कोई तूफ़ान है पसे गर्द भी ऐसा वैसा, पूरी बस्ती में बस एक वो शख्स निस्बत है मुझको, मुझसे मुनकर है वो एक फर्द भी ऐसा वैसा, इश्क ने रेल की पटरी पे लुटाया जिसको, था जवां मर्द भी ऐसा वैसा, क्या तुझे हिजर के आजार बताए कोमल, तू तो बेदर्द है बेदर्द भी ऐसा वैसा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। मरीना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। साइम तबस्सुम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमान अनवर साहब, मोहब्बतों भरा सलाम पेश है आपको, पूरी रेडियो टीम, प्रोड्यूसर साहिबा और तमाम सामीन कराम को। मैं नवाजिश अली तबस्सुम पेरिस फ्रांस से आपका खूबसूरत प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपकी खूबसूरत आवाज़ और दिलनशी अंदाज मेज़बानी प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबी अता फरमाए और आपकी आवाज़ हमेशा इसी तरह दिलों को खुशियाँ देती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, मेरे ख्याल में हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच, आदतों और मनफी रवैयों से भी हिजरत करना ज़रूरी होती है। इंसान अगर अपनी गलतियों, मायूसी और मनफी सोच को छोड़कर एक बेहतर और पुरसकून ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाए तो ये भी एक खूबसूरत हिजरत है। असल हिजरत वो है जो इंसान को अंदर से बदल दे। ठीक है, ठीक है, टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम रहमान भाई, कैसे हैं
1: जी? अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान। कौन बात कर रहे हैं जी, क्या नाम है आपका?
3: नवाज बात कर रहा हूं, रावलपिंडी से। असद भाई
1: जी,
0: वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम,
3: कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
3: माशाल्लाह, अरसे के बाद आज آپ دونوں کا پروگرام سنا اور ضیاء بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے. اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور بیمار کربلا کا صدقہ.
0: آمین آمین آمین آمین.
1: تھینک یو ویری مچ. آمین.
3: بالکل عطا فرمائے. اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کا پروگرام سنتے ہوئے. ٹاپک بھی بہت اچھا رکھا آپ نے. میں زیادہ لمبی چوڑی آپ دونوں میرے استاد ہیں, قابل عزت ہے, قابل احترام ہیں. تو چھوٹی سی بات اگر چاہیں تو میں ایڈ کر دوں.
1: جی جی کہیے گا, جلدی سے کہیے گا.
3: ہجرت کے ساتھ اپنے جو ذات ہے نا اس کی نفی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے.
1: ٹھیک ہے,
3: اگر آپ نے اپنے نفس امارہ کو مار لیا نا تو دیکھیں قدم قدم کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا. یہ میرا پریکٹیکلی ایک ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں.
1: ٹھیک ہے,
3: ذات کی نفی کر لیں آپ ہجرت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ہر قدم پہ کامیابیاں ملیں گی. باقی آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ, آپ پڑھے لکھے ہم سے زیادہ ذہین ہیں.
1: نہیں جی, آپ نے اچھی بات کی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
0: بہت اچھا, بہت
1: اچھا. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہرحال ہجرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹیلی فون لائن پہ ایک اور کال. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
4: اللہ وبرکاتہ.
1: جی مشال, کیا حال ہے آپ کی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں
4: جی الحمدللہ الحمدللہ. اس ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے. صحیح بات پوچھی جائے کرنا بھی نہیں آتا کہ کس طرح سے کیا جائے, لیکن الحمدللہ. اور خوبصورت ٹاپک بڑا اچھا لگتا. پتہ نہیں تھی جب بھی ہجرت کے بارے میں ہجرت کی بات کی,
1: ہاں جی,
4: بہت ہی اچھا لگتا. اور جب شروع میں جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ روحانی یا فزیکلی, تو ایسے ہی کہ روحانی کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. آپ کہاں اور آپ کہاں پہنچ جاؤ, آپ وہاں ہو ہی نہ جہاں پہ آپ ہو, اور کیا خوبصورت ہو جاتا ہے. بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو مونی ہونا ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے, تو وہ مشکل نہیں ہوتا. آپ کا صرف چلنا ہونا چاہیے, منزل کا کوئی ضروری نہیں ہوتا, راستے ہونے چاہیے اور چلتے جانا چاہیے, کہیں نہ کہیں آپ پہنچتے ہیں اور آپ کا پہنچنا ہوتا ہی ہے. دل کرتا ہے کہ رومانی آپ ہو, اور کیا اس کا ایک اپنا ہی مزہ, ایک اپنا ہی اس کا وہ, یعنی کہ جو جس چیز سے گزر رہے ہوں گے وہ کیا مزہ لیتے ہیں اور کیا مزہ آ رہا ہوتا ہوگا. اور بات ہو رہی تھی تکلیف کی, تو نو ڈاؤٹ تکلیف کے بعد پھر اس کا یاد آنا اور اس کا پتہ چلنا وہ بھی ایک بڑا مزے کا عمل ہے.
1: ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشال.
0: تھینک یو ویری مچ مشال جی. آفٹر اے لانگ ٹائم آپ کی آواز سنی.
4: ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, لیکن بڑا اچھا لگا بہت دیر بعد شامل ہونا, اور بس اچھا لگا.
0: آپ کی مہربانی, بہت شکریہ.
1: تھینک یو ویری مچ.
0: تھینک یو,
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, لوگوں کی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک کو ڈاکس جو ہیں وہ مکمل طور پر کھول کر بہت اچھے سے بیان کر چکے ہیں. بہرحال کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی. السلام علیکم جی.
5: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی کون بات کر رہے ہیں جی؟
5: سر میں لاہور شاہد باغ سے محمد نوید بات کر رہا ہوں.
1: ہاں جی نوید صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟
5: شکر الحمدللہ, دم دم ہو سے ہر دم.
1: جی
5: رحمان بھائی, ہجرت پہ بات ہو رہی ہے.
1: ہجرت پہ بات ہو رہی ہے, بالکل ایسے ہی.
5: سر میں خیر اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں, لیکن میں اپنے ذہن سے اس کو بات بتاتا ہوں. ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی تنگی ہے, کوئی عزت نہیں مل رہا یا وہ کام وغیرہ نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, آپ ہجرت کر دیں. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی کہا, ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں, چل جائیں کہیں اور چل جائیں, سب کچھ اور چھوڑ دیں.
1: ٹھیک ہے,
5: لیکن کچھ इंसान की सर आदतें भी ऐसी होती है ना, देखें यहाँ पर हमने कोई कुछ करना नहीं, पर हम हिजरत करके 10-12 कोई मुल्क छोड़ के किसी और जगह पे चले गए, वहाँ पे भी जाकर कुछ नहीं करना तो नींद भी पूरी करनी है, तो फिर बेहतर नहीं वो इंसान अपने घर पे ही कर ले, तो वो नहीं बेहतर? इन्होंने कुछ करना होता है वो सारी यहाँ पे भी जाकर कर लेते हैं, उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता।
1: ये सोच भी अच्छी है, सही कह रहे हैं आप।
5: देखिए ना, अगर आपको पता है यार एक कमरा है उसमें एसी लगा हुआ, आराम करो, आराम यहाँ पे भी हो जाएगा, वहाँ पे भी जाके इतना कुछ कर करा के भी सब कुछ दे दुआ के भी घर बार हर चीज छोड़ के चले जाना, यार वहाँ भी आराम ही करना, तो बेहतर नहीं कर फिर घर पे आराम करो।
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। इस्लाम हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सर इस मौजू पर एक शेर याद आया है कि परिंदा खुश्क झीलों से यही अब कह गया आखिर, मुझे हिजरत पे मजबूर मेरे हालात करते हैं। अच्छा है, ठीक है। बहरहाल आपके होने का एहसास आपकी कॉल से मौसूल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम बहुत एहसान। जी कौन बात कर रहे हैं?
6: फराज बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी फराज, तो क्या कहना चाहते हो?
6: आज डॉक्टर सर भाई को मेरे से बहुत बहुत सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
6: रहमान भाई, इंसान हिजरत करता क्यों है?
1: हाँ बताओ।
6: तो कोई हिजरत करता नहीं है।
1: क्या करता है?
6: खुशी में तो कोई हिजरत करता नहीं है।
1: अच्छा
6: ठीक है, और खुशी से कोई हिजरत करता नहीं है इस दुनिया में जो है ना, हमें जिस इंसान से कोई दुख दर्द या तकलीफ मिलता है ना तो हम उससे दूर भागते हैं।
0: बहुत अच्छी बात की।
6: लेकिन अल्लाह की तरफ से जब कोई आजमाइश आती है ना,
1: हाँ जी,
6: तो हम उससे दूर नहीं भागते, उसके और करीब होते हैं। इसी तरह हम हिजरत करके कहीं भी चले जाएं, चाहे हम एक इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाए, तो एंड ऑफ द डे जब हम मांगेंगे तो परवरदिगार से ही मांगेंगे, तो वो ही हमें अपनी जनाब से अता करेगा, दर्द से दुख से आजमाइशों से हमें वो ही निकालेगा, और वो ही हमें इन मामलों से निकलने का रास्ता भी दिखलाता है।
1: ठीक है,
0: बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
6: थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू।
0: थैंक यू वेरी मच भाई।
1: वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत अच्छी बातें की सारों ने, पता।
1: यस, सारों ने जो जो महसूस किया, जैसे जैसे महसूस किया, वो तमाम बातें हम तक पहुंचा दी। अभी महमूद हमारे साथ हैं, कह रहे हैं वेलकम आरजे डॉक्स, और इसके साथ साथ मलिक वसीम अवान के बहुत सारे मैसेजेस हैं। फिर ऐसा करो कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस उफक के पार ले जाओ जहां वापसी की ख्वाहिश भी ना रहे। अच्छा, वाह वाह वाह।
0: एक ना मैंने गजल आज पढ़ी।
1: अच्छा जी, सुनाए।
0: वो आपका ख्याल आया मुझे, उसका अंदाज लिखने वाले का, और वो आपका अंदाज है, वो बहुत अच्छा है।
1: सुनाए।
0: अगर आप पढ़ें तो ज्यादा अच्छा लगेगा,
1: लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आप पढ़ें, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पढ़ी,
0: लेकिन मैं आप जैसा नहीं पढ़ सकता,
1: तो उससे फर्क नहीं पड़ता।
0: जैसा पढ़ता,
1: हाँ आपके जैसा खूबसूरत लगता।
0: तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ, यहाँ बैठो।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: पढ़ी?
1: हाँ पढ़ी हुई है।
0: क्यों पढ़ी है?
1: नहीं आप सुना।
0: बिल्कुल आपके वो जो अंदाज है ना, जिस तरह की गुफ्तगू होती है। तो मोहब्बत सिखाता हूँ, यहाँ बैठो, कुछ गजलें सुनाता हूँ, यहाँ बैठो।
1: वाह वाह वाह।
0: आगे वाली लाइन जो है ना, वो पढ़ते ही मुझे आपका ख्याल आया।
1: अच्छा
0: अच्छा, क्या कहा, वो चांद पसंद है तुमको? है ना?
1: आई है, वाह वाह,
0: है ना भाई?
1: हाँ ऐसा ही है।
0: अच्छा, क्या कहा, वो चांद पसंद है तुमको? अच्छा, उतार के लाता हूँ, यहाँ बैठो।
1: वाह वाह वाह। अच्छा वैसे मैं उतार भी लाऊंगा अगर उसने कहा।
0: अच्छा तो डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, है ना पूरा अंदाजा आपका।
1: अच्छा ये वाकई में मेरा अंदाज। अच्छा
0: अच्छा, तो डर क्यों रही हो? मैं हूं ना,
1: मैं हूं ना।
0: अच्छा, सीने से लगाता हूँ, यहाँ बैठो।
1: वाह वाह वाह।
0: अच्छा तो जान, वो जुगनू अच्छे लगते हैं तुमको? अरे पूरा अंदाज है ना। अच्छा तो जान वो जुगनू अच्छे लगते हैं तुमको, अच्छा तुम्हारे बालों में सजाता हूँ,
1: यहाँ बैठो। वाह वाह
0: वो चांद चमक रहा है, वो सितारे दमक रहे हैं, ये दोनों तेरी गाल पर बनाता हूँ, यहाँ बैठो।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्यों उदास हो, क्यों ये आंसू बहा रही हो?
1: हाँ
0: क्यों उदास हो, क्यों ये आंसू बहा रही हो? मैं तुमको हंसाता हूँ,
1: यहाँ बैठो।
0: वाह वाह। ये जगमगाती तितलियों में से जिस पर इशारा करो।
1: वाह
0: आपको कह रहा हूं, ये जगमगाती तितलियों में से जिस पर इशारा करो उसे तेरे हाथ पर बिठाता हूँ, यहाँ बैठो।
1: यहाँ बैठो।
0: अच्छा है ना
1: ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि आपने कहा कि दास्तां सही की गल, वैसे ही कर दूंगा।
0: इसे मैं इजाजत लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में थोड़ी देर।
1: आजकल आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
0: मैं आपके प्रोग्राम में आया था, मैंने कहा अपना ओपिनियन में कॉल करके तो नहीं दे पा रहा था, मैं आके दे दूंगा कि हिजरत।
1: लेकिन ये ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा खूबसूरत।
0: हिजरत अच्छी है, हिजरत करनी चाहिए। और साहब ने कहा कि आराम करने अगर जाना है, यहाँ से उठे वहां पे भी आराम करना है, तो फिर क्या जरूरत है भाई। आपकी बात बहुत अच्छी है,
1: बहुत खूबसूरत है।
0: अगर हम आराम करने के लिए जाएं, मींस आपने कहा अगर यहाँ आराम में है कहीं और जाके भी आराम लेना है तो फिर जाना क्यों है। तो जब हमने यहाँ आराम मुयस्सर है तो हमने कहीं और जाने ही क्यों देना है खुद को, यहाँ लेके क्यों जाना है? फिर तो हम हिजरत की बात ही नहीं करेंगे, फिर तो हम कहेंगे हम खुश हैं, आराम मुयस्सर है। हिजरत तभी की जाती है जब आराम में खलल आए,
1: या हम चाहें कि उस नहज तक पहुंच जाए।
0: आराम में खलल आने की वजूहात दो हैं, यहाँ या तो आप तंग हैं या आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, दो वजूहात हैं। सो
1: शायद
0: इसी वजह से
1: और उसे हासिल ही तब किया जा सकता है जब आगे बढ़ जाए,
0: तो
1: हिजरत कर जाए।
0: यह हो जाए काम ना कर लेना, बाहर देख के करना, सोच समझ के। अच्छा बाजुकात रिग्रेट भी हो जाते जे।
1: नहीं मैं लगता है कोई रिग्रेट नहीं है, दुनिया वैसे पूरी सुन रही है।
0: आप क्यों साहब इसरार समझते हैं
1: मुझे,
0: घर के अफराद तो बेकार समझते हैं मुझे।
1: हाँ बड़ा मसला है यार। ये बड़ा मसला है।
0: आपको मैंने कभी गौर से देखा भी नहीं।
1: ओए होए होए होए तज़हीक। आपको मैंने कभी गौर से देखा भी नहीं।
0: आपको मैंने कभी गौर से देखा भी नहीं।
1: ओए
0: आप भी अपना तलबगार समझते हैं मुझे।
1: अच्छा ये मैं कहना चाहता हूं वैसे बरसों को। क्या खूबसूरत। अच्छा
0: मेरे किरदार की जो कस्में उठाते थे कभी,
1: हाय हाय
0: अब वही लोग गुनाहगार
1: समझते हैं मुझे।
0: उन्हें पता चल गया होगा, सब्सक्रिप्शन ले ली होगी।
1: वैसे मैंने तो ले रहा है, अनलिमिटेड है इसमें, ये फ्री भी है।
0: जिनकी तलकीन पे मैं गम में हंसा करता हूँ,
1: वाह वाह
0: जाने क्यों अब वो अदाकार
1: समझते हैं। ओए होए होए होए, यानी तलकीन भी उन्होंने की है और मैं हंस भी उनके कहने पे रहा हूँ और फिर भी अदाकार समझ रहा
0: हूँ।
1: क्या खूबसूरत। ये ट्रैक शामिल करते हैं, कुछ बातें करनी है मुझे।
0: और मुझे नहीं, मुझे आप इजाजत दें मैं आपका शो सुनते
1: हैं। नहीं मैंने आपसे ये इस ट्रैक के दौरान कुछ बातें करनी है, आपने तो चले जाना है ना। मुझे फिर तुसी चले जाओगे तो हो नहीं पाएंगे ना।
0: ओके
1: आजकल वो कॉल भी नहीं उठा रहा, ये भी बड़ा मसला है। बहरहाल ये ट्रैक सुनते हैं नबील शौकत की खूबसूरत आवाज, बेवजह। बेवजह भी की जा सकती है वैसे हिजरत,
0: वो बेवजह का ख्याल आना भी एक वजह होती है सर।
1: हाँ ट्रैक सुनिएगा वापस आते हैं।

All right, जी, once again, welcome back. Radio Pakistan FM 101 का बराह रास्त लाहौर का स्टूडियो है और मेजबान रहमान अनवर आपके साथ साथ है. एक बजकर 52 मिनट प्रोग्राम में बहुत कम समय बाकी. बहरहाल आज आपसे सवाल ये पूछा, क्या हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम है या कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी हिजरत करनी पड़ती है. बहुत सारे जवाब और बहुत सारे एहसास मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ रास्तों से आप तक पहुंचे. डॉक्स ने भी बहुत खूबसूरती से इसको समेटा, बहुत खूबसूरती से इसको वाजे किया. बहरहाल मेरे नज़दीक इस सवाल का जवाब किसी एक जुमले में नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है. हम सबकी जिंदगियों में अपनी अपनी जगह इसका जवाब डिफरेंट है, लेकिन छुपा हुआ हमारी जिंदगियों में ही मिलेगा. यकीन कीजिए, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा. हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि हर इंसान ऐसा है जो किसी न किसी हिजरत के दरमियान में है. कोई माजी से हिजरत कर रहा है, कोई तन्हाई से, कोई खौफ से, कोई एक शहर से दूसरे शहर, शायद इस्लामाबाद जाना चाहता, लेकिन शायद फिर उसने दोबारा से अपना मन तब्दील करके शायद एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ सोच लिया है हिजरत करने का. और कोई ऐसा भी होगा बिल्कुल मेरी तरह, जो बड़ी खामोशी के साथ वो जो पुराना हिस्सा है अपनी ज़ात का, उससे निकलकर अपने असल वजूद की तरफ हिजरत कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है. लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही वाला होता है जिसमें इंसान इंसानों से दूर नहीं होता, हाँ मगर अपने आप के करीब हो जाता है. तो अगर आपको कभी हिजरत करनी पड़े तो सिर्फ जगह मत बदलिएगा, अपनी समत की तरफ देखिएगा. सिर्फ शहर या मुल्क बदलने से कुछ नहीं होगा, अपनी सोच बदल कर देखिएगा. जहनी तौर पर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, जज्बाती तौर पर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज करना होता है, लेकिन हम हमेशा किसी से सुन रखते हैं कि फितरत कभी चेंज नहीं होती, और फिर हम अपने आप को चेंज करने की तरफ कभी कदम बढ़ाते भी नहीं हैं. हम ये मान लेते हैं कि अब हम चेंज होने वाले नहीं हैं, या कोई हमें ये बता देता है, या हम सुन लेते हैं किसी से. तो प्लीज़ मत खौफ खाइए अपने आप को चेंज करने से कि अब तो उम्र गुजर गई, अब तो वक्त गुजर गया, या अभी अभी तो मैं अपने असल तक पहुंचा हूं, मुझे लगा है कि यही मेरा असल है, यही असल हकीकत है, सच्चाई मेरी ज़ात की ये है, तो मैं क्यों बदलूं. लेकिन एक बार फिर से दोबारा मवाजना कीजिएगा, एहतसाब कीजिएगा, न्यूट्रल रहते हुए या फिर किसी को तलाश कीजिएगा जो आपको बता सके, जो न्यूट्रल हो, जिसको मफाद ना हो आपसे कोई, खुलूस के साथ पूरे मन के साथ आपके साथ वाबस्ता हो, ऐसे इंसान को ढूंढिएगा. और प्लीज़ ये जो बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम अपने माजी से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है. इस दर्द को प्लीज़, इस ज़ख्म को प्लीज़ मुंदमिल होने दीजिए, इसको हरा मत रखें, माजी में मत रहें, आगे बढ़ने की कोशिश करें. आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.

तो ठीक है, अगर आप दोबारा से कोशिश करने चाह रहे हैं, अगर आप अब इस बार ये दूसरी जो कोशिश है हिजरत करके करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, करना चाहिए आपको। अगर आपकी नियत नेक है, अगर आपका इरादा सच्चा है और पक्का है, अगर आपका ख्याल किसी को ईज़ा नहीं पहुंचाएगा, किसी को दिल आज़ारी का बायस नहीं बनाएगा, तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। आपके गुमान के ऐन मुताबिक सब कुछ अता होगा। और प्लीज़ जब आप ये कोशिश करें कि मैंने हिजरत करनी है, तो एक ही जहन में ख्याल, एक ही किसी जगह का नहीं होना चाहिए, बस हिजरत का ख्याल होना चाहिए। और किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं और किसी भी जगह से आपको रास्ता मिल सकता है आपकी मंजिल का। जो फिलहाल आपने सोचा है कि ये मंजिल है, इसको हासिल करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो किसी एक जगह पर मुस्तकिल नहीं रह सकते, उन्हें आगे से आगे बढ़ते चला जाना होता है। रिश्ते को एक्सप्लोर करने के बाद या हासिल करने के बाद उस रिश्ते में नई खूबियाँ, नई एक्साइटमेंट उन्होंने डेवलप करनी होती है, आगे से आगे बढ़ना होता है। तो ठीक है, ये बेहतरीन वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है, अगर आपने सोच लिया है। और अगर आप गवाही चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अगर नाकाम होंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, या पहले हिजरत कर चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाज़ोकात हमने जिस तरीके से आगाज किया होता है दोबारा, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि अब दोबारा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है। इस वक्त आप अपने शऊर में मुकम्मल हैं, आप जानते हैं, आप जिए इस शऊर के साथ और दोबारा से आगाज कर सकते हैं। आखिर में बस एक ही बात, मुकम्मल नहीं करता आप जानते हैं किसी भी टॉपिक को मैं, लेकिन इस टॉपिक में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं जो बहुत सच्ची है, मेरे नजदीक बहुत सच्ची है, लेकिन आप इस पे कोशिश कर सकते हैं समझने की। बहरहाल हिजरत चाहे जाहिरी तौर पर हो या फिर अपने रूहानी तौर पर हो, आखिरी मुकाम आपका अपने आप के साथ मिलना है, खुद से सुलह कर लेना है। और ये जान लेना है कि ये हर्फ आखिर नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ बस यही तक था। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफल मकतब समझ कर, ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक 101 की सब टीम को सलामत रखे। माजी की जगह और लोगों को भुलाकर इंसान को हिजरत करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सैयद अदील इकबाल शाह, इस्लामाबाद पुलिस, बहुत शुक्रिया, मेरा भाई हमेशा मुझे सुन रहा होता है, इस्लामाबाद पुलिस से ताल्लुक है, थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें। अच्छा ठीक है, आपके फेसबुक के पैगाम की जानिब आ रहा हूं, देख रहा हूं कि कोई पैगाम बाकी तो नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बतों भरा सलाम। अच्छा ठीक है, साइम का मैंने ये मैसेज पढ़ लिया। फैसल अब्बास, थैंक यू वेरी मच। मुंडा सियालकोटी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम, थैंक यू वेरी मच। हाय, अफसोस किराए के मकानों वाले खदशाए कूच से गमले भी नहीं रख पाते, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझ तक पहुंच गया।
نئے سرے سے خود کو جوڑنا پڑا سو اس لیے بھی خود کو توڑنا پڑا. حمید گل صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اجازت لینے کا وقت آن پہنچا, کوئی بات بری لگی ہو تو طفل مکتب سمجھ کر یہ سوچ کر کے ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں, درگزر کر دیجئے گا یا پھر معاف کر دیجئے گا, بڑے لوگ ہیں. لیکن اگر کوئی ایک بات کسی ایک انسان کے لیے بھی مشعل راہ ہو گئی, یہاں آنے کا پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 12 بجے 101 انٹرنیشنل پروگرام مدھوری باتوں میں. آنکھوں تیری میں ڈوبا ہے یہ دیوانا, فراز تمہارے نام ہے, تم نے ریکویسٹ کیا مجھ سے. مایا بٹ ہمارے ساتھ ہیں, انشال بٹ تھینک یو ویری مچ, تم نے ریکویسٹ کیا مجھ سے. مایا بٹ ہمارے ساتھ

बेबी हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाउ आर यू ब्रदर? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम जी। हिजरत में बरकत है, ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा यहाँ आना हिजरत ही तो है। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे लिए ट्रैक था, और ये आखिर में जाते हुए एक बार फिर से मैं प्ले कर रहा हूँ ये वाला ट्रैक तुम्हारे लिए।

तुम्हारे नाम है ये नाज़्म, वो हर्फ गर है और ऐसी उम्दा कि लफ्ज उसकी हसीन पूरों को छू के बाबे सनद पे सजदे गुजारते हैं। वो हर्फ कर है और ऐसी उम्दा कि लफ्ज उसकी हसीन पूरों को छू के बाबे सनद पे सजदे गुजारते हैं। मानी उसकी नफासतों के हजार सदके उतारते हैं। वो लफ्ज बुनती नहीं है कागज पे काढ़ती है, मजाल है वो गुलाब लिखे तो कागजों से महक ना आए। ये कैसे मुमकिन है रंग लिखे तो कागजों पे धनक ना आए। वो कोरे कागज को सिर्फ छू ले तो खुशबुओं से निहाल कर दे। वो कोरे कागज को सिर्फ छू ले तो खुशबुओं से निहाल कर दे। वो लफ्ज लिखे तो नज्म कर दे, वो नज्म लिखे कमाल कर दे। वो जैसे चाहे वो जैसे सोचे हर एक तखयल में रंग भर दे। हर एक तरह से हसीन लफ्जों से खेलने का उसे हुनर है। वो हर्फ कर है। अल्लाह हमें नासिर।

0: 101 FM。
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या।